मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि। तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5

बजकर 56 मिनट हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी प्रथम सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:05 में है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मीरा जैसा प्रेम दो मुझको, नरसी जैसी भक्ति दो, सूरदासी दे दो आँखें, गजके जैसी मुक्ति दो, दो विश्वास मुझे शबरी सा, ज्ञान मुझे अर्जुन सा दो, दर्शन तेरे ये कर पाए, आँखों को वो शक्ति दो।

सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए, ना जाने किस सांस में अंत समय आ जाए।

मदीने के सपने सजाने लगे हैं, जमाने के गम हम भुलाने लगे हैं, मोहम्मद की रहती है बस याद दिल में, नबी मेरे दिल में समाने लगे हैं।

एक ओंकार प्रभु है सच्चा, जिसका नाम करता धरता संसार का निस्वार्थ निष्काम। जन्म मरण से रहित वो स्थिर अपने आप, सद्गुरु की कृपा से होता है वो प्राप्त।

जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, रक्षक हेतु अवतार है माँ।

अभी अब ओम व्यास, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर, अरविंदर सिंह और LS लखा के स्वर में भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। वंदना अब संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। वंदना के पश्चात आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: शौच का अर्थ है शुचिता यानी पवित्रता, अर्थात पवित्रता का ही दूसरा नाम शौच है। जिस प्रकार क्रोध के अभाव का नाम उत्तम क्षमा है, मान के अभाव का नाम उत्तम पार्थव है और माया के अभाव का नाम उत्तम आर्जव है, उसी प्रकार लोभ के अभाव का नाम शौच या पवित्रता है। संक्षेप में, आत्मा में कषायों की उत्पत्ति होना ही अपवित्रता है और कषायों का अभाव होना ही सच्ची पवित्रता है, सच्चा शौच धर्म है। बहुत से लोग मात्र नहाने धोने को ही शौच धर्म समझते हैं, जबकि शौच धर्म तो आत्मिक पवित्रता का नाम है। उसका ऊपरी नहाने धोने से कोई संबंध नहीं है। कषायों का अभाव करके आत्मिक पवित्रता प्रकट किए बिना कोई भी व्यक्ति कितना ही नहाए धोए, उसके शौच धर्म प्रकट नहीं होता। शौच धर्म तो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि कषायों के अभाव से प्रकट होता है। नहाना धोना बुरा है यह हम नहीं कहना चाहते, किंतु जो लोग इस महान शौच धर्म को मात्र नहाने धोने तक सीमित कर देते हैं, उन्हें यह बताना चाहते हैं कि नहाने धोने में वास्तविक शुचिता नहीं है, उसमें शौच धर्म नहीं होता है। शौच धर्म की प्राप्ति के लिए कषायों के अभाव का प्रयत्न करें। शरीर तो स्वभाव से अशुद्ध है, अशुचि है, वो शुचि यानी पवित्र नहीं हो सकता। उसे पवित्र करने का प्रयत्न बालू से तेल निकालने जैसा निरर्थक है। शौच धर्म की विरोधी लोभ कषाय है। अक्सर लोग रुपयों पैसों के लोभ को ही लोभ समझते हैं, जबकि लोभ अनेक प्रकार का होता है, जैसे नाम का लोभ, रूप का लोभ इत्यादि। लालसा, तृष्णा, अभिलाषा, चाह, इच्छा, प्रेम इत्यादि सभी लोभ के ही विविध रूप हैं। हमें लोभ कषाय के अभाव करने के लिए और शौच धर्म प्रकट करने के लिए इन सभी मनोविकारों को छोड़ने का प्रयत्न करना होगा। लोभ कषाय बहुत बुरी होती है। लोभ को बाप का पाप कहा जाता है। लोभी व्यक्ति सदा अंकुशित रहता है, अकुलित रहता है। लोभी व्यक्ति अपने मालिक, गुरु, बंधु, व्रत, स्त्री, बालक तथा क्षीण, दुर्बल, अनाथ, दीनादि को भी मारकर धन को ग्रहण करता है। नरक में ले जाने वाले जो जो दोष शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब लोभ से ही पैदा होते हैं। आप किसी भी दिन का समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती इत्यादि, करीब करीब सभी कुकर्मों के पीछे लोभ कषाय का ही हाथ रहता है। लोभी व्यक्ति सदा जोड़ने में ही लगा रहता है, भोगने का उसे समय ही नहीं मिलता। पशुओं का लोभ पेट भरने तक ही सीमित रहता है। पेट भर जाने पर वो कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मानव की समस्या मात्र पेट भरने तक सीमित नहीं रही। वो पेट भरने के चक्कर में सदा ही असंतुष्ट बना रहता है। दिन रात हाय पैसा, हाय पैसा, उसे पैसे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो चाहता है कि उसकी पेटी हमेशा भरी रहे। न्याय, अन्याय और भरे बुरे का विवेक किए बिना उसे सात पीढ़ियों का इंतजाम करने की चिंता लगी रहती है। वो हमारी भारतीय संस्कृति के इस महान संदेश को भूल गया है कि पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। हमें सभी इस महा अनर्थकारी लोभ कषाय का त्याग करके अपनी आत्मा में उत्तम शौच धर्म प्रकट करना चाहिए, तभी हम मन, धर्म और कर्म से पवित्र हो सकेंगे।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:35 हो चुके हैं, ये समय है स्वास्थ्य संदेश का। स्वास्थ्य संदेश में आज कैंसर पर एक सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर आर के चितलागिया।
2: श्रोताओं, समय समय पर हमें कई सारी बीमारियां होती हैं और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन बीमारियों से संबंधित डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, इलाज कराते हैं और फिर हम ठीक हो पाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ही घातक हैं और यदि

0: का समय से इलाज न कराया जाए तो कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर। हमारे सभी श्रोता जानते हैं कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। ये क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, कैसे इसका बचाव और उपचार किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के चितलांगिया जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं बरेली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, कैंसर का नाम सुनते ही जहन में ये बात आती है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, डर सा लगता है। वैसे तो सामान्य रूप से बुखार, सर्दी, जुखाम और फ्रैक्चर होना, ये बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत घबराता नहीं है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनमें से कैंसर प्रमुख है और व्यक्ति घबरा जाता है, क्या कारण है, ये कैसी बीमारी है?
1: बिल्कुल आपने सही शुरुआत की। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मैं एक बात बताना चाहूंगा
0: जी,
1: कि आज भी हमारे पास एक जो सर्तिया इलाज या पूर्ण इलाज ये नहीं है। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कैंसर हम पूरा ठीक कर पाएंगे
0: जी।
1: मैं इसके बारे में आगे कई बातें बताऊंगा।
0: बिल्कुल।
1: पर कैंसर क्या है?
0: हाँ।
1: ये हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंसर हमारे शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास है
0: जी।
1: यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अचानक बढ़ना शुरू कर देती हैं
0: जी।
1: और वो बढ़ना शुरू कर कर जिस जगह पे बढ़ती हैं, जिस अंग में बढ़ती है उसको खराब

0: उनके माध्यम से ये पता चल सकता है कि बिल्कुल अमुक व्यक्ति को कैंसर हो गया है?
1: देखिए, जब भी कभी इस तरह के लक्षण है
0: जी,
1: तो आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर देखने के बाद बताता है कि मुझे ये कैंसर लग रहा है या कैंसर का इसमें शक है।
0: हाँ।
1: उस समय जब हमारे मन में ये शंका होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए बायोप्सी, गोश्त की जांच
0: जी,
1: या उस गांठ में से खून निकालकर जांच की जाती।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आर के चितलांगिया जी कि किस प्रकार से हम कैंसर से बच सकते हैं, क्या लक्षण है, और कितनी सतर्कता से यदि हमें पता चले कि कैंसर है तो उसका हमें इलाज कराना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। हम समझते हैं कि इस जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से अपनी पहचान कर सकता है कि कैंसर है या नहीं, और कैसे बच सकता है, कैसे इलाज कर सकता है। डॉक्टर आर के चितलांगिया जी, कार्यक्रम में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संदेश, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश आप स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम सुचारू रूप से नहीं सुन सके।

सात बजे अमृत कलश में आज विषय होगा अल्पसंख्यक कल्याण, वाचन होगा तरन्नुम का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 8:45 पर।

11 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम धरोहर। इसमें आज आप सुनेंगे धारावाहिक जिंदगी के आईने में, गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:10 पर। धरती गति कार्यक्रम में 1:15 पर आज कलाकार होंगी मोनालिका सक्सेना।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक स्वर थे सुरेश वाडेकर, रविंद्र साठे के। ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तरजालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारताऑस्ट्रेलियादेशौ स्वतन्त्रं, मुक्तं, सुरक्षितं, समृद्धं च हिन्द प्रशान्तक्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तरजालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः, विचारधारायाः, संघटनात्मक शक्तेः, लोकसेवायाः, प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। आज इस कार्यक्रम में सुनिए प्रस्तुति अल्पसंख्यक कल्याण पर। वाचन तरन्नुम का है और प्रस्तुति है विक्रांत चौधरी की।

0: मेरे वजूद में बहुत गहरे से समाया है तू, तेरा होना ज़रूरी है मेरे होने के लिए। ख्वाब सारे हसीन तेरी आँखों के वास्ते, मेरी आँखें काफ़ी हैं तेरे दर्द पे रोने के लिए। अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प यानी थोड़ा या कम और संख्या यानी गिनती या नंबर। इसका अर्थ होता है दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना। भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। अल्पसंख्यक को मराठी में अल्पसंख्यक बोलते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान भी अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यक को इंग्लिश भाषा में माइनॉरिटी कहते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक। इन समुदायों की अलग अलग एवं भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है और वे कई बार विभिन्न तरह के भेदभावों का सामना भी करते हैं और कई कठिनाइयों, परेशानियों और दबावों को झेलते हुए अपने वजूद को कायम रखने की जद्दोजहद जारी रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि
1: जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। उसके हक के लिए हम जीना है, हमें जीना है। उसके हक के लिए हमें जूझना है। उसके हक के लिए हमने अपना जीवन खपाना है। और मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं कि जो देश की इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा विश्वास है।
0: धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी के अतिरिक्त संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों को भी संरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही कुछ लोग जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग, LGBT, ट्रांसजेंडर समुदाय और कुछ जनजातीय समुदाय को भी सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया गया है। इस आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रावधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि संविधान में दिए गए संरक्षण और कई कानूनों के होने के बावजूद देश के अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा एवं भेदभाव की भावना व्याप्त है। इसी भावना को समाप्त करने के लिए इस आयोग की नींव रखी गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों का संरक्षण करना, उनके हालातों का समय समय पर जायजा लेना, उनके विकास के लिए सरकारों को सुझाव देना एवं उनकी स्थिति से अवगत कराना है, उनकी समस्याओं को सुनना और उनसे निजात दिलाना या उन समस्याओं को दूर करना है। जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है तो समय समय पर सरकारें इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक हालात जानने के लिए जस्टिस सचर कमेटी बनाई थी। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कदम उठाती है और कई तरह के कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाती है। इसमें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना, उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा संसाधनों की व्यवस्था करवाना, मदरसों का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, रोजगार अवसर बढ़ाना एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करना शामिल है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन की व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की भर्तियों में विशेष व्यवस्था, साथ ही ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में मकान उपलब्ध कराने की योजनाओं में वरीयता, अल्पसंख्यक जहां रहते हों उन झुग्गी बस्तियों में हालात का सुधार, दंगों एवं किसी भी हिंसा की रोकथाम करना, साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आइए अब जानते हैं अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में समाहित है कि विधि के अनुसार समानता, सरकार उसके ही अनुसार सारी योजनाएं, चाहे वो कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देना हो, चाहे रोजगार के लिए ऋण बांटने का हो, और सभी ऐसा कार्य, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, सरकार समस्त अल्पसंख्यकों को समान रूप से दे रही है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना, इस योजना के तहत हमारी सरकार ने चाहा कि मदरसों में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वहां पढ़ रहे युवाओं बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भी जोड़ा जाए, ताकि आगे चलकर वे बेरोजगारी और माली हालात की तंगी से बच सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आज जितने भी एडेड मदरसे हैं उनमें ये शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, और कुछ वर्षों से NCERT का पाठ्यक्रम मदरसों में लागू किया गया है। वर्तमान समय में मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा की कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय गरीब परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु रकम बेटी के 18 वर्ष से अधिक होने पर दी जाती है। इसके लिए परिवार को अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साथ विवाह का कार्ड होने वाले पति या शौहर की भी जानकारी देनी होती है। उनको ये भी प्रमाण देना होता है कि ये धनराशि कहीं और खर्च नहीं होगी, साथ ही बेटी के खाते की जानकारी भी देनी होती है। वर्तमान सरकार प्रत्येक धर्म, वर्ण और वर्ग के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, और जो लोग टूटे पुराने कच्चे मकानों में अपना जीवन जी रहे थे उनको पक्के मकानों की सौगात हमारी वर्तमान सरकार ने प्रदान की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के अंतर्गत भी अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा ऋण लेकर भी काफी लाभ पहुंचा है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी ऋण की व्यवस्था है, जिसका लाभ अल्पसंख्यकों को प्राप्त हुआ है और बहुत से लोगों ने अपना स्वयं का रोजगार स्थापित किया है। नई रोशनी योजना, इस योजना के तहत भी NGO रजिस्टर कराकर स्वयं सहायता ग्रुप या समूहों के द्वारा लोग अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटी को शिक्षा प्रशिक्षण एवं उनको ऋण लेने में मदद का भी कार्य कर रहे हैं, साथ ही अपना स्वयं का रोजगार चलाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।

इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा वो जिस भी जिले में निवास करते हैं वहां से प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सीधे भेजा जा सकता है और सभी तरह की प्रक्रियाओं या नियमों का पालन कर सरकार उसको मंजूर करती है। इसके अलावा विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत जो अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज के बच्चे जो टेक्निकल भी बहुत अच्छे हैं उनको सरकार शिक्षा ऋण और साथ ही 10,000 रुपए का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रकार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की 15 सूत्रीय योजना हो या आवास योजना या शिक्षा से संबंधित योजनाएं हो, सरकार उसको बाखूबी चला रही है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार अल्पसंख्यक के बच्चों को IAS और PCS में लाने के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था कर रही है। साथ ही वे गरीब बीमार अल्पसंख्यक जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके इलाज की भी व्यवस्था प्रधानमंत्री राहत कोष से की जा रही है और उनकी मदद भी की जा रही है। इसी तरह के ईमानदार प्रयास की आज आवश्यकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश। आज आपने सुनी प्रस्तुति अल्पसंख्यक कल्याण पर, वाचन तरन्नुम गाथा और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी। कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
2: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
3: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
2: ये प्लास्टिक कचरा, खासकर पॉलीथीन, पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
1: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
2: जागिए और जगाइए,
3: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
1: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
2: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
6: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
7: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
6: जल है तो कल है,
7: यही चिंतन पल पल है।
8: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर

0: रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

0: करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में कल ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया।
3: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगो का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यूनेस्को द्वारा प्रयागराज महाकुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की उपलब्धि के बारे में चर्चा की।
4: जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था।
0: मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया और आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री योगी ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन

0: प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में तीसरा स्थान मिला है, हमें इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ 56 भोग लगाए गए। हमारे अयोध्या प्रतिनिधि ने बताया कि वहां दिनभर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कल भी दिनभर तेज धूप, भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया उच्च स्तरीय समिति का गठन। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे समिति की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए केंद्र सरकार के 12 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है ये दौर। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज और लखनऊ में महापौर के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कीजिए स्वीकार नमस्कार रेणु तिवारी की ओर से। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। हमारी और आपकी दोस्ती भी एक मजबूत बंधन है, जिसमें हम और आप बंधे हैं आवाज की डोर से। हमारा ये नाता आज का नहीं बल्कि परसों पुराना है। आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है और ये उत्सव की घड़ियां आई हैं आप श्रोताओं के साथ और सहयोग से।

0: आकाशवाणी ने अपना सफ़र शुरू किया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय के साथ। हम सबके जीवन का अभिन्न अंग बन गया आकाशवाणी। बच्चों की मुस्कान बना तो युवाओं का जोश भी बना, महिलाओं की सखी सहेली बना तो संगीत के सफ़र पर आपका हम सफ़र रहा आकाशवाणी। यही नहीं, अनेक कलाकारों को मंच दिया आकाशवाणी ने। एक समय था जब कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, पर आकाशवाणी ने स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। बॉलीवुड के अनेक गीतकारों संगीतकारों गायक और अभिनेताओं ने अपनी यात्रा आकाशवाणी के साथ ही आरंभ की। आज आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव बांट रही हैं रेडियो कलाकार डॉक्टर मोनिका शर्मा।
1: मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाइयां आवाज की दुनिया के दोस्तों को। ये सफर जो है बहुत ही सुंदर, मेरा आकाशवाणी का सफर आपके साथ साझा करना चाहूंगी, थोड़ा सा बड़ा रोचक सा दोस्ताना सा। ये सफर ऐसा है जो हमेशा याद रहने वाला है। एक तो आपकी पसंद का काम हो और फिर उसमें अगर आकाशवाणी जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे सपनों को पंख मिल गए हों। तो पहले हम कॉलेज में या स्कूल्स में डिबेट इत्यादि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहे और यही क्रम आगे बढ़ा तो हम जुड़े एक वार्ता के क्रम में आकाशवाणी से, और जब इसको हमने थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाया तो हम जुड़ गए युवाणी से। और युवाणी से जुड़ना तो ऐसा हुआ जैसे कि आंखों देखी सपने साकार हो गए। युवा ऊर्जा के साथ जुड़ना, युवा ऊर्जा को दिशा निर्देशन देने का काम मिलना, और उसमें भी हम बिल्कुल पूरी तरह से लग गए। और ये काम ऐसा था जो काम मिलकर एक टीम के साथ होता था। तो युवाणी का सफर चाहे उसमें विभिन्न इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स का प्रेजेंटेशन हो या उसमें मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन हो, लेकिन सबका उद्देश्य रहता था कि सब सारगर्वित हो, उद्देश्य परक हो और सभी कुछ ना कुछ मॉरल मैसेज देते हों। आकाशवाणी का सफर बड़ा यादगार रहा। अगर हम कलियों की बात करें तो आज भी आपको चीकू भैया का नाम याद रहेगा और याद रहेगा ये बात कि बच्चे किस तरह से आकाशवाणी से जुड़ना चाहते हैं। बच्चे के अंदर एक खास बात होती है कि बच्चे तालाब करना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं, क्यों कब कहां कैसे को जानना चाहते हैं। तो कलियों का जो एक प्लेटफॉर्म है आकाशवाणी रामपुर की जो बात हम करते हैं मुख्य रूप से, तो वहां बच्चे जाने के बड़े उत्सुक होते हैं और बड़ा आकर्षण रहता है बच्चों में। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी भारत में बच्चों को ना विरासत में मिलता है। कैसे? पहले तो दादा दादी सुनते हैं रेडियो को, फिर पापा मम्मी सुनते हैं और उत्सुकता बस बच्चे भी वहां बैठना शुरू कर देते हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से सारे बच्चों को विरासत में मिलता है, हमें भी विरासत में मिला। फिर हमने उसको शौक के रूप में लिया और शौक जब आगे बढ़ा तो उसने हमें कई प्रेरणादायक प्लेटफॉर्म प्रदान किए। बात जब रामपुर आकाशवाणी की होती है तो यहाँ पर आवाज का जादू बिखरता है, दिलों को छूने वाली आवाजें। अब हम बात कर सकते हैं रेस्पेक्टेड विनोद आनंदयाल जी की, श्याम मोहन जी की, असीम सक्सेना जी की, सुरेंद्र राजेश्वरी जी की, चंद्रमोहन सक्सेना जी की, और अगर हम नाम ना लें मनदीप कौर जी का तो बात अधूरी रह जाती है। ये आवाज की दुनिया है। मुझे ध्यान है कि हम लोग एक बार एक प्ले रिकॉर्ड कर रहे थे और उस प्ले में हमें बूंदों की पानी की आवाज लेनी थी, तो हम पानी की बूंद के लिए हम कौन कौन सी आवाजें ले रहे हैं, बारिश की बूंदों की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर के टैप की मोटर के पानी की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम नल के पानी की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आवाज की दुनिया है, और आवाज भी वो नहीं जो चलती फिरती कहीं की भी नहीं, दिल की आवाज, दिल को छूने वाली आवाज, दिल की आवाज जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। तो आकाशवाणी का जो ये सफर है, बड़ी पारदर्शिता का सफर है, प्रामाणिकता का सफर है, और ये सफर वो सफर है जिस सफर पे सभी लोग साथ चलना चाहते हैं। एक महिला जो किचन में होती है, उसके हाथ हैं अचार के, मसालों के, लेकिन वो आकाशवाणी से सुनती है खबर के भाई इस कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आकाश का सीना चीर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बना दिया। तो ये खबर उसको जब आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है ना, जो भारत या विश्व के दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ वाईफाई नहीं होते, जहाँ आज के मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, एक्स नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो वो महिला जो है वो एकदम से अपने भीतर उस गजब से आत्मविश्वास को समाहित करती है जिससे भविष्य में समाज का निर्माण होता है, संस्कारी समाज का निर्माण होता है। तो आज भी जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में वाईफाई नहीं है, वहां भी आकाशवाणी अपनी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। और बात आवाज की दुनिया की शुरू होती है, तो एक बड़ा अच्छा सा मेरे को संस्मरण याद आता है कि आकाशवाणी में जब सिलेक्शन होता है ना, तो वहां पे आपके रिटन टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह, वॉइस टेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉइस टेस्ट जब लिया जाता है, तो जो जजेस होते हैं वो आपको नहीं देख सकते, आप उनको नहीं देख सकते। ऐसा ही हमारे वॉइस टेस्ट में भी हुआ। जब हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो कई महीनों बाद एक लाइव प्रोग्राम किया गया आकाशवाणी से, और उसको जाने के बाद जब हम डीओ ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर डीओ की ड्यूटी में हमारे रेस्पेक्टेड विनोद आनंद दयाल जी बैठे थे, और हमको देखते उन्होंने ये कहा कि आज हमने ये जो कार्यक्रम सुना है, ये आवाज जब सिलेक्शन हो रहा था उस जजिंग ग्रुप में हम थे, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ वाकई में। लेकिन ये आवाज की दुनिया के वो पारखी हीरे होते हैं कि कई साल बाद भी आपकी आवाज सुनेंगे, भीड़ में सुनेंगे, चाहे अंधेरे में सुनेंगे, लेकिन आवाज की, आपकी आवाज को वो पहचान लेंगे। तो आवाज ही पहचान है, और वो आवाज जो सशक्त है, समर्थ है, सक्षम है, विश्वसनीय है, और यही है आकाशवाणी जो 90 साल से विश्वास का रिश्ता संजोई है और बना हुआ है हमारे पूरे भारतवर्ष की आवाज पूरे विश्व में फैलाने के लिए। तो एक छोटी सी मैसेज मेरे मन में ये भी आता है कि हमें आकाशवाणी से जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? नन्हे बाल मन को जुड़ना चाहिए आकाशवाणी से, क्योंकि वो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब उनको वहां पे मिल सकते हैं। घर की महिलाएं जुड़ सकती हैं, युवा जुड़ सकते हैं, बालक जुड़ सकते हैं, बालिकाएं जुड़ सकती हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आकाशवाणी से ना जुड़ सके। सारे प्लेटफॉर्म्स आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं और सारे वर्ग आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं। आकाशवाणी जो है, हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में भी आकाशवाणी का बड़ा प्रामाणिक प्रमाण मिलते हैं। आपको ध्यान होगा, आपने दादी नानी से सुना होगा कि कंस अपने बहन के विवाह के बाद जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के और भी हमें उदाहरण मिलते हैं। जैसे महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि मेघों को संदेश वाहक बनाकर अपनी बात कही गई। तो आकाशवाणी हमारे यहाँ प्रामाणिक पुरातन शास्त्र प्रमाण भी है, और आकाशवाणी की बात जब हम करते हैं कि 90 वर्ष, तो ऐसा लगता है आकाशवाणी हमारे हृदय का स्पंदन है, हमारे मन की बात है। बहुत बहुत बधाइयां। और आकाशवाणी में ये रेणु जी जो आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता, आपकी आवाज भी पहचानी जाती है, केवल पल दो पल के लिए नहीं, ये प्रभाव स्थायी होता है। ये प्रभाव ऐसा होता है जो जीवन को बदल दे, या जीवन को कोई दिशा दे दे, या सकारात्मक पहल एक कदम आगे बढ़ा दे। तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सुंदर सफर में हम इस उम्मीद के साथ कि ये सफर और हम सफर, हम सब साथी एक दूसरे से जुड़े रहें, बने रहें, और इसी तरह से सारगर्भित प्रामाणिक विषय वस्तु आकाशवाणी दुनिया भर में प्रसारित करता रहे।
0: आकाशवाणी के साथ अपने अनुभवों के साथ ये थी डॉक्टर मोनिका शर्मा।

0: आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। अब बारी है एक कमर्शियल ब्रेक की। कार्यक्रम अभी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
4: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: सुबह सवेरे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से अपनी रेडियो साथी रेणु तिवारी के साथ। श्रोताओं, हर दिन कुछ खास होता है, क्योंकि हर एक दिन के साथ किसी न किसी की कोई ना कोई खट्टी मीठी याद जुड़ी होती है। आज 27 मई है और आज का दिन क्यों खास है, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। 27 मई 1660 को स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे के बीच कोपेनहेगन संधि की गई। 27 मई 1937 को अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज पहली बार पैदल यात्रियों के लिए खोला गया। गोल्डन गेट ब्रिज की लंबाई 27 किलोमीटर है और तब ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 27 मई 1941 को ब्रिटिश नेवी ने जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को अटलांटिक महासागर में डुबो दिया। 27 मई 1964 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दुनिया से विदा ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। उनका पंचशील सिद्धांत आज भी भारतीय विदेश नीति का आधार है। 27 मई 1994 को रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर सोल्जेन की वतन वापसी 20 वर्ष के निर्वासन के बाद हुई। अगर बात की जाए 27 मई को जन्मे प्रथम प्रसिद्ध व्यक्ति

नेहरू ने 27 मई 1964 को इस संसार से विदा ली। ये था लेखा जोखा 27 मई के इतिहास का, और अब बारी है एक गीत की।

कुछ देर पहले तक सब ठीक था, अचानक क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। ये पंक्तियां हम सब ने कभी न कभी सुनी या कही होंगी। अक्सर इन शब्दों में पछतावे के भाव रहते हैं। अचानक शब्द पर्याय है आपात स्थिति का, वो घटना जो अनायास ही घट जाती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। ये छोटा सा शब्द अचानक कभी कभी हमारी दुनिया बिखेर देता है। अक्सर आपातकालीन स्थिति में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, विशेष रूप से तब जब ये इमरजेंसी स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। आज 27 मई है और आज है इमरजेंसी मेडिसिन डे। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए और सिखाया जाए कि मेडिकल इमरजेंसी के समय उन्हें क्या करना है। कुछ बीमारियां समय के साथ विकसित होती हैं और उनका इलाज लगातार चलता रहता है, वहीं कुछ बीमारियां अचानक हमें घेरती हैं और स्थिति जानलेवा हो जाती है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर शूट, अस्थमा अटैक, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिसमें एक पल की देरी भी जानलेवा हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष दवाओं, पंप या स्प्रे का प्रयोग करके रोगी की स्थिति को संभाला जाता है, ताकि मरीज को अस्पताल पहुंचने तक का समय मिल जाए। इन आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जरूरी है धैर्य और सतर्कता। कई बार बीमारी की आहट बड़ी नहीं होते, छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिन्हें अगर ना पहचाना जाए तो बीमारी ट्रिगर हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, और अगर किसी बीमारी का हाई रिस्क है तो उसके लिए इमरजेंसी की दवाएं हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। घर हो या ऑफिस, ये दवाएं ऐसी जगह रखी जाएं जहां आसानी से मिल जाए। ऑफिस में अपने सहयोगियों को अवश्य बताएं कि दवा कहाँ है और इसका प्रयोग कब, कैसे और कितना करना है, क्योंकि जब आपातकाल की स्थिति आती है उस स्थिति में रोगी खुद दवा लेने की स्थिति में नहीं होता। उस समय आसपास के लोगों की भूमिका अहम हो जाती है। याद रखिए कि ये दवाएं डॉक्टर की लिखी हों, और जब दवा लेने के बाद स्थिति में सुधार आ जाए तो भी रोगी को अस्पताल अवश्य लेकर जाएं। आपातकालीन दवा और समझदारी भरा व्यवहार एक अनमोल जीवन को बचा सकता है, इसलिए इस अचानक की स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें, सतर्क रहें, और हाँ, अपनों की दुआएं हमेशा एक रक्षा कवच का काम करती हैं, तो दुआएं देते और लेते रहिए।

आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
7: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
8: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका के वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमेरिकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
10: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है।

0: वहीं केरल में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation.

0: Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils four key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. Aadab, khabarname ke saath main Neetika Tyagi. पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिरे मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स वन डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
3: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर जरूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
2: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी SIR के कानूनी जवाज को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मजकूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाज को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरेसानी का ये अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में SIR अमल से मुतासर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने यह वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नजरेसानी के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निजाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने की खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम नाफिज किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफवर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिक अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान एनआईए ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। एनआईए के जराये के मुताबिक इस वाकये के दिन की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पैनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलों पर तबादलाए ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
6: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम 84 के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
3: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावी सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
2: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अब आइए सुनते हैं ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में। फिल्म का नाम है रेड 2।

वरुण जैन और शिल्पा राव को अभी आपने सुना, फिल्म थी स्त्री टू। आइए अब सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गदर टू।

गदर टू। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है डंकी।

मिशन मजनू। इस फिल्म में अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल को। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। आइए अब सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है यारियां 2।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल थोड़ी ही देर में लखनऊ केंद्र से रिले होगी।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में भीषण गर्मी से तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे लू हीट वेव का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां भीषण गर्मी और तापमान से जिला अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है, वहीं ओपीडी में रोज लगभग 1200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने जिले के सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए गए हैं। वहीं हीट वेव से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अत्यधिक तेज धूप में बाहर न निकलें, विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलते समय सिर एवं शरीर को ढके टोपी, गमछा, दुपट्टा या छाते का प्रयोग अवश्य करें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थ का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखने हेतु दिन भर पानी पीते रहें। ORS, शिकंजी, आमपना, नींबू पानी आदि का सेवन लाभकारी है। वहीं प्रशासन ने खेतों में कार्य करने वाले कृषकों को दोपहर में कार्य न करने की सलाह दी है। वह पशुओं को छायादार स्थान पर बांधने तथा उन्हें पर्याप्त पानी पिलाते रहें। घरों की छतों पर पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें तथा किसी भी प्रकार की आपात सहायता है तो कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। जिले में सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए बिलग्राम उन्नाव प्रयागराज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। सांसद साक्षी महाराज ने इस परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाना है, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सड़क तथा आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क के चौड़ीकरण से आवागमन में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसकी स्वीकृत मिलने से जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क से ग्रामीण क्षेत्रों की जिला मुख्यालय और अन्य शहरों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतियों में तेजी आएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सड़क निर्माण परियोजना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि मार्ग के चौड़ीकरण से आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इससे भारी वाहनों और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले के निराला प्रेक्षागृह में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जन प्रतिनिधि, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1300 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि
3: जनपद में लगभग 1300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और जो उनका मानदेय राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है उसी क्रम में ये प्रोग्राम किया गया था। कुछ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम लोग ने मंच पे भी उन सम्मानित किया और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और साथ ही जो हमारी शिक्षा का जो स्तर है उसको और हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे।
2: यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में की गई वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से सकारात्मक संदेश जाएगा और जिले की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र धौरा में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने की। इस अवसर पर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, आम उत्पादक, व्यापारिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम उत्पादकों, व्यापारियों और संबंधित संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था। इसका लक्ष्य आम उत्पादक, भंडारण और विपणन जैसी जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके समाधान खोजना था। प्रतिभागियों ने आम की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर विपणन व्यवस्था स्थापित करने और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने कहा कि प्रशासन किसानों और आम उत्पादकों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का।
4: हीट वेव के प्रकोप से भदोही समेत पूर्वांचल के कई जिले तप रहे हैं। जिले में तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तमाम उपाय अपनाने पर मजबूर हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी और चेतावनी के अनुसार भदोही उन जनपदों में शामिल है जहां भीषण ग्रीष्म लहर की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय आपदा मित्रों के माध्यम से गांव और शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डीएम ने कहा, गर्मी अपने चरम पे है, लोग 12 से 4 बजे के बीच बाहर से निकलने से बचें, अधिक से अधिक पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें और चेहरे और शरीर को ढककर ही बाहर आएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव वार्ड और ओआरएस काउंटर संचालित किया जाए, जबकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वाटर स्प्रे के जरिए भी राहत और जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया,
5: इस समय जो है गर्मी अपने चरम पर है और इस समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश ये करें कि दोपहर में 12 से 4 अपने कार्य जो आउटसाइड के हैं उनको न करें, उसके पहले अथवा उसके बाद में ही जो है इस तरह के कार्य करें। दूसरे आवश्यक ये है कि अपना हाइड्रेशन बना करके रखने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक पानी पिए, चेहरे को शरीर को पूरी तरीके से ढक करके ही अगर अवश्यंभव स्थिति है तभी निकला जाए।
4: भदोही के युवा क्रिकेटर हर्ष दुबे का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में 15वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। हर्ष गोपीगंज नगर के समीप तिलंगा गांव के निवासी हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हर्ष ने क्रिकेट में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। वे विदर्भ की ओर से अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में एक सीजन उन्होंने 69 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद उनका चयन इंडिया टीम ए में हुआ। वर्तमान में वे आईपीएल के सनराइज हैदराबाद की ओर से खेल रहे हैं। उनके पिता सुरेंद्र भी पहले सीआईएसएफ में तैनात थे, अब परिवार नागपुर में रहता है। हर्ष की सफलता से भदोही जिले के युवाओं को प्रेरणा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले को नई उपलब्धि मिली है। काशी नरेश राज की विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुशासन और

0: शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि
1: ये बहुत पुराना कॉलेज है आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है, तो इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, इसमें मेरा प्रयास रहेगा।
0: भदोही जिले में विकास कार्यों को गति मिल रही है। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को सेमरानाथ धाम से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 21.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। सड़क चौड़ी होने से लगभग 20 गांव के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भदोही जिले की सहकारी समितियों की जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है। शासन ने 11 समितियों के नवीनीकरण के लिए 1.3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। प्रत्येक समिति पर लगभग 9.40 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से अधिकांश भवन काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इन समितियों के माध्यम से किसान को खाद, बीज और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। धान और गेहूं खरीद का कार्य भी इन्हीं केंद्रों पर होता है। भवन जर्जर होने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इनके नवीनीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। उद्योग क्षेत्र में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना नामक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भदोही का कालीन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता से उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे भदोही के कालीन निर्यातकों को राहत मिलेगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से ये प्रेरक प्रसंग।

सन 1936 की बात है। नेहरू जी तमिलनाडु की यात्रा पर थे। कोयम्बटूर जिले का भ्रमण करने के बाद वो मदुरई के लिए रवाना हो गए। उन्हें विदा करते समय टीएस चिट्टियार, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और बाद में मद्रास सरकार के शिक्षा मंत्री भी हुए, उन्होंने नेहरू जी के हाथों में खरोंचे देखे। उनकी दोनों हथेलियों से लेकर कोहनियों तक खरोंचे थी और कहीं कहीं तो खून की बूंदें भी छलक आई थी। चिट्टियार घबरा गए। कारण यह था कि नेहरू जी को देखने और उनसे मिलने की आकांक्षा में हजारों नर नारी उमड़ पड़े थे। बहुतों ने उनका हाथ दबा दबा कर अपना स्नेह प्रदर्शित किया था। भला वे कैसे स्नेह उपहार न स्वीकारते। चिट्टियार जी ने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा, हमारे जिले के लोगों ने आपको इतनी तकलीफ दी, इसलिए मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। नेहरू जी बोले, अरे भाई, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि ये खरोंचे जल्दी ही भर जाएंगी। ये तो हमारी जनता के स्नेह चिन्ह है। बच्चों से चाचा नेहरू बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों के बीच घुल मिल जाते और कभी कभी उनसे हंसी मजाक भी करते। एक बार नेहरू जी ने रूसी बच्चों के लिए इंदिरा नाम का छोटा सा हाथी का बच्चा रूस भिजवाया। ये बात सभी बच्चों को मालूम पड़ गई। एक दिन जब वो बच्चों से घिरे हुए थे तो एक बच्चे ने उनसे पूछ ही लिया, चाचा जी, आप जानवरों को तो बाहर भिजवाते हैं, हमें क्यों नहीं भेजते? नेहरू जी ने गंभीर बनते हुए कहा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि तुम जानवर हो। नेहरू जी का ये मजाक बच्चों की समझ में आते ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। नेहरू जी एक बार दाहर नामक स्थान पर, जो कि पंजाब में कपूरथला के पास है, वहां सिंचाई योजना का उद्घाटन करने के लिए गए। उद्घाटन के वक्त उच्च अधिकारियों ने नेहरू जी को चांदी की कुदाल खुदाई के लिए दी। नेहरू जी ने चांदी की कुदाल एक तरफ फेंक दी और पास पड़ी लोहे की कुदाली उठाकर बोले, क्या भारत का किसान चांदी की कुदाली से खुदाई करता है? ऐसे थे पंडित नेहरू। नेहरू जी के निवास पर एक शेरो शायरी की बड़ी प्यारी महफिल जमी हुई थी। एक बार बेकल, सरदार जाफरी, फिराक साहब समेत कई शायर मौजूद थे। समय कम था, अतः सभी अपनी छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे थे। जब सरदार जाफरी साहब अपनी रचना सुनाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये सभी जानते थे कि उनकी कविताएं लंबी होती हैं, तब एक शायर ने छेड़ते हुए कहा, देखिए अधिक जोर ना पड़े। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, किस पर, सुनने वालों पर या पढ़ने वालों पर? तब फिराक साहब पुनः बोले, अजी साहब, अब ये भेद न खुलवाइए। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के अनेक प्रेरक प्रसंग हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं।

0: अभी आपने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ा ये प्रेरक प्रसंग। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
2: हजरत उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। हज बैतुल्लाह और ईद उल अज़हा के हवाले से समात फरमाइए। ये खसूसी तमसीली प्रोग्राम उन्वान है दो आलम से करती है बेगाना दिल को।

तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर...

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 9:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए उमा शंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग सिंधु भैरवी। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं बबलू खान वारसी।

अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग सिंधु भैरव। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे बल्लू खान वारसी। उपशास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, आपकी कसम फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हर्ष, हार्दिक और वंश बत्ता, पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, महाराजा रेडियो श्रोता संघ ग्राम लोहारी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इद्रीसी, मोहम्मद फरहान इद्रीसी, वारणा शाहपुर कोलापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता, अनिकेत और माय चौहान, चंदननगर सतारा से सतीश बागमारे, आतिश बागमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमेण बागमारे, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नास परवीन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज साथ हैं, साहिल, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार रही शादाब राही, मेहताब निशा, मुश्ताक अंसारी और शहजाद अंसारी, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आपकी कसम।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के फरमाइश पर राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत अर्पित अभय रिया और आरुष रस्तोगी, खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, गणेशपुर गंडवारा से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला, पप्पू शेख, शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम, भाटा पारा दत्रेगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पाताई नारे, नई बस्ती पते खालसा जिला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सलीम, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, मीरासराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरेगी से भागवत वर्मा, थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन, इमरान खां, रेहान खां, इकराम, समीना, आसिफा और शबीना भी, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवेश्वरी, रेलवे कॉलोनी बटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना, सुमित कुमार दामोदर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निमान शर्मा, पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज बाड़ोदे और बीटी बाड़ोदे, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीके, कैलाशपुरी, रामापुरी और आरएसपुरी, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, ईशान हुसैन, आरिश हुसैन और मरियम जहां, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हेना कौसर, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर और मनहर दास की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है अभिमान।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर ग्राम घाटमपुर से राम भजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा और रामप्रकाश सैनी, मलोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा विवान, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, गांव कैरों पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरुशब्द, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल और सुजाता पोहरकार, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर और टुकटुक गवाड़कर, संबल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश सैनी, विक्की सैनी, दक्ष, काव्य, कृष्णा और हीरावती देवी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के, नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, शिवाजीनगर से राजेश खोबर केड़े, शिवसागर, इंदिराबाई खोबर केड़े, सुनैना, जलगांव जामोद से राम धाड़े, दीपाली धाड़े और स्वराज धाड़े, चिलोरी दरियापुर से सुनैना, पवन बोंडे, तनुज पवन बोंडे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, मिलक भोजपुरा शाह जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज बी और आसिया बी, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, रूबन खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तेराहा के पास से अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
3: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे

0: रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों

0: ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं

0: अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।

0: कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
1: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
2: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
3: क्या बात कही है?
1: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
2: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: उमंग, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आप श्रोता सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 11 बजे का, और इस समय पर आप सुनते हैं धरोहर कार्यक्रम। आज के धरोहर कार्यक्रम में सुनिए धारावाहिक जिंदगी के आईने में, इस धारावाहिक की 13वीं कड़ी।
4: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जाम।

0: जिंदगी के आईने में। श्रोताओं, इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में इन दिनों आप जानी मानी हस्तियों से मुलाकात सुन रहे हैं, उनके जिंदगी के अनुभव हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसका लाभ हम सभी अपने जीवन में भी उतार सकें। बहुत सारे कार्यक्रम आप तक पहुंच चुके हैं। आज की कड़ी में वो शख्सियत हमारे साथ है जिसका ताल्लुक रेडियो से रहा है। आकाशवाणी रामपुर को वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। ये आवाज जब आपके रेडियो सेट पर पहुंचेगी अब से बस कुछ ही देर बाद, तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, और आपको वो पुराने इंटरव्यूज याद आएंगे जो कभी ये लिया करते थे। इंटरव्यू लेने की एक अद्भुत शैली थी उनकी, अपनी एक पहचान थी और अपना एक नाम था। हम बात कर रहे हैं श्री राजेश कुमार जी की। राजेश जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद असीम जी।
0: आकाशवाणी रामपुर के आप जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं और वर्षों आपने दिए हैं आकाशवाणी रामपुर को, इसके कार्यक्रमों को। हम आपसे आपके बचपन की तरफ से शुरुआत करना चाहेंगे कि बचपन किस तरह के माहौल में बीता और फिर रेडियो से जुड़ना किस तरह से हुआ।
1: असीम जी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: और 25 दिसंबर यानी बड़े दिन को मेरी पैदाइश हुई थी, और अब की जो 2013 में मैं 71 वर्ष का हो जाऊंगा। मेरे पिताजी लखनऊ के एडवोकेट थे और कायस समाज में हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का काफ़ी नाम था, प्रसिद्धि थी। जहाँ तक पिताजी की बात है, उसको करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वो सर्वगुण संपन्न थे। पहली बात तो ये कि वो संस्कृत नाम को भी नहीं जानते थे, लेकिन आध्यात्मवादी होने के नाते उनको संस्कृत का वो ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान उनसे कहते थे कि आपने कहाँ से संस्कृत की। मेरे पिताजी को संगीत से भी बड़ा शौक था, नाटक से लगाव था, यानी वो हर विधा के विशेषज्ञ थे, और एक लखनऊ हीरोज एसोसिएशन क्लब बना था। और बात बहुत छोटी सी नहीं है, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात है, कि जो नौशाद साहब थे फिल्म के, उनकी परवरिश हमारे घर पे हुई। हमारे पिताजी जब नाटक के लिए या किसी अन्य संगीत यंत्र के रखरखाव के संबंध में वहाँ जाते थे लाटूस रोड पे, तो वहाँ पर एक हारमोनियम की दुकान थी नंदन ब्रदर्स, उनके यहाँ पे एक लड़का काम करता था 8-10 वर्ष का, तो वो कहने लगे कि वकील साहब हमको भी आप बोलना सिखा दें। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो खुद ही बोलते अच्छा हो, तो कहने मेरा मतलब है मैं भी संगीत में रुचि रखता हूँ। तो पिताजी ने उनको ले आए घर पे, हमारे यहाँ संगीत की महफिल भी जमती थी। और आपको एक चीज़ और बता दें, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं अगर हम अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं
0: जी, जी, जी।
1: उनको संगीत के हर इंस्ट्रूमेंट के बजाने का अनुभव था, और ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ थे। तो नौशाद साहब वहीं बैठ के रियाज करते थे, और अभी उनका जब हमारे पिताजी के 1984 में स्वर्गवास हुआ, तो उस समय मैं अपने घर पे था। हमारा घर काफ़ी बड़ी कोठी थी और वहाँ पे नाटक के लिए होते थे, काफ़ी मैदान था। तो एक व्यक्ति आए और वो रोने लगे आके, तो मैं समझा नहीं। तो जब मैं पास में गया तो कहने लगे कि आज मैं रो यूं रहा हूँ, अब मैं किसको पुकारूंगा।
0: क्या बात,
1: हम अपने भाई साहब को पुकारते थे, अब आज हम किसको पुकारेंगे। और लेकिन फिर भी उनकी इतनी कृपा थी कि उनके मरणोपरांत भी वो हमसे संपर्क में रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ नाटक के कलाकार, लखनऊ हीरोज एसोसिएशन के नाटक थे, वो भी काफ़ी प्रसिद्धि के थे
0: जी जी।
1: और पिताजी को स्पोर्ट्स में भी बड़ा शौक था, और लखनऊ विश्वविद्यालय के वो हॉकी के कप्तान रह चुके थे अपने ज़माने के। अब असीम जी एक चीज़ बता दूं
0: जी जी,
1: कि उस समय जब हमारा परिवार इतना बड़ा था, सुखी समृद्ध था, हमारे जो दादा थे यानी बाबा, वो बहुत बड़े एडवोकेट थे लखनऊ के, और बहुत मशहूर या धनवान कायस्थों की फैमिली में कहे जाते थे। तो जब हमारे पिताजी की बारात लखनऊ से उन्नाव गई, तो पूरी रेलगाड़ी रिजर्व होके गई थी।
0: अच्छा।
1: और विशेष रूप से उसमें हॉकी की पूरी टीम थी लखनऊ विश्वविद्यालय की, और वहाँ पे तब एक दो दिन की बात नहीं होती थी, एक हफ्ते ये लोग रुके थे उन्नाव में, और उसमें खूब राग रंग हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और उसके हिसाब से ये लौट के आए। तो ये तो हमने अपना बता दिया। और हमारे जो ताऊ जी थे, वो लखनऊ के पहले मेयर रह चुके थे जनसंघ से,
0: अच्छा,
1: चौधरी राजकुमार एडवोकेट। कुछ ऐसा संयोग है कि वहाँ पे न चाहते हुए भी या न किसी से कहें, उसके बाद ही देखा कि लखनऊ की जो महापौरशिप थी, नगर प्रमुख, वो हमारे ही रिश्तेदार परिवार के उसमें रहे। अभी भी हमारे डॉक्टर एससी राय साहब हैं, वो 11-12 साल वहाँ पे लखनऊ के नगर प्रमुख रहे।
0: एक बहुत सुंदर वातावरण में आपका बचपन बीता, जिसमें संगीत के सुर भी थे, जिसमें खेल की भावना भी थी, और जो वकालत वाले तौर तरीके हैं वो भी थे। तो इन सब गुणों का समावेश जाहिर सी बात है आपकी शख्सियत में भी हुआ होगा। आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा, और फिर आपने बचपन में किस तरफ रुझान देना शुरू किया?
1: होता यह था कि हमारे यहाँ शाम को हमारे पिताजी के जो मित्र थे और भी साथ के वकील थे, वो घर आके बैठते थे, तो उस समय ये नहीं था कि बच्चों का आगे ये बात न कहें, तो हम लोग बड़े चाव से सब सुनते थे। तो आज हम वहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बड़े से बात करते हों या बड़ा हमसे बात कर रहा है गुरुजन, और हम घड़ी देखने लगे, तो उसको वो उस जमाने के लोग कहते थे ये बदतमीजी है। तो हमको एक आध बार इसके लिए झिड़की भी मिली।
0: अच्छा।
1: कहते थे कि जब, और दूसरी चीज़ ये, कभी किसी से बुरी जबान ना बोलो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे कुछ छीनने का हक नहीं
0: है।
1: तो हम वहाँ पर रहे तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि हम ये नहीं चाहते कि तुम बहुत बड़े अधिकारी बनो या कुछ कर्मचारी बनो, जिस पद पे भी रहो और जिस जगह बैठो, तो तुम्हारे पास जो व्यक्ति काम के लिए आए, तो ये सोच के काम करो कि अगर तुम उसकी जगह बैठे हो तो कैसा व्यवहार चाहते हो।
0: बहुत सुंदर।
1: तो ये सब चीज़ें जो हैं, आज के ज़माने में भौतिक युग में लोग इसको महत्व नहीं देते, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो संस्कार दे गए वो कभी नहीं मिल सकते कहीं भी।
0: राजेश जी, आपका छात्र जीवन भी बड़ा सक्रिय रहा है। आपके जो अनुभव हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, वो भी बहुत रोमांचक हैं। तो अपने छात्र जीवन के बारे में।
1: ऐसा था, सन 64 में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, और उस समय एक नए लड़के को जो छात्र आया उससे उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन हमारे इन सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी रुचि रही। तो हमारे जो वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर सुशील चंद्रा साहब, वो कहा करते थे कि ये मास्टर ऑफ कल्चरल प्रोग्राम है। और जब हमारा एग्जामिनेशन हुआ अंतिम MSW की परीक्षा का, तो जब पटना यूनिवर्सिटी से आए थे कोई सिन्हा साहब, तो उन्होंने कहा क्या पूछा जाए इनसे साहब, तो कहने लगे इनसे आप सब्जेक्ट के बारे में तो कम पूछिए, ये हमारे यहाँ के जितने कल्चर प्रोग्राम हुए वो सब इन्हीं के उस पर हुए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उनका। और हम गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में हमने पढ़ा, और वहाँ के बाद फिर हम विश्वविद्यालय आए, और विश्वविद्यालय में सन 1967 में हमने समाज कार्य में MA किया।
0: जी जी।
1: और उसके बाद फिर हम लखनऊ मेडिकल कॉलेज के जो मानसिक रोग चिकित्सा विभाग था, साइकियाट्री डिपार्टमेंट, वहाँ एक रिसर्च स्कीम में हमने 2-3 साल काम किया, और XTB पेशेंट की स्कीम थी, रिहेबिलिटेशन ऑफ XTB पेशेंट्स, वहाँ भी हमने काम किया। अब आपको हम ये बताएं, हमारे जो अध्यक्ष थे समाज शास्त्र के, उनके और जो प्रदेश के कारागार निरीक्षक थे IG प्रिजन्स, उनके अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने कहा हमको एक ऐसा लड़का चाहिए जो यहाँ पे जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे सके, एक लेक्चर अंग्रेजी में और बाकी सब हिंदी में। वहाँ पे जेलर्स, जेल सुपरिंटेंडेंट और विदेशों से भी आते थे लोग। तो उन्होंने हमको बुलाया, तो कहने के भाई तुम आ जाओ। तो मैंने कहाँ आए, तो कहने मेरे घर आओ। तो उनके ही ड्राइंग रूम में हमारा इंटरव्यू हुआ।
0: अच्छा।
1: और वहीं से हमारा चयन हो गया जो स्थिर रूप से, स्थायी रूप से इसके लिए लेक्चरर इन क्रिमिनोलॉजी।
0: अच्छा।
1: अब वहाँ पे, अब आपको बता दें, अपने को ग्लान भी होती है, लेकिन ये भी था कि हर एक में चपलता होती है, अंग्रेजी में लेक्चर देने में हमको कुछ परेशानी हो तो हम सोचते, घबराते थे।
0: जी जी।
1: बोल तो लेते थे कुछ ईश्वर की दया से, लेकिन घबराते थे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे वो बहुत सख्त थे, और वो अपने ठीक समय पे आ जाते थे, तो हमने घड़ी की सुई पहले कर दी तो उनके आने से पहले हमारा 15 मिनट पहले क्लास खत्म हो जाता था। तो ये सब बातें उस समय की थी। और वहाँ पे क्या, अब आप सोचिए कि हम रेडियो में कैसे आए।
0: जी।
1: हम वहाँ से जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या जेल रोड से जब हजरतगंज जाते थे या विश्वविद्यालय जाते थे साइकिल से ही जाते थे।
0: अच्छा।
1: तो रास्ते में विधानसभा मार्ग पे आकाशवाणी पड़ता था, तो वहाँ पे हमारे एक आध मित्र थे, तो जब वहाँ गए तो देखा हर एक के कमरे में ये रेडियो सेट रखा है। तो हमने कहा इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं, कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो और क्या किया जाए। तो जगह निकली तो हमने आवेदन किया और हम वहाँ पे चयनित हो गए, और वो था हमारा क्षेत्रीय प्रतिवेदक यानी फील्ड रिपोर्टर के पद पे। वहाँ मैंने कार्य किया, कुछ ऐसा हुआ कि हमको बड़े बड़े वहाँ पे विद्वान पंडित रवि शंकर जी,
0: अच्छा,
1: और ये फिराक गोरखपुरी जी, क्योंकि लखनऊ में से बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी। तो उस समय वहाँ ये था कि जो हमारे केंद्र निदेशक थे उनको ये था कि उन बड़े जो VVIP आ रहे हैं इनको रिसीव करें।
0: जी,
1: तो वहीं पे हमें इन लोगों से दर्शन हुए, इन लोगों को उनसे

0: बड़ी प्रेरणा मिली। पंडित रविशंकर के अलावा अब जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा थोड़ा दखलंदाजी रही, और
1: क्योंकि छात्र राजनीति में आपने सक्रिय रूप से भाग भी लिया, हमने और मूल्यों की राजनीति की।
0: मैंने बताया कि जब मैं 64 में बीए पार्ट वन में था तो लोगों कहने पर मैं खड़ा हो गया, और मैंने कहा कहीं ये हमको हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं सीनियर से कहीं पीट पाट ना दें। तो लेकिन बाद में आपको असीम जी सुन के ताजुब होगा, और मुझे भी अभी तक विस्मय है कि मैं 8,000 वोट से जीता।
1: अच्छा,
0: तो दोबारा फिर मेरी हिम्मत बढ़ गई, कहते ना हौसले वो हो गए बुलंद। दूसरे साल में सेक्रेटरी बन गया। अब लोगों का नहीं, अब ये सब नहीं, अब आप संसद में जाइए। लखनऊ विश्वविद्यालय संसद बड़े महत्वपूर्ण संस्थान था, और वहाँ पे कभी भी ये नहीं कि विध्वंसात्मक कार्रवाई हो, हमेशा रचनात्मक वो होता था। तो वहाँ रह के मैंने पहले उप प्रधानमंत्री का पद पे लड़ा, और वहाँ पर उसमें जीते बीए पार्ट टू में, और एमए फाइनल में आते आते हम प्रधानमंत्री बन गए। और हमारे साथ बड़े बड़े नेता थे, उनके बच्चे भी पढ़ते थे, और जिसमें से हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम उल्लेखनीय है
1: जी जी।
0: और ये जरा राममूर्ति जिनके नाम से संस्थान बना है, इनकी बेटियां हमारे साथ पढ़ती थी। तो हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में हमको समर्थन मिला। और एक चीज़ हम बता दें, इसको अन्यथा न ले, हमको जो छात्राएं थी, ये छात्राओं के जो हॉस्टल थे वहाँ से हमको जितना समर्थन मिला 90% 99%, इतना लड़कों से नहीं मिल पाया। किसी तरह से हम कामयाब रहे, वो हारे नहीं कभी। तो इस तरह से हमारा विश्वविद्यालय में रहा।
1: अच्छा राजीव जी, आकाशवाणी लखनऊ से आपने शुरू किया, इस संस्थान से आपका जुड़ाव हुआ, आकाशवाणी रामपुर कब आना हुआ और किस रूप में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया?
0: हम वहाँ से आकाशवाणी पटना गए।
1: अच्छा, लखनऊ से पटना।
0: हाँ, पटना रहने के बाद फिर एकदम से, अभी होता है भाई अपने प्रदेश जाओ, अपना वैसे सारा देश अपना
1: जी, जी, जी।
0: तो एकदम से कुछ ऐसा संयोग हुआ कि लखनऊ में जगह नहीं थी, रामपुर में खाली हुई, तो हमको उन्होंने यहाँ भेज दिया। तो केसी शर्मा साहब जो डायरेक्टर जनरल हुए हैं, वो हमारे वहाँ केयर निदेशक थे। अब मैं क्या बताऊँ, वो हमको बहुत चाहते थे, कहने लगे वो हमको मोहब्बत में दुष्ट बालक कहते
1: अच्छा।
0: थे। कहते थे कि अभी मैं यहाँ हूँ, तुमको 2-3 साल में तुमको यहीं पे राजपत्रित अधिकारी बनवा दूंगा, और तुम लखनऊ ना जाओ। वो भी लखनऊ गए थे
1: जी।
0: कुछ हम माने नहीं, हमारी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी, तो हम पिताजी बीमार रहते थे, तो हम लखनऊ तो नहीं मिला, तो रामपुर आ गए। तो हम यहाँ 19 मई 1972 से यहाँ पे थे, और 2002 में हम यहाँ से हमने अवकाश ग्रहण किया, सेवानिवृत्त हुए। बीच में एक बार हम आकाशवाणी अल्मोड़ा गए, जब हमारा
1: प्रमोशन हुआ। जी जी। तो राजीव जी, बहुत लंबा अरसा बीता है आपका आकाशवाणी में, और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को आपने बहुत ऊंचाइयां भी दी हैं। यहाँ के अपने थोड़े से अनुभव शेयर कीजिए।
0: हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर कला के माहिर लोग बहुत हैं, मतलब कलाकार जो हैं उनका स्तर बड़े बड़े शहरों के कुछ कलाकारों से भी ज़्यादा ही ऊंचा है, और यहाँ पे उन लोगों में जितनी रुचि है कार्यक्रम के प्रति, वो हमको अन्य एक आध जगह ही रहे, वहाँ पे उतनी नहीं मिली। और जगह तो लोग मतलब से आए चले गए। तो यहाँ पे, और हमको लोग कहा करते थे, हमारे जो कई एक 2-4 मिनिस्टर्स के भी इंटरव्यू लिए, वो कहते थे कि वो राजेश जी का इंटरव्यू ही नहीं है जिसमें अगर परिवार कल्याण की बात ना हो। तो हम प्रारंभ से अंत तक लखनऊ से और पटना और सब हो गए, हम परिवार कल्याण से ही जुड़े रहे। और हमने वैसे रामपुर के केंद्र पे हमने सभी एकांशों का कार्य देखा है, तो उसमें हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई।
1: अच्छा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं राजेश जी, और बहुत यादगार इंटरव्यू रहे हैं वो, और आपके इंटरव्यू लेने का जो अंदाज था वो सबसे अलग था, जुदा था। आपको किसका इंटरव्यू अब तक सबसे बढ़िया लगा कि ये इंटरव्यू लेने में मज़ा आया?
0: जिन लोगों के हमने इंटरव्यू लिए, उसमें एक तो मौर्या थे केंद्रीय मंत्री।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा यहाँ पे साहित्यकार भी आते थे, हुल्लड़ मुरादाबादी, और लखनऊ से डॉक्टर रमा सिंह आई थी, उनका भी इंटरव्यू हमने लिया, उनसे भी बातचीत की, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसके अलावा खेल कूद में हमारी रुचि थी, लेकिन उसमें हमने ज़्यादा भागीदारी नहीं निभाई या निभा नहीं पाया, क्योंकि और आदमी एक ही तरफ देख सकता है। और परिवार कल्याण में हमारा काफ़ी, कहते हैं एक वो भोजन बन गया है, उसके बगैर तभी तो लोग कहते थे कि अगर इंटरव्यू में उनका परिवार कल्याण ना आए तो वो इंटरव्यू नहीं है।
1: और राजेश जी, आपने जब भी इंटरव्यू लिया, एक पैट लाइन आपकी रही कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने लगभग लगभग सभी इंटरव्यू में ये बात किसी ना किसी रूप में सामने रखी श्रोताओं की, और बहुत जरूरी भी था क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो
0: बीमार पड़ेंगे,
1: परेशानी ज्यादा हो जाएगी। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू लिए, किस डॉक्टर का इंटरव्यू लेने में आपको खुद बहुत मजा आया?
0: वैसे तो असंख्य डॉक्टर थे और जिनके हमने इंटरव्यू लिए, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा एक डॉक्टर केपी गुप्ता थे जो यहाँ के स्वास्थ्य महानिदेशक थे। और कुछ एक बात यह भी थी कि जो पहले यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहा इस मंडल में, वही हो के जो वहाँ गया तो उसने उतना ही हमको भी वो सम्मान दिया। केपी गुप्ता साहब थे, उनसे मिला। और दूसरे डॉक्टर दिनेश जौहरी जो बरेली में हैं, इनसे भी लिया, इनसे इंटरव्यू लिया। असर कुछ डॉक्टर से इंटरव्यू लेने में हम घबराते थे। अब आप पूछेंगे घबराते क्यों थे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो इंटरव्यू पे उनकी रिकॉर्डिंग हम रखते थे, क्योंकि काबिल वो बहुत थे लेकिन बोलने में वो कमज़ोर थे, तो हमने कहा आज की तनख्वाही हमारी यही खा गए। तो ऐसे भी डॉक्टर्स थे, लेकिन हमारा सबसे व्यवहार अच्छा रहा। और अब अंदर से कोई शिकायत रखे ऐसी कोई नहीं थी।
1: जी जी,
0: सबसे बड़ा स्नेह भाव रहा। और यहाँ पे उर्दू कार्यक्रम को भी हमने थोड़े दिन देखा, अब चाहे मजबूरी में ही दिया गया तो उसको भी, क्योंकि लखनऊ के रहने वाले हैं वो, हमारे एक घर का वातावरण जो था, हमारे फादर अरेबिक और पर्शियन से थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुमको उतना काबिल तो नहीं बना पाए क्योंकि आज की एजुकेशन में तुम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ किया।
1: राजेश जी, जो आकाशवाणी में काम करने वाले हैं उनके घर वालों को उनसे बहुत शिकायत रहती है। इनके लिए पहली प्राथमिकता आकाशवाणी है, घर को ये लोग भूल जाते हैं। और एक तरह से कुछ लोग सौतन भी कहते हैं। तो आपने किस तरह से तालमेल बैठाया?
0: अरे साहब, हमारे साथ तो ये था कि चंदौसी में गणेश चौथ का मेला लगता है
1: जी।
0: उस साल वहाँ पे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी, तो जब जाने लगे तो हमसे सबसे कह दिया कोई नहीं जाएगा
1: जी जी।
0: हम तिलक कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे एकदम से वो जोशी जी यहाँ के निदेशक थे, तो वो कहने लगे अगर तुम हिम्मत दिखा दो, क्योंकि हम तुमको छेड़ तो सकते नहीं, कारण ये कि अभी वहाँ पे ऐसा हो चुका है और लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चला जाऊँगा। तो कहने कैसे, मैंने कहा वो मुझ पर छोड़िए। तो मैं जब इतवार का दिन था या छुट्टी का दिन, मैं उठा जूते या चप्पल मैंने अपने हाथ में लिया और बाहर निकल आए, और उसके बाद हम चंदौसी आ गए रिकॉर्डिंग करके चले आए। कई बार ऐसा हुआ रात में 10-11 बजे तक यहाँ डबिंग में ही रहते, जैसे अरे आपके हम क्या मुकाबला करें, आप लोग तो बहुत करुणशील हो। तो इस तरह से परिवार के लिए हम निकम्मे थे। ये हम तो समझते हैं कि आकाशवाणी के जो विभिन्न एकांश हैं उनमें जो कार्यक्रम अनुभाग के हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो उन सबकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो ऐसी ही होगी, क्योंकि जो आदमी सिंसियरिटी से काम करेगा तो वो एक ही जगह देख सकता है और बच्चों की पढ़ाई भी इग्नोर हो जाती है।
1: आपकी सफलता में आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रही है?
0: नहीं, जीवन साथी ने कभी एतराज नहीं किया, उन्होंने कोई वो नहीं किया, लेकिन उनको भी जब पति पत्नी है, परिवार का दायित्व निभाना है, दायित्वों का निर्वहन करना है, तो उस बीच में वो भी चाहते हैं भागीदारी हो
1: जी।
0: उन भागीदारी वो ही चाहते थे कि बच्चों को हम कभी पढ़ाएं बैठ के कुछ। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने में भी मारपीट होने लगती थी बच्चों से, तो कहती थी आप ना पढ़ाइए। तो मारपीट से मेरा मतलब ये है कि मारपीट नहीं, हमने अपना टेम्पर लूज किया
1: जी, जी, जी।
0: तो नेचुरली बाद में हमको भी परेशानी होती थी। वैसे बच्चे हमारे ईश्वर की दया से सब पढ़ लिख गए और सब अपने कमा खा रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन ये घर में सामंजस्य बैठाने में, तादम में बैठाने में तो परेशानी आई जाती है हर एक की। जो मैंने
1: बिल्कुल,
0: कहा
1: बिल्कुल,
0: कि जो भी कार्यक्रम में लगा होगा, तब यहीं पे हमारे बच्चे हैं जो लगे रहते हैं, इनसे ज़रा पूछ लो घर की क्या हाल है। घर में दवा लेने निकले नहीं पहुंच पाए
1: जी जी जी।
0: तो ये तो होता है, क्योंकि ये सिंसियरिटी कहलाती है, सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू प्रोग्राम, ये रहा।
1: और राजेश जी, हर संस्थान की अपनी कार्यशैली होती है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जिनके साथ तालमेल हम सबको बैठाना ही पड़ता है। आपने बहुत खूबसूरती के साथ आकाशवाणी और घर में तालमेल बैठाया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और आज सब बहुत अच्छी जगह हैं, सेटल हैं। राजेश जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। संगीत का जिक्र आपने किया, नौशाद साहब से आपके पारिवारिक संबंध रहे और बचपन से ही घर से वो माहौल मिला। आपको खुद क्या सुनना बहुत अच्छा लगता है और कौन आपके फेवरेट है?
0: वैसे संगीत से तो हमको प्रेम है, और जहाँ तक संगीत के साज का प्रश्न है, हमको सितार अच्छा लगा, पंडित रविशंकर जी का।

0: तारम सुनते थे,
1: जी
0: और इसके अलावा लोकगीतों का भी हमको काफ़ी सुनने का शौक रहा है।
1: जी जी फिल्मी गानों की तरफ रुझान।
0: फिल्मी गानों तो रुझान था, लेकिन उतना हम नहीं रहा। और आजकल तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं, घर वाले भी कहते हैं। तो हमने कहा भैया ये जो आजकल का संगीत है, हम ये वैसे ही है जैसे कि हमको सहगल का संगीत नहीं अच्छा लगता था। वो
1: अपनी अपनी
0: एक
1: पसंद
0: अपनी
1: है।
0: अपनी एक पीढ़ी की
1: जी
0: बात
1: जी
0: होती
1: जी जी
0: है।
1: जी
0: और मोहम्मद रफ़ी या मुकेश, ये सभी लोग, इनके संगीत हम सुनते
1: अच्छा राजेश जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, चाहे वो गाना हो चाहे वो
0: थे।
1: खाना हो।
0: हाँ,
1: तो आपको खाने में क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है?
0: हम खाने से ज़्यादा
1: जी
0: खिलाने में बदनाम रहे। और आज लोग हमारे घर पे आके जब तारीफ करते हैं, तो वो लगता है कि हमारे लिए एक तीर लग रहा है। क्योंकि हमने बताया ना सेहत की
1: जी
0: बात,
1: जी जी जी
0: तो भले ही हमने जो खाया पिया और साथ में साथियों के साथ बैठ के जो हम शेयर कर सकते थे हमने
1: जी जी
0: खाया, लेकिन ये जो बीमारी आ गई तो इसकी वजह से लोग उसको भी दोष देते हैं, जबकि हम उसको नहीं मानते।
1: श्रोताओं, आपको बताएं कि राजेश जी आज जब हमसे बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कुछ महीनों पहले ही आपकी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आया था जब आप बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थता का सामना कर रहे थे, लेकिन राजेश जी की हिम्मत है, उनका आत्मबल है, उनका आत्मविश्वास है, उनकी इच्छा शक्ति है कि आज राजेश जी इस माइक्रोफोन के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। तो राजेश जी, इतना आत्मबल, इतनी इच्छा शक्ति किस तरह से संजोई आपने?
0: ऐसा था कि हमारे पिताजी ने कहा, अंग्रेजी में था, वो कहा करते थे, एक तो पहली बात महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लिया करो, जब कभी भी कोई मुसीबत हो, किसी भी तरह की मुसीबत होगी, तुम्हें उसमें बड़ा सहायता मिलेगी। तो हम वो कर लेते थे। और दूसरी एक उन्होंने कहा कि ईविल दिस वे पास अवे, बैलेंस द माइंड इन पेन एंजॉय,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है।
0: बुराई जो है वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगी, और अपने मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखो इन पेन एंजॉय, मतलब हंसी खुशी में। तो ये हमको, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी वही रहे।
1: राजेश जी, बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि हमेशा आपने इसी माइक्रोफोन के जरिए, इसी स्टूडियो में बैठकर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, आज अपना इंटरव्यू देते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं?
0: जब आपने हमको आमंत्रित किया, जब कहा आने के लिए, तो मैं नहीं तो नहीं करता, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतने इंटरव्यू ले लिए, लेकिन आज हम कहीं हम ना उसमें बोल जाएं, क्योंकि कुछ कमजोरी भी थी वैसे भी,
1: जी,
0: लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा है कि जिसकी वजह से अब इंटरव्यू कैसा रहा, हमने अपनी बात कैसे कही, इसका फैसला तो आप ही लोग कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते।
1: लेकिन अपने श्रोताओं से क्या कहेंगे आप?
0: हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि एक तो वो कभी भी धैर्य न खोएं, कभी भी आपत्तिकाल हर एक की ज़िंदगी में आता है, कभी अच्छा समय आया कभी बुरा समय आया, तो हालांकि कहना आसान है, जब अपने पर पड़ती तो आदमी वही सोचता
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: लेकिन हम तो यही कहेंगे धैर्य रखें, और उस बुराई से या उस मुसीबत से छूटने की क्या उपाय हैं, उन पर गंभीरता से मनन करते हुए अपने को उनसे मुक्त करें।
1: राजेश जी, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अस्वस्थता के बीच आप स्टूडियो में आए, श्रोताओं से बातें की, हमने आपकी जिंदगी के आईने में आपके साथ कुछ पल झांकते हुए देखे। आगे हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घ जीवन जिएं, आपके आशीर्वाद की छांव हम सबको मिलती रहे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: असीम जी, आपको और आकाशवाणी परिवार के सभी लोगों को, ज़्यादातर तो लोग हमारे बच्चों ही की तरह हैं, इन सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और दिली आशीर्वाद है कि ये लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जो अपनी मंजिल है उसको सरलता से प्राप्त कर सकें, हम यही कह सकते हैं, यही हमारे पास है।
1: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आईने से अकेले

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, 11:30 का समय हुआ है और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम मन भावन का। आज का मन भावन केंद्रित है एक ही संगीतकार के क्रम में ए आर रहमान के संगीतबद्ध कुछ हिंदी फिल्मी गीतों पर।

सुरों के बादशाह भारतीय फिल्मों के महान संगीतकार एआर रहमान। जी हाँ दोस्तों, आज का मन भावन केंद्रित है, समर्पित है इस सुरीले संगीतकार को। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का साथ सुरेंद्र कौर के साथ रहेगा। आप सभी प्रोग्राम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, एआर रहमान की हम आज बात कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं। एआर रहमान यानी कि अल्लाह रखा रहमान का जन्म हुआ 6 जनवरी 1967 को भारत के तमिलनाडु में, और आपने हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। संगीत की शिक्षा आपको विरासत में ही मिल गई थी। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही ये सिंथेसाइज़र बजाने में पारंगत हो चुके थे। इसी दौरान इनके पिता की भी मृत्यु हुई, जब तो काफ़ी बुरी आर्थिक स्थिति इनकी हो गई थी, सामना करना पड़ा था काफ़ी बुरी स्थितियों का। तो और एक ये बैंड से भी जुड़े हुए थे, और उन्हीं दिनों लंदन के स्कूल में इन्हें स्कॉलरशिप दी थी, और वहाँ से इन्हें पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत की डिग्री भी प्राप्त हुई।

साथियों, हम भारतीयों के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि विश्व के टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर में से एआर रहमान एक गिने जाते हैं। और देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1997 में आपने वंदे मातरम गीत तैयार किया था, जो हम सभी को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था और प्रसिद्ध हुआ था। 1991 में रहमान जी ने खुद का म्यूज़िक रिकॉर्ड करना शुरू किया और 1993 की अगर बात करें तो फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम ने रोजा फिल्म में संगीत देने का आपको ऑफर दिया था और इस फिल्म का संगीत कितना मधुर था ये हम और आप सभी जानते हैं। और अपनी पहली ही फिल्म से इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने शुरू कर दिए थे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत संगीत रोजा फिल्म से।

बहुत खूबसूरत सी आवाज़ थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की। कितना खूबसूरत सा ये सूदिंग सा गीत था जो हम सभी को अच्छा लगता है। हमेशा ही जितनी बार इस गीत को हम सुनते हैं उतनी बार ये गीत हमें अच्छा लगता है। तो बात चल रही है एआर रहमान के कंपोज़ किए हुए कुछ गीतों की। विश्व के टॉप 10 म्यूज़िक कंपोज़र में से तो आप गिने ही जाते हैं। साथ में 2000 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 6 बार तमिलनाडु स्टेट से फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको मिला, फिल्म अवार्ड भी आपको मिले हैं। 2009 में 2 ग्रैमी अवार्ड भी आपके हिस्से में रहे और स्लम डॉग का गीत जो हम आपको सुनवा चुके हैं जय हो, उसके लिए भी आपको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 बार राष्ट्रीय

AR रहमान के संगीत में ये गीत आप सुन रहे हैं ताल फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ दी है अनुराधा श्रीराम ने।

श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि इन सुरीले गीतों पर हम यूं ही झूमते रहें, गाते रहें और आनंद लेते रहें। एआर रहमान जी के उनके संगीत के इस योगदान के लिए आकाशवाणी रामपुर उनका दिल से शुक्रिया करता है और उनको दिल से सलाम करता है। आज का ये संगीतमय सफ़र सुरिंदर कौर के साथ अब यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से बातें होंगी, कुछ गीत होंगे और कुछ संगीत होगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार।

ये था मन भवन कार्यक्रम। श्रोताओं 12 बजने वाले हैं। अब दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी

0: और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। श्रोताओं 12:05:19 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: सुनो ना।
2: हाँ।
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
4: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001-4242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष

और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम, और इस समय श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारणों का, कार्यक्रमों की श्रृंखला का। हमारा अब अगला कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

साथियों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती है आज की आपकी रेडियो साथी सुरेंद्र कौर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी के ईमेल संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम को शुरुआत हम कर रहे हैं। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आए दिन बहार की फिल्म से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर, और इस गीत के लिए हमें फरमाइशें आप सभी की प्राप्त हुई हैं। आप हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर के हमारे श्रोता मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं जैन मंदिर गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी साहब। आदाब के साथ और प्यारा सा नमस्कार भी आपने साथ में भेजा है। और ये अगला कार्य मैसेज हम तक पहुंचा है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी का। कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं चंडीगढ़ सिटी के हमारे श्रोता सतीश अनेजा और विमला अनेजा, और आप लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है नमस्कार के साथ, फेस पर स्माइल की और ज़िंदगी में स्टाइल की कमी नहीं होनी चाहिए। इस संदेश के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और ये अगला संदेश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है। नमस्कार के साथ आप हमें ये संदेश भेज रहे हैं पीएस हानकर, निर्मला हानकर, विशाल हानकर, और आप ही के साथ मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताए और साथ में हैं आशीष मोहरकर। ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम के साथ जसपुर उत्तराखंड के हमारे श्रोता। आदाब और नमस्कार के साथ आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, साथ में हैं नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से हमें प्राप्त हुआ है शाहरुख नूर अंसारी साहब का, और साथ में हैं फरियाद हुसैन, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमें प्राप्त हुआ है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी का। आप हैं बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, साथ में हैं चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा जी का। दिल की गहराइयों के साथ आप शुक्रिया भी करते हैं, साथ साथ में राम राम भी आपने हमें भेजी है जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत। स्टेशन रोड जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। नमस्कार के साथ आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ आप हमें ये मैसेज कर रहे हैं। कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता जुड़े हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, साथ में शिवपुर मंदिर हकीकतपुरा के श्रोता। मऊ से आप हमें मैसेज कर रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार और साथ में हैं आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार जी। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाद्रा दिल्ली से जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, और आपके साथ हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। ये मैसेज ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हमें प्राप्त हुआ है तौफीक अहमद सिद्दीकी, साथ में अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा जी का। और प्यारा सा सलाम हमें भेजा है नूर नगर गंज डुंडवारा के श्रोताओं ने, उज़मा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख ने। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून साहिबा इस मैसेज को हम तक पहुंचा रही हैं और सुनना चाहती हैं कार्यक्रम का ये पहला खूबसूरत सा गीत आए दिन बहार की फिल्म से।
बॉम महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आपने फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। ये मैसेज हमें पहुंचाया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने। एक खूबसूरत सा मैसेज भी हमेशा की तरह आप लिखते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। आप हैं मास्टर खिल्लू परवेज़, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और आपके साथ अमन अफरीदी और राधा नाबदे। ये अगला मैसेज ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से हमें प्राप्त हो रहा है। बहारुल हसन सिद्दकी, मोहम्मद आलम सिद्दकी, साथ में है मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ़, अनाबिया, अलीशा, शकील, फ़हीम और साथ में है मोहम्मद यासीन अंसारी साहब और सुदेश चौहान। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने। सईद भाई, मोहम्मद सैफ और साथ में है अनस, आयशा और फातिमा सदफ। जवाहरनगर दुर्ग के हमारे श्रोता आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं। पटियाली रोड गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता जुड़े हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रमेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, साथ में है निशा और प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन और रोशनी, साथ में है बेबी प्रियांशी, शाहू नगर यवतमाल से ये मैसेज हम तक पहुंचाया है प्यारे से नमस्कार के साथ। ग्राम दूलापुर ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से ये मैसेज नमस्कार के साथ पहुंचा रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से आप हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, सादर नमस्कार आपने भी भेजा है। और ये अगला मैसेज हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल ज़िला उज्जैन मध्य प्रदेश की हमारे श्रोताओं का। प्रणाम के साथ ये मैसेज भेज रहे हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाटा और दिशा कुश मूड़त। और ये अगला मैसेज ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमें प्राप्त हुआ है नमस्कार के साथ। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह का। चंद्रनगर सहारनपुर से आप हैं सुरेश नारंग और आशु नारंग। ये मैसेज हमें पहुंचाने वाले श्रोता हैं राजेंद्र कुमार और आपने ये मैसेज हमें कहाँ से किया है, ग्राम उगाला ज़िला अंबाला हरियाणा से आप हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और आपके परिवार के सभी सदस्यगण। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल और साथ में हैं कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश। ये मैसेज हमें भेजा है ज़िला मुरादाबाद चौराहा गोविंद खुर्द के हमारे श्रोता राजा हुसैन और शाहिद हसैन और साथ में हैं आदिल हुसैन साहब, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अलकबीर हमें ये मैसेज कर रहे हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। नमस्कार आपने भी भेजा है और ये मैसेज पहुंचाया है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार जी ने। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर की राजा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और आप हैं ग्राम नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और साथ में राहुल शर्मा जी। कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सांझ और सवेरा फिल्म का ये गीत हमने लिया है। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और ये मैसेज हमें किया है दाऊद सराय सहारनपुर के हमारे श्रोताओं ने, अनवर सावरी, शनु सावरी, मुदस्सर सावरी, मुजक्किर सावरी और जरीस अंसारी साहब ने आदाब और नमस्कार के साथ इस मैसेज को कर रहे हैं। आप हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु के हमारे श्रोता भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण और साथ में संस्कृति और पौरुष। ये अगला मैसेज रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से हमें प्राप्त हो रहा है। प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा घोड़के जी का। और भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं नमस्कार के साथ धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार इस मैसेज को कर रहे हैं। और ये प्यारा सा नमस्कार के साथ मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल के हमारे श्रोताओं का, पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शव्या रामटेके जी का। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और इनके पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का इस मैसेज को कर रहे हैं नमस्कार के साथ। रघुवीर नगर से जुड़े हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। और ये मैसेज हमें किया है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना जी ने, ग्राम व पोस्ट लदाबली, ज़िला मुरादाबाद से। और ये खूबसूरत सा एक मैसेज लिख रहे हैं, संगीत ना होता तो ईश्वर का एहसास ना होता, इस दुनिया में सिर्फ दुख का ही एहसास होता। हम ना रहें, संगीत सदा रहेगा, संगीत ईश्वर की आराधना है। जी हाँ, बिल्कुल सच लिखा है आपने। और ये अगला मैसेज फाजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा और इस कार्यक्रम में अपना मैसेज भेज रहे हैं। ये अगला मैसेज हमें भेजने वाले हमारे श्रोता हैं।

गुन्नौर के हमारे श्रोता हैं आदिल कमर तस्दीक और मुजफ्फर अली, प्यारा सा नमस्कार आपने अर्ज़ किया है। ये अगला मैसेज पुफाली ज़िला यवतमाल से हमें प्राप्त हो रहा है, जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार विश्वास और अर्पिता जी का। तो आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत, कांच की गुड़िया फिल्म से हमें ये लिया है गीत को, और इसके कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को आपकी पसंद पर।

0: खो गया है कुछ हो गया है हमको, हम खो गए जो दिल खो गया है कुछ हो गया है हमको।
1: किस्मत खुली है मंजिल मिली।

0: किस्मत खुली है, मंजिल मिली है, उल्फत के हर कदम को आया अब जग जीने का मजा,
1: आया अब जग जीने का मजा।
2: कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुरेंद्र कौर के साथ गीत आपके नाम कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं आपकी मेल्स और आपके फरमाइशों के नाम। ये अगली फरमाइश डाबकी रोड अंकोला से हमें प्राप्त हो रही है, अकोला से हमें प्राप्त हो रही है। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर जी नमस्कार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये अगला मैसेज दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, साथ में नोखेलाल वर्मा। वीरगांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला बैन भावसार हमें मैसेज कर रही हैं प्यारे से नमस्कार के साथ। ये अगला मैसेज पहुंचाया है उत्तम नगर दिल्ली के हमारे श्रोताओं ने, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी ने। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ का नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगला मैसेज हमें पहुंचाया है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं ने, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी और साथ में है आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी जी ने। और ये मैसेज मारहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, शाहनवाज, सुहेल हसन, राशिद वारसी, अनम अब्बासी और साथ में हैं यशव अब्बासी साहब। आप ही के साथ सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी साहब हमें मैसेज कर रहे हैं, साथ में हैं इशरत परवीन साहिबा, बहुत बहुत सलाम आपने हमें भेजा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू हैं। साथ में आपके हैं शिवपुरम कॉलोनी के हमारे श्रोता कमला देवी महोबिया और अनय, अनाया और ईशु। तहे दिल से शुक्रिया आपका भी। और ये अगला मैसेज पहुंचाया है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोताओं ने, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी ने। ग्राम खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, आशु और बलदेव कटारिया जी इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। अहमदपुर खैगांव खंडवा के हमारे श्रोता कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली इस मैसेज को भेज रहे हैं। ये अगला मैसेज असीम दुआओं और शुभकामनाओं के साथ हमें पहुँचाया है जलगांव जंक्शन के हमारे श्रोताओं ने, दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, साथ में हैं आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन जी ने। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता हैदराबाद से जुड़े हैं, करथल हैदराबाद के हमारे श्रोता कानुगुला गोपाल जी नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। नाज मंजिल महसूल सीतामणि से आप हैं अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अक्रम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, साथ में हैं कलेर बिहार के हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान और निगहत परवीन। आप सभी के नाम कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत बहारों के सपने फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती है सुरेंद्र कौर। और इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं अपनी पसंद के कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को। कार्यक्रम की अगली फरमाइश जलालाबाद वेस्ट से हमें प्राप्त हो रही है। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी हमें मैसेज भेज रहे हैं और आप हैं ये मैसेज हम तक पहुंचाया है हमारे इन श्रोताओं ने। करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब के हमारे श्रोता नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और साथ में है दमन और अभिजोत। ये अगला मैसेज नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ जी का हमें प्राप्त हो रहा है। कोली नादेड़ महाराष्ट्र के हमारे ये श्रोता हैं। वैष्णव कॉलोनी सनावत से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री साहब और आप ही के साथ हैं। जामा मस्जिद रोड गोगावा के हमारे श्रोता हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कसम और साथ में हैं हाजी अयूब शेरी साहब। आदाब के साथ हमें ये मैसेज आपने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकुड़ झारखंड के हमारे श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुअर्णव आनंद और सत्यम आनंद और आपके साथ बोरछा गाछी पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत जी। ये मैसेज हमें किया है ग्राम जाखौत के हमारे श्रोताओं ने। शंभू दयाल खटक, बिमला देवी खटक, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और साथ में है कुमारी पूजा खटक जी। प्यारा सा नमस्कार आपने भेजा है, साथ में लिखा है आपका हर पल खुशियों से भरा हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें प्राप्त हो रहा है। बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार जी का। साथ में है रामदेवरा के हमारे श्रोता दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बाबड़ी से आप हैं खुदा बख्श खलीफा जी। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है बघेरा दुर्ग के हमारे श्रोताओं का। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव जी का। ईदगाह गेट मुरादाबाद के हमारे श्रोता शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्ला अंसारी, करूला मुरादाबाद के हमारे श्रोता मेराज भाई अंसारी और साथ में नौशाद भाई अंसारी। और ये अगला मैसेज हमें पहुंचाया है बेरड़ी मध्य प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने, हुकुम कर्मकर और सुनीता कर्मरकर, साथ में हार्दिक कर्मरकर और प्राची और तनु कर्मरकर जी ने नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। प्यारा सा नमस्कार हमें भेजा है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोताओं ने। एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, साथ में हैं सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आप हैं प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, आशु और बलदेव कटारिया जी। और ये मैसेज हम तक पहुंचाया है एक खूबसूरत से संदेश के साथ, पानी बचाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। इस संदेश के साथ आप हैं बाजार रोड मुंगीसापुर के हमारे श्रोता मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और

आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत संगीत। फिल्म का नाम है जिंदगी। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और अब कार्यक्रम के इस अंतिम गीत के लिए फरमाइशें आप सभी की हमें प्राप्त हो रही हैं। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवांशहर पंजाब से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतीक्षा संधु और मैक्स इस मैसेज को हम तक प्यार भरे नमस्कार के साथ भेज रहे हैं। और बांसुरी नगरी चौक बाजार जिला पीलीभीत से डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया, सोना कन्हैया, प्रथम कन्हैया, स्वर्णिम कन्हैया और इनका समस्त कन्हैया परिवार कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सादर नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। और ये मैसेज सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के हमारे श्रोताओं का हमें प्राप्त हुआ है। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, हिमाक्ष हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है मैसोल सीतामणि बिहार के हमारे श्रोताओं ने। मुसर्रत जहां, तलत जहां, फरत जहां, रिहत नुजत, शाजिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज इस मैसेज को नमस्कार के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी श्रोताओं का जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और आप सभी को कार्यक्रम

अच्छा भी लग रहा है। या आदर्श नगर मलोट पंजाब के हमारे श्रोता आ गए हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, साथ में है निवान शर्मा जी। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं मौला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना, काजल, असद, भाई बहन फिरोज़ा, मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी साहिबा इस कार्यक्रम में अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर के हमारे श्रोता जॉन डिकॉस्ट्रो, रोजी डिकॉस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और साथ में हैं विलीस डिकेस्ट्रो साहब, नमस्कार के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता कहां से जुड़े हैं, आप हैं नेहरू चौक पैठण के हमारे श्रोता डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल, बेबी सिया और जालना शहर से आपके साथ हैं सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव जी। तो आप सभी श्रोताओं के नाम हम कर रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। और एक मैसेज हमें और प्राप्त हो रहा है ऊपरकोट बुलंदशहर के हमारे श्रोताओं का, कस्बा गुन्नौर यूपी से आप हैं फारूक अली खान, फैज़ी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, तारिया और ऊपरकोट बुलंदशहर के हमारे साथी हैं MS अब्बासी और इनका पूरा अब्बासी सा परिवार जी। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, कार्यक्रम को इसी तरह से सुनते रहिए। ग्राम जखण गांव के अहमदनगर के हमारे श्रोता सलाम और नमस्ते के साथ मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनने की फरमाइश भी कर रहे हैं। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है लव इन टोक्यो फिल्म से, मन्ना डे की आवाज़ें हैं और संगीत बद किया है इस गीत को RD बर्मन ने।

एक और मैसेज को हम लेते चलते हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता जुड़े हैं, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और साथ में आपका समस्त परिवार सप्रेम नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का।

गीत आपके नाम। अभी हमारे श्रोतागण सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। अब कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से होंगे हिंदी में समाचार।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 1:05 और 12 सेकंड हो रहे हैं। अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी। उससे पहले कुछ जरूरी संदेश।
2: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सुनिए अब जानकारी। अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे कुछ लोकगीत। कार्यक्रम होगा धरती गाती है और आज की लोक गायक कलाकार होंगी मोलानिका सक्सेना। 1:30 का समय है महिलाओं के कार्यक्रम कुमकुम का। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा बच्चों के लिए डिजिटल डिटॉक्स। इसके साथ ही एक वार्ता भी आपको सुनवाई जाएगी आस्था सक्सेना के साथ और विषय होगा पढ़ती महिला बढ़ता समाज। गीत संगीत के साथ साथ आपके लिए होंगे कुछ टिप्स समर में हेयर केयर। 2:30 का समय है सुनहरा दौर कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में होंगे कुछ फिल्मी गीत 1980 के दशक के।

श्रोताओं, हमारी शाम की सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे आज शाम कार्यक्रम के साथ, और 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 6:10 का समय है चित्रपट संगीत का, और 6:20 पर किसान साथियों के लिए हम लेकर आएंगे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज इस कार्यक्रम में होगी चर्चा धान की नर्सरी, और साथ ही साथ आपको सुनवाई जाएगी एक भेंटवार्ता। लोक संगीत के साथ साथ आपको मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। संध्या 7 बजे सुनिएगा फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। सात बजकर 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा अपूर्व भारद्वाज की कुछ गजलें। गीत गाता चल फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 पर रिले कार्यक्रम होगा चर्चा का विषय है, और रात्रि 10 बजे सुनिएगा दिल ढूंढता है कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप तक पहुंचेंगी इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ताजा खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सबसे बड़े निशानों को भी मुसलसल कोशिश, तहम्मुल और मजबूत कुव्वत इरादी से हासिल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम इसी जज्बे से मुतासर होकर हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। सुभाषितम कहता है कि एक ख्वाहिशमंद शख्स निशाना हासिल करने की सिमत में अगर मुसलसल बाकायदगी से कोशिश करता है तो वह उसे यकीनी तौर पर हासिल कर लेता है। ऐसा करते हुए उस शख्स को बीच रास्ते में ही हार मानकर अपने रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से होने वाली डेमोग्राफिक तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज प्रभाकर नावलेकर करेंगे। सेंसस कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि को इस कमेटी का रुक्न मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी में रुक्न सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि यह कमेटी गैर कानूनी नकल मकानी और दीगर गैर फितरी वजूहात से पूरे मुल्क में हो रही डेमोग्राफिक तब्दीलियों की जामे तशखीस करेगी। एक रिपोर्ट।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेहत और महकमा तिब्बी तालीम के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अहकाम दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और इमरजेंसी खिदमात की क्वालिटी मुसलसल बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के पेमेंट गेटवे निजाम में इसलाह के लिए अवामी शोबे के 4 खसूसी बैंकों के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग कर तवील बातचीत की। इस दौरान जनाब प्रधान ने तलबा को दिक्कतों से बचाने के लिए बगैर रखना और महफूज अदायगी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान सीबीएसई ने वाजे किया है कि आंसर शीट की तशखीस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में कोई हिफाजत खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। सीबीएसई ने कहा है कि असली तशखीस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल पर कोई हिफाजती खिलाफ वर्जी रोशनी में नहीं आई। डालीगंज नकहा जंगल नई सवारी गाड़ी की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू हो गई है। गाड़ी नंबर 55062 डालीगंज से आज 5:45 पर चलकर कल सुबह 4:45 पर नकहा जंगल पहुंचेगी। दरियस्ता वापसी में गाड़ी नंबर 55061 नकहा जंगल गोंडा डालीगंज सवारी गाड़ी नकहा जंगल स्टेशन से 11:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:25 पर डालीगंज पहुंचेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक लड़की और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहक हो गए जबकि 5 लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए। यह हादसा रायबरेली जिले के सलोन थाना हलके के रसूलपुर गांव के नजदीक पेश आया जब दिल्ली से जौनपुर लौट रहे कुनबे की तेज रफ्तार कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। ریاست میں کل بھی دن بھر تیز دھوپ، شدید گرمی اور لو کا قہر جاری رہا، مگر شدید گرمی سے جھلس رہے لوگوں کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے راحت بھری خبر ہے۔ محکمے کے مطابق مغربی خلل کے چلتے کل سے آندھی طوفان کے ساتھ بارش کے بھی امکان ہے، اس سے درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ تپش سے بھی راحت ملے گی۔ کل دارالحکومت لکھنؤ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.9 اور کم سے کم درجہ حرارت 28.3 ڈگری درج کیا گیا۔ باندہ ایک مرتبہ پھر سے پورے ملک میں سب سے گرم رہا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.4 ڈگری درج کیا گیا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
4: میڈیم ویو اور ایف ایم پر آپ شروتاؤں نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی رامپور کو۔ سمے ہوا ہے 1:15 اور 48 سیکنڈ۔ آئیے اب سنتے ہیں دھرتی گاتی ہے کاریکرم کے انترگت منالیکا سکسینہ سے کچھ لوک گیت۔

धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे हैं मोनालिका सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: धरती गाती है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का ये कार्यक्रम। आज इसमें कलाकार थी मोनालिका सक्सेना। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:28 हो चुके हैं।
1: प्लीज जल्दी,
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
1: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
5: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
4: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी सखी दीपशिखा और आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कुमकुम। वो कार्यक्रम जहां बात होती है आपकी और आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की। और आज की हमारी चर्चा का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ा है हमारी आंखों के तारे, जान से प्यारे बच्चों से। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही है और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब मुश्किल ये है कि आजकल बच्चा सुबह उठता है और सीधे फोन उठा लेता है और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक रात नहीं हो जाती या फिर जब तक उसके हाथ से फोन छीन नहीं लिया जाता। आपको याद है अपनी गर्मी की छुट्टियां जिसमें हम न जाने क्या क्या सीखते थे, जैसे साइकिल चलाना, डांस करना, मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना वगैरह वगैरह। पर आज के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कुछ ऐसी हैं, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में चिप्स या बिस्किट का पैकेट और घर का एक आरामदायक कोना। और बहाना ये कि बाहर बहुत तेज धूप है तो सारा दिन क्या करें। बच्चों के लिए ये छुट्टियां कुछ नया सीखने के समय की जगह एक लंबा दिन बनकर रह गई हैं, जिन्हें वे फोन या रील्स स्क्रॉल करके काट रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि छुट्टियों में बच्चों का औसतन स्क्रीन टाइम दोगुना हो जाता है, जिसका बुरा असर उनकी आंखों और बुद्धि दोनों पर पड़ता है। आजकल बच्चे इंटरनेट से तुरंत हर सवाल का जवाब ढूंढ लेने को स्मार्टनेस समझने लगे हैं, पर उन्हें ये समझाना कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करके स्मार्टनेस का सिर्फ दिखावा किया जा सकता है, असली स्मार्टनेस तो बुद्धि का सही इस्तेमाल करने को कहते हैं, ये बताना हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें, ये हमें ही तय करना पड़ेगा। के लिए सबसे पहले तो अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम तय करें। जैसे अगर वो दिन में 3-4 घंटे मोबाइल देखता है तो सुबह और शाम को आधे आधे घंटे का समय निर्धारित करें फोन देखने के लिए। सीधा फोन देखना बंद ना करें, ऐसा करने से बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो कोशिश करें कि जब आपका बच्चा फोन देखे भी तो वो स्क्रीन टाइम सीखने वाला स्क्रीन टाइम हो, जैसे AI की सहायता से कोई नई भाषा सीखना, कोई पजल सॉल्व करना, अपने शहर के इतिहास के बारे में जानना। ऐसा करने से उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और फोन देखने की जो लत उसे लग गई है वह भी पूरी हो जाएगी। सखियों, फोन पर समय बिताने की लत बच्चों को हम बड़ों से ही लगती है, इसलिए आप यह भी सुनिश्चित करें कि दिन में 1 घंटा आप सिर्फ बच्चे के साथ ही बिताएं। चाहे सिर्फ उसके साथ अपने बचपन की बातें करें या फिर उसके सामान को साथ मिलकर समेटें। रोज की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान कैसे पाए जाएं, इस पर भी उससे चर्चा करें। उनके हल ढूंढने की साथ मिलकर कोशिश करें। विशेषकर रात को सोने से 2 घंटे पहले ना आप फोन का इस्तेमाल करें ना बच्चे को करने दें, क्योंकि बच्चे आपके नियम से नहीं आपको देख कर चलते हैं। अब जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, पर अगर रात को आपका सोने का समय ही निश्चित नहीं होगा और सुबह को उठने का, तो बच्चे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है कि छुट्टियों में बच्चों के लिए सुबह 4-5 बजे उठना मुश्किल है, पर 6 बजे या फिर 6:30 बजे तो उठा ही जा सकता है। तो बच्चों को उठाकर उन्हें बाहर टहलने के लिए ले जाएं, उन्हें एक नया संसार दिखाएं जो स्कूल जाने की भाग दौड़ में वे देख नहीं पाते। चिड़ियों की आवाज, ताजी हवा, हरी घास, ये सब उन्हें फोन नहीं महसूस करा सकता, इस बात का एहसास भी उन्हें कराएं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल गेम्स और शॉर्ट वीडियो बच्चों के दिमाग को तुरंत खुशी देने का काम करते हैं, और बच्चों का दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, इसलिए उसे तुरंत मिलने वाला जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा आकर्षित करता है। वहीं मैदान में खेलने में मेहनत, धैर्य, हार जीत और इंतजार शामिल होता है, इसलिए बच्चे वास्तविक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। तो इस धैर्य को उनके अंदर लाने के लिए आप एक गमले में बच्चे से एक पेड़ जरूर लगवाएं और रोज उससे उस पेड़ में पानी डलवाएं। जब बच्चा धीरे धीरे उस पेड़ को बड़ा होते हुए देखेगा तो उसे एहसास होगा कि हर चीज समय के हिसाब से होती है। इंस्टेंट चीजें रील्स में होती हैं, रियलिटी बहुत अलग है। और इस तरह बच्चे में मेहनत, धैर्य और इंतजार की जो कमी है वो भी खत्म हो जाएगी। सखियों, महान लोगों ने कहा है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। स्वयं को बदलने से युग बदल जाता है। इसलिए आप अगर अपने बच्चों में मोबाइल के प्रति ज्यादा लगाव देख रही हैं, तो कुछ बदलाव स्वयं में भी लाएं। जैसे आप किताब पढ़ने की आदत डालें। आप जानती हैं इसके बहुत फायदे भी हैं, और ये फायदे आपको बताने आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आस्था सक्सेना, जो एक वार्ता के माध्यम से बता रही हैं पुस्तकों का असली महत्व। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। विषय है पढ़ती महिला बढ़ता समाज। अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर किताब खोलकर किसी दिलचस्प कहानी में खो जाना दिन भर की थकान मिटाने का एक मनोरंजक और सुकून भरा तरीका होने के अलावा और भी कई फायदे देता है। पढ़ना वास्तव में आपके मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आदत है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और तनाव में सुधार तो होता ही है, साथ ही कई अन्य बड़े लाभ भी मिलते हैं। पढ़ने के कई फायदे हैं, चाहे आप उपन्यास पढ़ते हों या अकाल्पनिक किताब, ये फायदे आपको हैरान कर सकते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये फायदे जीवन भर बने रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले हर मध्यम वर्ग के घर एक किताबों की अलमारी अवश्य पाई जाती थी, और हर उच्च वर्गीय के घर में एक पूरा कमरा जिसे स्टडी या लाइब्रेरी कहते थे। यह उनके अद्यतन होने, समाज के साथ आगे बढ़ने तथा उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता था। आजकल वृद्ध लोगों की सबसे बड़ी समस्या है उनका अकेलापन। आज हर मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि किसी के पास इतना समय ही नहीं कि कोई उनके पास बैठे उनसे बात करे। हर कोई सिर्फ अपनी समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। परंतु क्या पहले यह समस्या नहीं होती थी? क्या पहले लोग वृद्ध नहीं होते थे? पहले लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? तो इसका उत्तर है किताबें। पहले लोग मात्र ज्ञान अर्जन के लिए ही नहीं बल्कि अपना समय व्यतीत करने के लिए भी पुस्तकें पढ़ते थे। वे पुस्तकों से जो भी ज्ञान या अनुभव अर्जित करते थे उसे सबके साथ बांटते थे, और यही कारण था कि अक्सर लोग उनके पास सलाह लेने चले आया करते थे। छोटे बच्चों को नई नई कहानियां और किस्से सुनाया करते थे। दादा दादी और नाना नानी से बच्चों का विशेष लगाव हुआ करता था, और इससे ही आगे चलकर प्रचलित हुई दादी नानी की कहानियां। परंतु आजकल बच्चे दादी नानी को घेरे हुए क्यों नहीं दिखते? क्या वे बच्चे बदल गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बच्चे तो आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि बालमन तो सदा से ऐसा ही था, कुछ नया जानने को उत्सुक, कुछ नया सीखने का इच्छुक और बहुत सारी बातें करने को तैयार। बस बदली है तो सोच। दादी और नानी ने कहानी सुनाना छोड़ दी और किताबों से दूरी बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक से निकटता बढ़ा ली, और इस तरह बच्चों ने भी उन्हें देखकर मोबाइल से निकटता बढ़ा ली और दादा दादी से दूरी बना ली। और इस तरह वृद्धावस्था में अकेलापन अनुभव करने के एक कारण यह भी बन गया। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप आज से ही कोई भी किताब पढ़ें। यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो अपने घर के बच्चों को रोजाना मात्र एक कहानी या कोई किस्सा सुनाएं, या फिर उनसे कहें कि वो आपको कोई किताब पढ़कर सुनाए। फिर देखिएगा कि बोरियत या अकेलापन आपके जीवन से कहां चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप अपनी अगली पीढ़ी को एक महान भविष्य दे पाएंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि यदि आप बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां और कथाएं सुनाए। यदि आप उन्हें और भी अधिक बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें और भी अधिक कहानियां सुनाए अथवा पढ़ाए। आजकल लोग पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते, और अगर पुस्तक पढ़ते भी हैं तो डिजिटल बुक पढ़ते हैं। परंतु वर्ष 2017 में हुए एक शोध में पाया गया कि यदि हम कोई वास्तविक पुस्तक पढ़ते हैं तो वह किसी डिजिटल पुस्तक के मुकाबले अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि पृष्ठ पलटना, पृष्ठ को छूना, उसकी मोटाई का अनुभव करना, ये सारी प्रक्रिया हमारे दिमाग को शांत और तरोताजा करती है और चीजें याद रखने में हमारी सहायता करती है। जबकि डिजिटल बुक को पढ़ने से मनुष्य अपना फोकस नहीं बना पाता, उसका कंसंट्रेशन टूटता है और वह डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसके विपरीत पुस्तक पढ़ने से उसका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग पुस्तकें पढ़ते क्यों नहीं है? तो इसके कई कारण हैं, जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया का आदि होना। विद्यार्थियों के ऊपर तो पढ़ाई का इतना बोझ है कि उनके पास अन्य पुस्तकें पढ़ने का समय ही नहीं है, और कोविड महामारी के बाद से स्कूलों का अधिकतर काम मोबाइल पर ही आता है। अगर छोटे बच्चों की बात करी जाए तो वह पुस्तकें इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वह देखते हैं कि सब लोग मोबाइल देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी यही करना है। बहुत से बच्चे तो खाना भी मोबाइल देखे बिना नहीं खा पाते। और जो प्रमुख कारण है वह है इंटरनेट, जो सस्ता होने के साथ साथ कई बार मुफ्त भी है। एक शोध में पाया गया कि आज 85.5% गृहिणियों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें से 95% महिलाएं इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रही हैं। एक अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में अमेरिका सहित 90 देशों के हजारों विद्यार्थियों की पढ़ने की परीक्षा का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि चौथी कक्षा के जो विद्यार्थी स्कूल के दौरान हर दिन कई घंटों तक कंप्यूटर का उपयोग करते थे, उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जबकि जब विद्यार्थी लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर पर दिन में आधे घंटे से भी कम समय बिताते थे तो यह अंतर कम या कई बार गायब ही हो जाता था। विद्यार्थी किताब से पढ़ी गई चीजों को ज्यादा समझते हैं क्योंकि इससे उनके अंदर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, गहन चिंतन और तार्किक सोच जैसी क्षमताएं विकसित होती हैं। पढ़ने से दिमाग तेज होता है, ध्यान जल्दी केंद्रित होता है, याददाश्त अच्छी होती है, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। वे नई चीजों को देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं और अपनी इसी जिज्ञासा के कारण वे चीजों और घटनाओं पर ध्यान देते हैं, उन पर विचार करते हैं, कई बार गहन अध्ययन भी करते हैं और कार्यों को सावधानी पूर्वक करते हैं। इससे उनके अंदर धैर्य आता है, वे लोगों को, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं, वे पशु पक्षी पेड़ आदि के लिए संवेदनशील बनते हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इन सारे गुणों को जानकर पुस्तकें खरीदते तो हैं, पर जब पढ़ने की बारी आती है तो वह एक दो दिन पढ़कर किताब रखकर भूल जाते हैं और फिर कोई नई पुस्तक खरीद लाते हैं। तो इसके लिए उन्हें यह नियम बनाने की आवश्यकता है कि कोई नई पुस्तक तभी खरीदी जाए जब पुरानी समाप्त कर लें। या अगर आपको पुस्तकें खरीदना पसंद है तो यह भी एक अच्छी आदत है। हाल ही में आंके गौड़ा, जो कि कर्नाटक के 75 वर्षीय सेवानिवृत्त बस कंडक्टर रह चुके हैं, को 25 जनवरी 2026 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक अनाम नायकों की श्रेणी में प्रदान किया गया। दरअसल उन्होंने कर्नाटक में मैसूर के पास हरला हल्ली गांव में पुस्तक माने, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर, नामक पुस्तकालय की स्थापना की। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पुस्तकें एकत्रित करना आरंभ किया और 5 दशकों से अधिक समय तक अपने वेतन का 80% इसमें निवेश किया और अंततः पुस्तकालय के विस्तार के लिए मैसूर में अपना घर बेच दिया। तो पुस्तकें ज्ञान के साथ साथ प्रसिद्धि भी प्रदान करती हैं। और इसका एक और उदाहरण भारत की वह प्रसिद्ध अंक ज्योतिषी हैं, जो बताती हैं कि एक समय था कि उनके पिता का व्यापार डूब गया था। जीवन यापन के लिए वह स्वयं भी पापड़ और अगरबत्तियों की फैक्ट्रियों में काम कर रही थी। एक दिन उनके पिता को मंदिर के पुजारी ने एक अंक विद्या की पुस्तक दी। उसे पढ़कर उन्हें उस विषय में रुचि हुई तो उन्होंने और पुस्तकें पढ़ी और लोगों को परामर्श देना आरंभ किया, जिससे लोगों को फायदा हुआ। और आज उस विद्या को सीखकर वे इतनी प्रसिद्ध हो गई हैं कि बड़े बड़े नेता और अभिनेता भी उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं। सखियों, इन उदाहरणों को देने का उद्देश्य किसी की प्रशंसा करना नहीं था, बल्कि आपको मात्र यह अनुभव कराना था कि एक पुस्तक किसी का जीवन किस तरह बदल सकती है। तो क्या यह चमत्कार आपके जीवन में नहीं हो सकता? क्या आप उस आसमान को नहीं छू सकती जिसकी आपने मात्र कल्पना करी हो? हो सकता है, अवश्य हो सकता है, क्योंकि यदि अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें पढ़ने से इतने सारे लोगों का जीवन बदल सकता है, वह सफल हो सकते हैं और सफल भी इतने जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो, तो क्या यह करके आप सफल नहीं हो सकते? तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? आप भी आज से ही, या फिर मैं तो कहूंगी अभी से ही, हर दिन कोई कहानी, वृतांत, लेख, चुटकुला, पहेली, समाचार कुछ भी पढ़िए, मगर पढ़िए अवश्य। या बाजार से पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। यदि खरीदना नहीं चाहते तो अपने निकटतम पुस्तकालय से संपर्क करें, वहां आपको अपनी रुचि के अनुसार बहुत सी पुस्तकें मिल जाएंगी।
1: अब आप में से बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि पुस्तकालय में तो बहुत पुरानी पुस्तकें होती हैं, परंतु स्मरण रहे कि पुस्तकें पुरानी अवश्य हो सकती हैं, परंतु उनमें निहित ज्ञान सदा नवीन होता है, वह कभी पुराना नहीं होता। और जो लोग सफल हुए, उन्होंने यह नहीं देखा कि पुस्तकें नई हैं या पुरानी, उन्होंने मात्र उसे पढ़ा और उससे जो भी ज्ञान अर्जित किया वह उनकी सफलता का कारण बना। तो आप चाहे किसी भी आयु के हों, कोई भी कार्य करते हों, करिए, मगर पुस्तकें अवश्य पढ़िए, क्योंकि जिस तरह आज मैं आपको लोगों के उदाहरण दे रही हूं, उनकी सफलता के किस्से सुना रही हूं, क्या पता कल कोई आपका उदाहरण देकर लोगों को प्रेरित कर रहा हो। तो पढ़िए और प्रेरित करिए अपने परिवारजनों को पढ़ने के लिए, और प्रेरणा बनिए अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सखियों, अभी आपने सुनी एक वार्ता, विषय था पढ़ती महिला बढ़ता समाज, वार्ताकार थी आस्था सक्सेना। तो सखियों, अभी आपने जाना कि किताबों से भी हमारा स्वस्थ मनोरंजन संभव है। वैसे अगर एक अच्छा सा गीत सुन लिया जाए तो भी हमारा मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत और तरोताजा हो जाते हैं।

सखियों, आजकल मौसम बहुत गर्म है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में हेल्थ और स्किन ही नहीं बल्कि हमारे जो बाल हैं वो भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो गर्मियों में बालों का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ हेयर केयर टिप्स जिन्हें अपनाकर आपके बाल गर्मियों में भी खूबसूरती से लहराएंगे। तो देखिए, आजकल तेज धूप हो रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब भी आप बाहर निकले तो अपने बालों को किसी स्कार्फ से या किसी दुपट्टे की मदद से ढककर निकलें, ताकि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें आपके बालों को नुकसान ना पहुंचा सके। जहां तक हो सके बालों को खुला ना रखें। कोई ऐसा हेयर स्टाइल बनाएं जिससे कि बाल बंधे रहें, जैसे पोनीटेल बनाएं। बालों को बहुत ज्यादा कसकर बांधना भी बालों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप अपने बालों को स्टाइलिंग कर रही हैं तो उन्हें हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स अप्लाई करके ही स्टाइलिंग करें। इसके साथ ही हफ्ते में कम से कम 3 बार बाल जरूर धोएं, ताकि बालों में चिपचिपाहट ना रहे। यदि आपके बाल ऑयली हैं तो हर दूसरे दिन आप बालों को धो सकती हैं। साथ ही बालों को रेगुलर ट्रिम कराते रहें, इससे आपके बाल दो मुंह होने से बचेंगे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है तो बालों की जड़ों में नींबू का रस लगाकर 20 मिनट तक रखें और फिर ठंडे पानी से धो दें। इससे सिर में ठंडक भी पहुंचती है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है। सिर में आंवला लगाने से भी बालों की खूबसूरती बढ़ती है। बालों को बार बार कंघी करने से भी इसमें जमी धूल मिट्टी झड़ जाती है, इसलिए बाल स्वस्थ रहते हैं। शैम्पू का ज्यादा इस्तेमाल बालों को ड्राई कर देता है, इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का शैम्पू ही इस्तेमाल करें। मेहंदी में नींबू का रस और एक अंडा फेंटकर पैक बनाकर आप अपने सिर पर लगा सकती हैं।

0: इसे लगाने से बालों में चमक आती है और आपके बालों को ठंडक भी मिलती है। बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा जेल को स्कैल्प पर अप्लाई करें, 15 मिनट बाद आप किसी शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल बहुत मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, रूखे हैं, तो इसमें नींबू के रस में ऑलिव ऑयल मिलाकर आप मसाज करें। इससे आपके बालों में हेल्दी शाइन आ जाएगी। कोकोनट मिल्क से मसाज करने से भी बालों को पोषण मिलता है और बाल नरम व मुलायम बने रहते हैं। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, तो डैमेज बालों को रिस्टोर करने के लिए एक पके केले को मैश कर लें। इसमें 1 टेबल स्पून शहद मिलाकर बालों में लगाएं। इससे बाल दोबारा से अपने नेचुरल टेक्सचर में वापस आ जाएंगे। कभी कभी गर्मियों में बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर उससे आप बाल धो सकती हैं। ये आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। बालों की देखभाल के लिए दही एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद प्रोटीन, लैक्टिक एसिड और विटामिन बालों को गहराई से पोषण देते हैं, रूखापन दूर करते हैं और रूसी से लड़ने में मदद करते हैं। दही एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। कभी-कभी गर्मी के मौसम में अचानक से बालों में बहुत खुजली होने लगती है, इसके लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी ठंडक स्कैल्प की जलन और खुजली को शांत करती है। आप जरूरत के हिसाब से दही में कुछ खास चीजें मिलाकर बेहतरीन हेयर मास्क भी बना सकती हैं। जैसे रूखे बालों के लिए एक पके हुए केले को अच्छी तरह मैश करके 2 चम्मच दही में मिलाएं। इसे बालों में लगभग 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर शैम्पू कर लें। ये घुंघराले और रूखे बालों को सीधा और सिल्की बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। बालों की चमक बढ़ाने की जब बात हो, तो भी दही पीछे नहीं है। 3-4 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं। 20 मिनट छोड़ने के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लें। आपके बाल बहुत ही चमकदार बन जाएंगे। बालों की मजबूती बढ़ाने के लिए 2 चम्मच दही में एक अंडा अच्छी तरह से फेंट लें और इसे जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं और 30 मिनट बाद शैम्पू कर लें। आपके बालों की मजबूती दोगुनी हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि बालों के लिए खट्टा दही सबसे अच्छा होता है। और हाँ, हेयर मास्क को बालों में 20 से 30 मिनट से ज्यादा कभी ना लगा कर रखें, नहीं तो आपके बाल रूखे लग सकते हैं।
1: तो सखियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा, लेकिन अब घड़ी की टिक टिक हमें इजाजत नहीं दे रही है कि हम आपसे कुछ और बातें करें। इसलिए अगले अंक में कुछ नई बातों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी दीपशिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं।

0: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

0: यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
3: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
4: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर आप श्रोता जुड़े हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबके लिए हम लेकर आए हैं 1980 के दशक के कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को।
6: यह दौर

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती है आज की आपके इस कार्यक्रम की रेडियो साथी सुरेंद्र कौर। आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। 1980 के दशक की फिल्मों के अंतर्गत आज हम आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं। देश प्रेमी फिल्म से इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़। फिल्म का नाम वक्त की दीवार। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुनहरा दौर सुरिंदर कौर के साथ। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मकसद फिल्म से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले और संगीतकार बप्पी लहरी।

सुनहरा दौर, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 5 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
1: राधे श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे सीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है ऊपर से लेके नीचे तक
1: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
2: बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
1: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
2: बिल्कुल
1: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
2: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जल जीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहर में बिल्कुल बाहर ना निकले,
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और साथ ही
2: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
1: बिल्कुल अपने को पूरा ढक लगा के जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं जो सैलेड हैं वो आप जरूर खाएं,
2: बिल्कुल,
1: और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
2: जी और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं कुछ ना कुछ, तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तला भुना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें,
1: कोशिश करें हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
2: जी,
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
2: हल्का लें। और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को सखियों को कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
1: तरह, तो तरह आपके
2: घर में जी
1: तरह तरह के चावल
2: तरह
1: के
2: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का,
1: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल,
1: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन बहुत ज्यादा पसंद है जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
2: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है आलोचना, तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
1: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में,
2: क्योंकि
1: इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
2: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे

0: गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं, बड़े मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षित।
1: हाँ
0: अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
1: हाँ
0: उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है।
1: बहुत
0: ठीक
1: ज्यादा।
0: है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से
1: बहुत
0: चल
1: हाँ
0: फिर नहीं
1: बिल्कुल।
0: सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक
1: वही,
0: विचार भी हैं
1: हर
0: और
1: चीज के दो पहलू होते
0: नकारात्मक
1: हैं।
0: गुण हर
1: जी
0: एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
1: कि
0: कि
1: इसमें
0: आपको इसमें
1: नकारात्मक
0: क्या
1: पहलू क्या है इसके
0: है।
1: और
0: जी
1: सकारात्मक क्या है।
0: जी
1: और साथ ही आज हम बात बात करेंगे, साड़ियों संसार लेकर आए हैं, तो
0: साड़ियों
1: तरह
0: के
1: तरह की
0: संसार में आज
1: साड़ियां
0: कहाँ चलने वाले हैं,
1: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र
0: क्या
1: प्रदेश में
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सारे संदेश लिखने हमें हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो अभी
0: तो
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी। तो
0: हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ी ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि अब आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए तो
1: हाँ,
0: बहुत
1: गरिमामयी
0: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो
1: बहुत सुंदर लगती हैं। और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बनाए, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी, जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्र या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेंजा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
0: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
0: जी,
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक इसको बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
1: जी, इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके

0: या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं। क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
1: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
0: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
1: बस।
0: निकाल देना
1: हाँ
0: है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
1: बिल्कुल,
0: ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
1: बिल्कुल
0: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं
1: मन ही लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ,
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही
0: एक ही है
1: बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती है, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल। सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जाता है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी

0: सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल,
0: हो रहा
1: ये
0: है।
1: शोध में सामने आया है कि
0: जी
1: बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
0: जी
1: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती
0: बिल्कुल।
1: छाई
0: और
1: रहती
0: हम
1: है।
0: शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं, तो
1: बिल्कुल
0: कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए थे।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी, और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने
1: बिल्कुल,
0: लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में, छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना,
1: हाँ
0: उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे गेम
0: तो
1: बना रहे हैं ना वो लोग, कि
0: जी
1: जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है, वैसे
0: हाँ बिल्कुल
1: बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जा रहे हैं कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि
0: तो
1: उनको
0: ये
1: फायदा
0: और
1: हो।
0: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
1: जी
0: चीजें
1: हाँ
0: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब
1: बिल्कुल,
0: चीजों से
1: और
0: ना
1: सबसे बड़ी
0: फंसे।
1: बात है दीपक, कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए, बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े से आए दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: बढ़िया।
0: है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और
1: बिल्कुल
0: फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन
1: बिल्कुल देखिए,
0: उन्हें
1: बिल्कुल
0: जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं। अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पे खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसे, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसे, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है। सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि
0: बिल्कुल
1: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब
0: कहा।
1: तक आपके
0: और
1: ऊपर
0: जो
1: बुरा नहीं।
0: अकेले रहते हैं घर में
1: जी
0: सीनियर सिटीजन,
1: जी
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी बिल्कुल
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी
1: हाँ
0: जाती
1: हाँ
0: हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बस
1: नहीं,
0: अगर उसका
1: सही
0: किस तरह से
1: तरीके से,
0: संयमित
1: और ये
0: इस्तेमाल
1: सिर्फ
0: करना
1: बुजुर्गों
0: है
1: के
0: ये
1: लिए नहीं,
0: हमें।
1: बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं।
0: जी
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध त्योहारती भी फोन जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जाने चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने के बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां

0: वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं, और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गिफ्ट सुनना चाहिए।
1: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़ रहे हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने की
0: है।
1: इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते
0: बिल्कुल।
1: हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और

0: तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें एक काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
1: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं, और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
0: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
1: हाँ बिल्कुल
0: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
1: चलिए
0: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंध लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
1: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां है,
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने

0: मुझे इनवाइट किया है आज।
1: क्या बात है? अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
0: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है,
1: जी
0: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
1: बनारस के पास
0: बनारस के पास, पहले बनारस होता था, अभी
1: जी।
0: वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था, तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके
1: ओहो
0: बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से, और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
1: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
0: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि
1: जी
0: डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए, और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली कन से, कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में, कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर, ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर
1: अट्रैक्ट
0: काफ़ी
1: करती है।
0: अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई, जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक, अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ, उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट
1: जी
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है, जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है, उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है, जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है, तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है, वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ, तो उसमें

0: कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
1: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
0: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, या आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि, हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी, ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड 19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपके वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा. और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता.
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप इसे प्ले कर सकते हैं.

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि सीपीआर जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी सीपीआर क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने सीपीआर तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला सीपीआर मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी, और
0: अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था, और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहां पे सीपीआर किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया, और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये बीकेसी हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, सीपीआर किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। आईसीयू ने बोला आपने राइट ली, उनको सीपीआर दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना, फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको सीपीआर किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में सीपीआर देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो लाइक कि जो सीपीआर ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर

0: डॉक्टर हूँ और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं. एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए. बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए. ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, सडनली कोई कोलैप्स होता है. इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स. तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में. तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से. जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया. हमारे पास फोटो आए, अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया. उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी. तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है.
1: जी जी.
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है. उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है. और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं. अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी.
0: तो वो एक अच्छा मकसद है. एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था. CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी.
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजिली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है.
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है.
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है. और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं. तो उसको ये जेन्युइन डर था. तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं. हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है. अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ. जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो. एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो. और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा. एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला. अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा. तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं. मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी. तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है. और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं. तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको.
1: बिल्कुल. तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है. तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो. डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की.
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहां पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं. या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू.
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं.
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे. तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए, 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना.

0: था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह,
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रांग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। समीर इसमें शान जी ने भी गाया और कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस

0: कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था. तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है.
1: जी
0: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको
1: बिल्कुल
0: खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं, आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी, उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि
1: जी
0: आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती, नहीं, अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
1: प्रायोरिटी नहीं थी।
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज, एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे, चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए. बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है, तो वो नहीं जाते हैं, और उस पर कटौती भी करते हैं. क्योंकि मैं, एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप, उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं, तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है, फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो, स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है. अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को, फोटो उसने गूगल में डाल दिया, चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में, यहाँ पे आपका किडनी आता है, और आपको किडनी का, और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी, ओबेसिटी कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी. तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था,
1: ओ गॉड,
0: लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब से आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो
1: जी
0: इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए,
1: जी
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी।
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की है।
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो
1: यस
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट,
1: यस
0: उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहां एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है, आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना।

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट इस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी

0: अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट
1: हो,
0: और 78 MP
1: क्या बात
0: पार्लियामेंटेरियन
1: है।
0: सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू
1: जी
0: सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि क्योर्स में यूज़ करें.
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं.
1: जी
0: और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है
1: जी
0: कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा, एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो
1: जी
0: ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट के वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मैं

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे। तो हम देख

0: थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई से कार्यक्रम सुन रहे थे। संध्या के 5 बजे हैं। आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। ये आकाशवाणी रामपुर है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम आज शाम।

आज शाम कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़, तपती धूप और गर्म हवाओं के बाद अब वक्त है इस सुहानी शाम को थोड़ा सा सुकून देने का। गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन शाम का अपना एक अलग जादू होता है। धीरे धीरे सूरज ढलता है, हल्की होती रोशनी और दिल में उतरती कुछ मीठी यादें, ऐसे ही खूबसूरत एहसास लेकर आती है हर शाम। आपने कभी गौर किया है, फूल हमेशा मुस्कुराना सिखाते हैं। कभी कितनी भी तेज धूप क्यों ना हो, वो खिलना नहीं छोड़ते। और शायद इसी वजह से गीतों में फूलों का जिक्र आते ही दिल थोड़ा सा नर्म हो जाता है। जब इंसान अपने जज्बात शब्दों में नहीं कह पाता, तो वो कभी चांद से बातें करता है, कभी हवाओं से और फिर कभी फूलों से। और आज हम भी फूलों से एक छोटी सी बात करने वाले हैं। गर्मी की शाम में अगर थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए और साथ में कोई प्यारा गीत, तो माहौल वाकई में बन जाता है। अपनी चाय की प्याली को थोड़ा पास रखिए, चेहरे की मुस्कान को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए और दिल को तैयार कीजिए इस गीत के लिए।

0: आज शाम एक बार फिर से जुड़ गए हैं हम और आप इस खूबसूरत शाम में। श्रोताओं, जिंदगी भी ना मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी छांव, कभी खुशियों की बहार, तो कभी इंतजार की लंबी रात। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, वक्त कभी रुकता नहीं। जो पल आज है वो कल याद बन जाएगा, और शायद इसीलिए पुराने गीत हमारे लिए और हमारे दिल के लिए इतने करीब होते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ संगीत नहीं, जिंदगी की सच्चाई छुपी होती है। हम चाहे कितने भी बदल जाएं, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन कुछ एहसास हमेशा वही रहते हैं। मोहब्बत, यादें, इंतज़ार और दिल का वो कोना जहां पुराने गीत चुपचाप बसे रहते हैं। अब अगला नगमा भी कुछ ऐसी ही गहराइयों के भीतर छुपा हुआ है। एक ऐसा गीत जो हमें ये एहसास दिलाता है कि मौसम बदलते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन का सफ़र चलता रहेगा। कभी खुशियों की बहार आएगी, कभी उदासी का मौसम भी होगा, मगर उम्मीद का दिया जलता रहना चाहिए। और सच कहें तो यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ भी होता है कि अंधेरी की रात के बाद एक नई सुबह भी हमारा इंतज़ार करती है, और चिलचिलाती धूप के बाद एक शाम रंगीन समय लेकर आती है। इस प्यारी सी शाम में अपनी यादों को और थोड़ा मुस्कुराने दीजिए, दिल को पुराने दिनों की सैर करने दीजिए, और गुनगुनाई ये नगमा मेरे साथ
1: और बेल आइकन।

जी हाँ, आती रहेंगी बहारें और जाती भी रहेंगी, लेकिन यादें वो हमेशा दिल में महकती रहेंगी। और यही पुराने नगमे कभी मुस्कान बनकर तो कभी याद बनकर हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। फिलहाल अब आज शाम से मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ये सुरीला सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। मुलाकात होगी फिर कुछ और खूबसूरत गीतों और बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आकांक्षा को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि आप मुस्कुराते रहेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं अब युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम स्टूडियो में लेकर हाजिर हैं फातिमा और उनके साथी भारती।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं भारती
1: और साथ हूँ मैं फातिमा।
0: कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और चेहरे पर मुस्कान होगी। उसी मुस्कान के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी का। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जानते हैं हमारा आज का सवाल।
1: दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, भारत में वाटर पॉजिटिविटी दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है?
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। भारत में वाटर पॉजिटिविटी दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है?
1: और दोस्तों, हमारे इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के अपडेट किए गए पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजना होंगे अपने अपने सही जवाब। सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। भारती, क्या तुम जानती हो, आज का दिन भारत के इतिहास में बेहद खास और भावुक माना जाता है, क्योंकि आज हम याद कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि।
0: जी हाँ फातिमा, आज 27 मई यानी आज ही के दिन हम मनाते हैं इनकी पुण्यतिथि। उन्होंने हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था।
1: बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केवल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान स्वतंत्र सेनानी भी थे।
0: सही कहा, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन, सेवन्य अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
1: इतना ही नहीं, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। उनका जीवन देश सेवा और त्याग का उदाहरण है।
0: केवल इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया।
1: ठीक कहा भारती, उन्होंने बच्चों से बहुत प्रेम किया, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है।
0: उन्होंने बड़े बड़े बांध, कारखाने और उद्योग स्थापित करवाए।
1: पर भारती, क्या तुम्हें पता है भाखड़ा नंगल डैम यानी बांध को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था?
0: सही कहा फातिमा, और उन्होंने बच्चों से बहुत प्यार। सच में उनका जीवन हमें सभी के लिए प्रेरणा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके आदेशों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।
1: भारती, मुझे उनकी एक बात बहुत प्रेरणादायक लगती है कि देश की प्रगति शिक्षा और युवाओं के हाथों में होती है। इसी संदेश के साथ हम देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को विनम्र श्रद्धांजलि और दीजिए हमें इजाज़त एक छोटे से ब्रेक की।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों अब चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। जी हाँ, बात हो रही है महान समाज सुधारक और लेखक कांदुकुरी वीरेसलिंगम की, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
0: कांदुकुरी जी का जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री यानी वर्तमान राजमहेंद्रवरम में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज थे और समाज की समस्याओं को समझने लगे थे।
3: दोस्तों उस समय समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के साथ भेदभाव जैसी कई बुराइयां थीं। कांदुकुरी जी ने इन कुरीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया।
0: उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और समाज को जागरूक करने के लिए कई पत्र पत्रिकाएं भी शुरू की। उनकी प्रसिद्ध पत्रिका विवेक वर्धनी समाज सुधारक का एक बड़ा माध्यम बनी।
3: दोस्तों कांदुकुरी जी सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, वो तेलुगु साहित्य के भी महान लेखक थे। उनका उपन्यास राजशेखर चरित्रमु तेलुगु भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है, इसलिए उन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य का जनक भी कहा जाता है।
0: दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और

0: लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। 27 मई यानी आज ही के दिन 1919 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं।
1: दोस्तों, कुंदुकुरी वीरसिलिंगम हमें संदेश देते हैं कि शिक्षा और जागरूकता से समाज को बदला जा सकता है। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी समाज में समानता, शिक्षा और मानवता का संदेश फैलाने का संकल्प लें। हमारी ओर से उनको उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।
0: दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आज के दिन और क्या क्या है खास। आज का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज जन्मदिन है पूर्व भारतीय क्रिकेटर, शानदार कमेंटेटर और सफल कोच रवि शास्त्री जी का।
1: दोस्तों, रवि शास्त्री जी का जन्म 27 मई यानी आज ही के दिन 1962 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का बेहद शौक था और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाई। वे भारतीय टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे। उन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी शानदार गेंदबाजी से भी भारत को कई मैच जिताए।
0: दोस्तों, रवि शास्त्री जी की सबसे खास बात थी उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज। साल 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। उस समय इनाम में ऑडी कार मिली थी, जो आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास का यादगार पल माना जाता है।
1: दोस्तों, खिलाड़ी के रूप में सफलता पाने के बाद रवि शास्त्री ने कमेंट्री की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। उनकी दमदार आवाज और प्रसिद्ध लाइन ट्रेसर बुलेट आज भी क्रिकेट फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। उनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने विदेशों में कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की और टीम का आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
0: रवि शास्त्री जी केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आइए आज उनके जन्मदिन पर हम सब मिलकर उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं दें और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को सलाम करें। दोस्तों, कुछ खास है आज में आज बस इतना ही।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट व्यक्तित्व विकास का, जिसका सब सेगमेंट है आवश्यक गुण। तो आइए जानते हैं आज का हमारा आवश्यक गुण क्या है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की। दोस्तों, जब भी देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों की बात होती है तो
3: दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा गुण जो हर इंसान की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति यानी मन की वो ताकत जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सिखाती है।
4: दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी और कोई कलाकार। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए मेहनत, और मेहनत को लगातार जारी रखने के लिए चाहिए मजबूत इच्छा शक्ति।
3: कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम की शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी आते ही हिम्मत हार जाते हैं। और यही वो समय होता है जब इच्छा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
4: वो हमें कहती है, रुको मत, कोशिश करते रहो। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया में कुछ बड़ा किया, उनके रास्ते कभी आसान नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हर मुश्किलों को पार किया।
3: एक छात्र अगर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, चाहे मन करे या ना करे, तो वही आदत उसकी सफलता का कारण बनती है। एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, कई बार हारता है, लेकिन उसकी जीतने की इच्छा उसे फिर मैदान में वापस ले आती है।
4: दोस्तों, इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, इसे धीरे धीरे मजबूत बनाया जाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें, समय पर उठना, मेहनत करना, हार न मानना, यही इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है।
3: और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो आधी जीत वही मिल जाती है।
4: कई बार लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन दोस्तों याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल भी खास होगी।
3: इसीलिए असफलता से डरिए मत, असफलता तो बस एक सीख है जो हमें और मजबूत बनाती है। तो दोस्तों याद रखिए, इच्छा शक्ति वो चिंगारी है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, और जब इरादे मजबूत हों तो मंजिल भी एक दिन कदम चूम ही लेती है।
4: तो दोस्तों, खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं अगर मन में जीतने की इच्छा हो। दोस्तों, व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट आवश्यक गुण में आज बस इतना ही।
2: दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर।

0: दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे हुनर के बारे में जो न सिर्फ हमारी रचनात्मकता बढ़ाता है बल्कि हमें आत्मनिर्भर भी बना सकता है। जी हाँ, क्राफ्ट मेकिंग यानी हस्तकला।
1: आज के समय में क्राफ्ट सिर्फ शौक नहीं रहा बल्कि स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास का एक शानदार माध्यम बन चुका है।
0: दोस्तों, क्राफ्ट मेकिंग में हम कई चीजें सीख सकते हैं, जैसे पेपर क्राफ्ट, ओरिगामी, वेस्ट मटेरियल से सजावटी सामान बनाना, राखी, ग्रीटिंग कार्ड, क्ले आर्ट, फ्लावर मेकिंग और होम डेकोरेशन आइटम। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे सीखने के लिए बहुत महंगे सामान की जरूरत भी नहीं होती। घर में मौजूद पुराने अखबार, कार्डबोर्ड बोतलें, कपड़ों के टुकड़े और रंग बिरंगे पेपर से भी बेहतरीन क्राफ्ट तैयार किए जा सकते हैं।
1: दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसे स्किल डेवलपमेंट कैसे बनाया जाए। रोज थोड़ा समय क्रिएटिविटी काम के लिए निकालें, इंटरनेट और वीडियो से नए डिजाइन सीखें, स्कूल और कॉलेज की प्रदर्शनियों में हिस्सा लें, अपने बनाए हुए सामान को सोशल मीडिया पर शेयर करें।
0: तो दोस्तों, अगर हम लगातार अभ्यास करें तो यही हुनर आगे चलकर छोटा बिजनेस भी बन सकता है। आज बहुत से लोग घर बैठे होममेड गिफ्ट्स, डेकोरेशन आइटम्स और आर्ट वर्क बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं।
1: और सबसे जरूरी बात, ये हमें वेस्ट से बेस्ट बनाना सिखाती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कुछ नया बनाने का जुनून है तो आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि हर छोटा हुनर एक बड़ी पहचान बना सकता है।
0: हमारे आज के सब सेगमेंट कौशल विकास में बस इतना ही।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे आज के अगले सेगमेंट वेलनेस दी वेलनेस जर्नी का। आइए जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भावना की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है, क्रोध यानी गुस्सा।
1: बिल्कुल, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पल का क्रोध कई रिश्तों और खुशियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
0: सही कहा, कई बार छोटी छोटी बातों पर हम इतना नाराज हो जाते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए आज हम जानेंगे क्रोध प्रबंधन को।
1: दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि जब इंसान बहुत गुस्सा करता है तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर भी पड़ता है?
0: जी हाँ, ज़्यादा गुस्सा करने से तनाव बढ़ता है, सिर दर्द हो सकता है, नींद खराब होती है और कई बार रिश्तों में भी दूरी आ जाती है।
1: इसलिए सबसे पहला कदम है गुस्से को पहचानना। जब लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुक जाएं।
0: और उस समय गहरी सांस लेना बेहद मदद करता है। धीरे धीरे सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें, इससे मन शांत होने लगता है।
1: एक और जरूरी बात, जब हम गुस्से में हों तब कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्दों के घाव कई बार बहुत गहरे होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि शांत होकर अपनी बात को समझें।
0: अगर कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो थोड़ी देर अकेले टहल लें, पानी पी लें या अपना पसंदीदा संगीत सुन लें।
1: क्रोध को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच और धैर्य।
0: बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तव में मजबूत इंसान कहलाता है। तो दोस्तों, आज से कोशिश कीजिए कि गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
1: मुस्कुराइए, शांत रहिए और अपने रिश्तों को प्यार और समझदारी से मजबूत बनाइए।
0: तो दोस्तों, हमारे आज के सब सेगमेंट दी वेलनेस जर्नी में बस इतना ही।
1: दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर।
0: दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की।
1: दोस्तों, जब भी देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों की बात होती है तो IIT कानपुर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यह संस्थान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नवाचार, रिसर्च और तकनीकी विकास का भी बड़ा केंद्र है।
0: दोस्तों, IIT कानपुर की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। ये संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है और भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम IIT संस्थानों में से एक है।
1: दोस्तों, IIT कानपुर का विशाल और हरियाली से भरा परिसर विद्यार्थियों को एक प्रेरणादायक वातावरण देता है। यहाँ देश के हर कोने से छात्र पढ़ने आते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं।
0: केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की शिक्षा प्रणाली आधुनिक तकनीकों और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, डिजाइन और रिसर्च के क्षेत्र में ये संस्थान विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है।
1: IIT कानपुर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता, उन्हें नई खोज करने, प्रयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ से पढ़े कई छात्र आज बड़े वैज्ञानिक, उद्योगपति, प्रोफेसर और तकनीकी विशेषज्ञ बन चुके हैं। देश और दुनिया की कई प्रसिद्ध कंपनियों में IIT कानपुर के छात्र महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IIT कानपुर का टेकीकृत और अंतराग्नि जैसे उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। टेकीकृत तकनीकी उत्सव है जहां छात्र नई तकनीकों और आविष्कारों का प्रदर्शन करते हैं। वहीं अंतराग्नि सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें संगीत, नृत्य और कला की रंगीन झलक देखने को मिलती है।
0: इसके अलावा यहाँ की रिसर्च लैब्स और अत्याधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर भी देती हैं।
1: सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र और शोधकर्ताएं यहां अध्ययन और रिसर्च के लिए आते हैं। यह संस्थान शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास भी सिखाता है।
0: तो दोस्तों, अगर किसी छात्र का सपना तकनीकी क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने का है तो IIT कानपुर उसके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
1: दोस्तों, हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के सब सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान में बस इतना ही।

0: साथियों, अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब, साथ ही जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने दिए हैं सही जवाब हमारे आज के सवाल का। और हमारा आज का सवाल था, भारत में वाटर पॉजिटिविटी दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा था? और इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसी सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हम जानेंगे थोड़ी देर में।
1: साथियों, उससे पहले जान लेते हैं वाटर पॉजिटिविटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वाटर पॉजिटिविटी का मतलब है जितना पानी किसी संस्था, भवन या जगह द्वारा इस्तेमाल किया जाए उससे ज़्यादा पानी को बचाना, रिचार्ज करना या वापस प्रकृति में पहुँचाना। इसका एक उदाहरण है, अगर कोई एयरपोर्ट 1,000 लीटर पानी उपयोग करता है और वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण या रिसाइकलिंग के जरिए 1200 लीटर पानी प्रकृति को वापस देता है तो उसे वाटर पॉजिटिव कहा जाता है। और ये केवल एयरपोर्ट के लिए नहीं होता, कोई भी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ऑफिस, होटल, यूनिवर्सिटी या हाउसिंग सोसाइटी वाटर पॉजिटिव बनने की दशा में काम कर सकती हैं। इसके लिए आमतौर पर ये तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, पानी की बर्बादी को रोकना, जल संरक्षण अभियान, कम पानी उपयोग करने वाली तकनीकें। आज कई बड़े एयरपोर्ट और संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए वाटर पॉजिटिविटी पर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में पानी की कमी को कम किया जा सके। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने दिया है हमारे सवाल का सही जवाब।
0: मोहम्मद रफीक पवार, सुदर्शन शाह, नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, अजीत कसाना, नवी हसन अब्बासी, जॉन दे कास्टो, प्रवीण चौहान, चौधरी राजवीर सिंह, रजत पाल गजभैये,
1: बी एल धाकर, शाहजी बोध के, फागुराम यादव, बी कमाल, हीरामणि वर्मा, अभिजीत गवानकर, धीरज भाई राबड़ी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, मोहम्मद सईद अब्बासी, विजय सिंह महोबिया, एमडी यासीन अनजान, पुंजाजी नाफकर, अल्ताफ हुजारे, गुरमीत सिंह मीता, आकाश रस्तोगी, के आर चौहान खिंडसार, राधेश्याम पांडे, आमिर हुसैन, रामशरण रामशरण, लाल मोहम्मद अंसारी, विजय सुरलकर, मसरूर हसन, राजवीर सिंह यादव, जग्गर राम साहू, गजानन येले दरियापुर, सुनील पाठक, सदाशिव थौरात, सुरेश गगनेजा, संजय ढींगिया, सुरेश खुराना, सुरेश जायसवाल, विनोद मुनत, विजय सिंह, राजकुमार रेवार, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, गंगा सिंह रावत, राजू मिगलानी, आफताब अंसारी, रवि रस्तोगी, लालगिरी गोस्वामी, नितेश कुमार देवांगन, शकील अहमद इदरीसी और मुकेश कश्यप। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सवाल का सही जवाब देने के लिए। पर दोस्तों, आपसे जाने से पहले हम सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901।
0: आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
1: दोस्तों, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप

0: नंबर है 9410087876। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई आवाज़ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी भारती
1: और फातिमा को दीजिए इजाजत।
0: इजाज़त। नमस्कार।
1: नमस्कार।

भारती और फातिमा खान के साथ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर संध्या के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एफआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एफआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं, सुनिए जरूरी संदेश।

ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:10 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे पहला गीत सुल्तान। इस फिल्म से आवाज होगी मीका सिंह की और शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत विशाल शेखर का।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था प्रीतम का। इसी गीत के साथ अब चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं अब किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं हरदेव आर्या और पंकज बाबू सक्सेना।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनन वाले हमारे सभी भैया बहनों को आपके भैया पंकज
1: और आपके भैया हरदेव की राम
0: राम राम। और हरदेव भैया सुनाओ, क्या हाल चाल है भैया?
1: बस भैया बढ़िया हैं, और उम्मीद करता है हमारे सभी किसान भाई बहन जो हैं बढ़िया होंगे। और भैया खेती बाड़ी को काम चल रहा है, तो इस समय भैया क्या तैयारी है?
0: भैया देखो, इस समय तो हमारे जो तैयारी है ना, वो तो हमारे किसान साथियों की धान की तैयारी है भैया, है ना। तो अब नर्सरी की तैयारी है, तो हरदे भैया फिर जाके ले, हम क्या करना चाहिए हमें?
1: तो बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, हमारे किसान भाई जो हैं इस समय उनने खेत जोत रखे हैं।
0: हाँ भैया,
1: है ना।
0: हाँ,
1: और बहुत सारे किसान भाइयों ने खेत अपने एक सारा करा लिए हैं
0: जी भैया,
1: क्योंकि एक सार कराना जरूरी है
0: जी।
1: और खेत में नर्सरी डालन से पहले हमें कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ भैया जरूर।
1: यदि हम भैया अच्छी तरह से बीज तैयार करें, सबसे पहले तो बीज तैयारी की बात कर लें, बाकी बात सही समय
0: जी
1: है ना
0: जी।
1: अगर इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और
0: जी
1: पौधा जो है स्वस्थ रहेंगे आगे
0: जी भैया।
1: चलकर।
0: भैया देखो, कोई भी फसल सही, अगर हम सही समय को और सही बीज को प्रयोग करेंगे, तो वह फसल सब सही होगी भैया हमारी।
1: और बात करें हम रोगन की, तो रोगन को जो असर होता है वो कम होता है
0: जी भैया।
1: अगर हम सही बीज को चुनाव करते हैं और सही तरीका से उपचारित करते हैं, और चय काम जो है हम अच्छी तरीका से करें, वैज्ञानिक पद्धति से करें,
0: जी भैया
1: तो हमारी जो नर्सरी है
0: जी भैया,
1: बाकी बढ़वार अच्छी होगी।
0: हाँ भैया। और भैया देखो, जब पौध के लिए ना, जहाँ नर्सरी की बात कही, तो सबसे पहले हमें जहाँ भी हम अपने धान की नर्सरी डालें ना भैया, तो वहाँ की जो जमीन को जब चयन कराएं, तो जमीन समतल होनी चाहिए और उपजाऊ हो, और ऐसी जगह हो जहाँ पानी की सुविधा सही हो, है ना।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, जाके साथ साथ मिट्टी जो हो वो भुरभुरी हो, खरपतवार रहित हुए।
0: जी भैया,
1: हम देखते हैं कि खरपतवार घास वगैरह हो तंगे खेत में, तो बाको हमें निकाल देना चाहिए
0: जी,
1: है ना भैया।
0: हाँ
1: खेत की अच्छी तरह से हम जो है एक सार कर लें और मिट्टी जो तैयार कर लें, और साथ जाके साथ साथ मिट्टी की पहले जाँच करा लें,
0: जाँच करा ले भैया। हाँ, और भैया देखो, एक चीज़ आपने सही बताई कि कोई भी हम फसल करें तो बाको बीज चयन हमें कर लेना चाहिए, और जब हम अपने नर्सरी को जो बीज चयन करें ना भैया, तो वो बीज हमें प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीज होना चाहिए। और बीज से जब हम नर्सरी डाल रहे हैं, तो बीज को पहले उपचार कर देना चाहिए बागो, ताकि जो है हल्के और जो खराब बीज होते हैं वे अलग ही जाएं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, बीजों को हमें फफूंदनाशक दवा जो है या जैविक उपचार से उपचारित करना चाहिए ताकि आगे चल के रोग कम लगे
0: जी। और भैया देखो, जाके साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखें कि जो हम बीज अपने डाला ना, वो बीज की मात्रा भी भैया संतुलित होना चाहिए, क्योंकि देखो कहा जाता है कि कभी हम हमारे खेत तो है 2 बीघा 4 बीघा, तो हम मान लीजिए जो बीज डालें या नर्सरी डालें हम, तो वो ज्यादा ना डालें, है ना। और क्योंकि वहां समस्या क्या हो जाए, जब ज्यादा हम डाल देंगे ना भैया, तो बस जो आपस में पौधे हैं वे घने जाते हैं और उनको विकास रुक जाता है भैया।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, और भैया नर्सरी में समय समय पर खरपतवार जो है आगे चल के निकाल लो बहुत ज़रूरी है, और जाके साथ साथ पौधन की सुरक्षा के ताई रोग व कीट नियंत्रण ताई जो हल्की दवाएं हैं उनको हमें प्रयोग करनी है, और नर्सरी के चारों ओर भैया देखो कुछ ना कुछ रस्सी बांध दे, क्योंकि आवारा पशु हैं वे हमारी अगर नर्सरी में चले गए तो हमारी नर्सरी में जो है भैया नुकसान हो सकता है।
0: हाँ, और भैया एक चीज़ को और ध्यान रखें, नर्सरी में जो है ना, हमें हल्की सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादा पानी जब हम जाम दे देंगे तो पानी ज़्यादा भर जाएगा, और बासा होत का जो हमारे जो पौध होती है ना, वो पीली पड़ जाती है और सड़न की समस्या वहाँ हो सकती है। तो खेत में बस जो जरूर रखें, खेत में नमी भैया जरूर रहा है। और देखो हरदेव भैया, एक चीज और है, गर्मी बहुत पड़ रही है भैया,
1: गर्मी बहुत बेकट ही पड़ रही है, और गर्म हवा भी चल
0: गर्म हवा चल रही है, और जो हमारे लिए हमारे जो पशु पक्षी हैं और हमारे जो खेती बाड़ी है, उस सब पर वो प्रभाव डालती है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कर रहे भैया, यानी कि हीट वेव की बात कर रहे।
0: हाँ भैया, क्योंकि भैया जाम होत का है ना हमारे किसान साथ भैया, शरीर में हमारे पानी की कमी हो जाती है, और जब पानी कमी हो जाती है तो हम चक्का आली करते हैं, सिर दर्द होता है, थकान होती है, और हमारे लिए कमजोरी महसूस होती है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हो भैया, हीट वेव यानी कि जो गर्म हवा है, तपन है
0: जी भैया,
1: है ना, इतना तापमान जो है बस बचन के ताई हमारे किसान साथी और हमारे जो जो बड़े बूढ़े हैं
0: जी भैया,
1: कुछ भैया हमारे नौकरी कर रहे हैं, कुछ हमारे भैया पशुपालन कर रहे हैं घर से बाहर निकल के,
0: जी भैया,
1: तो इन लोगों को भैया देखो जाए नींबू पानी अपने साथ रखें, या भैया देखो ORS को तो नाम सुनोगे आप।
0: हाँ भैया, पी रहे हैं भैया।
1: बाकू सेवन आपको जो भैया करना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, तरल पदार्थन को सेवन करना चाहिए, चटपटी चीजें से
0: दूर रहें। और भैया एक चीज और है कि जो हमारे किसान साथी है ना, वे अपने जो खेती बाड़ी को काम है बाको 11 बजे से 10 बजे से पहले पहले तक कर लें।
1: हाँ,
0: क्योंकि और 12 बजे से या 11 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, और हल्के रंग के वे ढीले जो सूती कपड़ा है वे जरूर पहना भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखो, जब जो भी हमारे किसान साथी हैं, अगर उन्हें कोई जैसे कमजोरी या चक्कर या तेज बुखार, उल्टी या बेहोशी के जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना भैया, तो अगर खेत पर हैं तो पहले तो जाए ना खेत पर, है ना, और जब हैं तो भैया छायादार वृक्ष के नीचे जरूर बैठ जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, और फिर अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर भी अपने इलाज करा ले भैया।
1: बिल्कुल भैया, सही बात।
0: क्योंकि भैया जब हम सही रहेंगे हर दे भैया, तो हमारी जो खेती बाड़ी भैया वो भी ठीक रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात कही पंकज भैया, और उम्मीद करता हमारे सभी किसान भाई जो है धान की नर्सरी अच्छी तरीके से डालेंगे, और जो लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, हीट वेव जो है, तो बस है हमारे पंकज भैया ने बताई बचन के तरीका।
0: और देखो भैया, हम सब लोग जानते हैं भैया, जो महीना को जो चौथे बुधवार है, और साथियों आप सबको पता हो महीना के चौथे बुधवार को हम अपने एक कार्यक्रम हमारो सफल कृषि स्टार्टअप, क्योंकि भैया जब कृषि स्टार्टअप को उद्देश्य है खेती को आधुनिक, लाभकारी और आसान बनाना होता है, तो जाके अंतर्गत तो आज हमारे हरदेव भैया एक गांव में गए, और वह गांव को नाम है सिंदौली, और वहां हमारे एक भैया से बातचीत करी, कृष्णपाल भैया, जो डेयरी फार्मिंग को व्यवसाय करते हैं, तो हमारे हरदेव भैया ने उनसे काकाची बातचीत करी, वो किसान साथी हम आपको सुनवाते हैं।
1: राम राम किसान साथियों, आज हम आए हैं ग्राम सिंदौली, और हमारे एक भैया हैं जिन्होंने जो डेयरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये व्यवसाय हमारी जो खेतीबाड़ी है, कृषि है, उससे जुड़ा हुआ है, और काफ़ी अच्छा व्यवसाय है और आमदनी भी अच्छी है, और इसी विषय पे आज हम बात करेंगे हमारे जो भैया हैं। जी, आपका परिचय?
2: मेरा नाम कृष्णपाल है, और मैं सिंदौली का रहने वाला हूँ।
1: सिंदौली के रहने वाले हो, मीरगंज तहसील है ना?
2: जी, मीरगंज तहसील है।
1: जिला
2: बरेली।
1: तो भैया ये बताओ कि जो डेयरी पालन आप चला रहे हैं
2: जी,
1: तो लगभग कितने समय से चला रहे हैं?
2: मुझे कम से कम 3-4 साल हो गए।
1: 3-4 साल हो गए। तो अभी आपके पास कितने जानवर हैं?
2: अभी मेरे पास 6 जानवर हैं।
1: 6 जानवर हैं
2: जी।
1: तो ये जो जानवर बंधे हुए हैं आपके ही हैं?
2: जी, ये मेरे ही हैं।
1: जो यहाँ जो इस समय चल रहा है इसका, जो अपनी जानवर बंदी हुई, जरा देख लें भैया कैसी व्यवस्था बने पर बना रखी है। अच्छा,

0: ये हैं आपके जानवर, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। आपने नीचे जानवरों के जो नीचे है ये क्या डाल रखा है आपने? फोम,
1: इसमें मैट डाल रखी है
0: मैट डाल रखी है।
1: जी
0: अच्छा, बहुत अच्छी। ऊपर पंखा लगा रखा है
1: जी
0: आपने।
1: ऊपर पंखा भी है।
0: अच्छा, चलिए आप बैठ के बात करते हैं। तो कृष्णपाल भैया जी, एक बात बताइए, आप जो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं,
1: जी
0: तो डेयरी पालन की ओर वो बढ़ना चाहते हैं,
1: जी
0: तो बहुत सारी सावधानियाँ रखनी है उनको,
1: जी
0: है नहीं है? तो ये आपको व्यवसाय अच्छा क्यों लगा?
1: ये व्यवसाय हमारे लिए इसलिए अच्छा लगा कि इसमें रोज़ आमदनी होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, और खेती में हमारे लिए खाद भी मिल जाता है, इसका गोबर वोबर
0: हाँ
1: है जो
0: ठीक
1: भी
0: है।
1: है सब कुछ है
0: हाँ
1: मिल जाता है हमारे लिए। और
0: अच्छा,
1: हम छोटे किसान हैं
0: हाँ
1: तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। हमने
0: अच्छा,
1: सोचा कि डेयरी पालन ही खोल लेते हैं खेती के साथ साथ, इससे
0: अच्छा
1: हमारा व्यवसाय भी चलता रहेगा, रोज़ आमदनी भी होती रहेगी।
0: हाँ सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर कृष्णपाल भैया, अगर कोई नया आदमी डेयरी शुरू करना चाहता है तो उसकी शुरुआत उसे किस तरह करनी चाहिए?
1: उसकी शुरुआत तो ऐसा भी है, देखो छोटे स्तर से ही चलना चाहिए आदमी के लिए सबसे पहले।
0: हाँ
1: और इसमें अच्छी नस्ल की भैंस गाय हैं ये होना चाहिए उसके पास में, जिससे कि ज़्यादा दूध दें और आमदनी भी दोगुनी हो।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, जो अच्छी नस्ल है उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका भैया क्या है?
1: जो अच्छी नस्ल है उसे पहचानने के लिए हमें जैसे मुर्रा भैंस है और जो सिंधवाल गाय गाय हैं ये हमें,
0: अच्छा, शरीर भी उनका देखा जाए तो स्वस्थ होना
1: हाँ
0: चाहिए और
1: हाँ
0: जो है चमकदार होनी चाहिए, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी
0: अच्छा, दूध देने वाली जो बात करें तो मुर्रा भैंस अच्छी मानी जाती है।
1: जी
0: अच्छा, जो HF नस्ल की जो लोग रखते हैं वो कैसी होती हैं?
1: अरे वो तो उसके पिछले रिकॉर्ड की जानकारी लें तो वो
0: हाँ
1: तो बहुत ही बढ़िया होती हैं।
0: अच्छा, यानी दूध के
1: हाँ
0: रिकॉर्ड की
1: दूध,
0: जानकारी जो है
1: हाँ
0: लेना
1: हाँ
0: सही रहता है।
1: हाँ
0: अच्छा, हम देखते हैं कृष्णपाल भैया जी, गांव में कई लोग कहते हैं कि पशु खरीदते समय धोखा हो जाता है, इससे हमें कैसे बचना चाहिए?
1: हाँ ये बात बिल्कुल सही कही है आपने भैया। हमें क्या कहते हैं पशु खरीदते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, क्या कहते हैं उसे डॉक्टर को साथ ले जाएं
0: हाँ
1: और पशु का दूध निकाल कर खुद देखें। कई
0: अच्छा,
1: बार लोग तो दवाई देकर भी थोड़े समय के लिए ज़्यादा दूध दिखा देते हैं,
0: हाँ यही बात आपकी सही है।
1: चाल उसकी चाल है, खाना खाने की आदत कैसी है,
0: हाँ
1: इसीलिए हमें डॉक्टरों से भी संपर्क करना ज़रूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात कही। अगर आपको अच्छी गाय या भैंस लेनी है तो डॉक्टर को साथ ले जाएं और
1: हाँ
0: डॉक्टर उसकी अच्छी तरह जांच करेगा, फिर आपको सलाह देगा कि हमको ये
1: जी
0: पशु लेना है या नहीं
1: नहीं
0: लेना
1: लेना
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल सही बात कही। अच्छा एक बार बताओ कृष्णपाल भैया, डेयरी में सबसे जो बड़ा खर्च है किस चीज़ का आता है?
1: इसमें सबसे बड़ा खर्च तो अब आपको क्या बताएं, चारा है,
0: हाँ
1: जैसे कुछ खर्च कम भी होते हैं उसमें, बरसीम है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, घास है। चारे के लिए तो सूखा चारा भी है, दाना है, इससे पशु,
0: हाँ ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस समय हमारे जो गेहूं उठे थे तो भूसा जो निकला था, जिन किसान भाइयों ने अभी अभी ये व्यवसाय शुरू किया है डेयरी वाला, तो उन्होंने एडवांस में जो है भूसा अच्छी मात्रा में खरीद रखा है,
1: हाँ
0: क्योंकि आगे चल के वही भूसा दुगने तिगने दाम में हो जाता है तो हमारी जो है लागत बढ़ जाती है और आमदनी कम होती है। तो इसलिए पहले ही जो आपने सही
1: हाँ
0: बताया, सबसे ज़्यादा खर्च जो है चारे
1: कम
0: का आता है,
1: इसमें हमें कम खर्च करना है ना
0: कम
1: तो हम
0: खन
1: पे।
0: खर्च करना है तो पहले ही हमें चारा खरीद लेना
1: हाँ
0: चाहिए। बहुत अच्छी
1: जी
0: बात कही। अच्छा, क्या सिर्फ हरा चारा देने से ही काम चल जाता है भैया?
1: नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सूखा चारा है, हरा है, भूसा है, खली है, चोकर है,
0: अच्छा, संतुलित आहार
1: हाँ संतुलित आहार जैसे
0: इन
1: मिक्सचर
0: सबका
1: वगैरह
0: मिक्सर।
1: है
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: दूध अच्छा देगा पशु, खाएगा
0: हाँ
1: तो ये होता है, अब बीमार भी कम पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हम सब जो है हमारे किसान भाई सिर्फ हरे चारे के अलावा जो है
1: हाँ
0: संतुलित आहार, जिसमें आपका मिलन मिक्सचर है
1: हाँ
0: और खली वगैरह है, ये अगर सही करके देंगे तो हमारा पशु दूध भी अच्छा देगा
1: अच्छा
0: और
1: देगा।
0: बीमार भी कम पड़ेगा
1: हाँ
0: और डॉक्टर लोग भी हमारी यही राय
1: हाँ
0: देते हैं। और
1: हाँ
0: जो अच्छी डेयरी पालक हैं हमारे भाई,
1: जी
0: तो वो भी यही काम करते हैं जहाँ तक
1: जी
0: है। और अच्छा भैया, मिलन मिक्सचर का नाम तो हम बहुत सुनते हैं, क्या ये देना बहुत ज़रूरी है क्या?
1: हाँ भैया इस ये तो देना ज़रूरी है क्योंकि पशुओं के शरीर में तत्वों की कमी पूरी करता है ये।
0: अच्छा
1: हाँ इसमें दूध और बढ़ता भी है, इससे कमजोरी भी नहीं आती है, बच्चा देने भी परेशानी नहीं आती है उसे।
0: अच्छा।
1: और इससे हम लोगों को खर्च समझते हैं, जैसे किसान सोचता है कि यार ये तो बहुत महंगा होगा, मगर इसमें फायदा बहुत होते हैं।
0: अच्छा, हाँ। ये बात है। अच्छा भैया, गर्मियों में हम देखते हैं कि गर्मी इस समय पड़ रही है तो पशु को दिक्कत ज़्यादा होती है, तो उनसे बचाव कैसे करें?
1: पशुओं को गर्मियों में बचाने के लिए हमें जैसे लू लग जाती है हमारे पशुओं को, हाँ। और सी बीमारियाँ छाप की स्थिति में बांधे उसके लिए, हाँ। पंखा होना जरूरी
0: जैसे
1: है।
0: जैसे आपने पंखा लगा रखा है अपने जो अभी जो आपका पशुशाला आपने बना रखी है और नीचे आपने मैट भी बिछा, हाँ। रखी है, हाँ। ताकि पशु की जो खुर है वो यानी कि पैर जो है सही सलामत रहे।
1: और गर्मी में दो तीन बार नहला देना भी चाहिए,
0: यानी कि मोटर चला के सीधे पानी मार देते हो और जो है वो सब बह के नाले के माध्यम से सब पानी चला जाता है, गोबर जो है आपने अलग साइड में इकट्ठा कर रखा,
1: हाँ।
0: है,
1: इससे ये गंदगी नहीं फैलती, पशु के नीचे बीमार नहीं पड़ता है पशु।
0: अच्छा अच्छा, बहुत, हाँ। अच्छी बात कही, सही बात है, अगर, हाँ। हम साफ सफाई रखेंगे, हमारे किसान भाई बहन अपनी पशुशाला में साफ सफाई रखेंगे तो जो है कि रोग भी कम फैलेंगे
1: जी,
0: है नहीं है, और दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा और दूध जो है स्वच्छ रहेगा
1: जी।
0: अच्छा वही एक बार बताओ, अभी तो बात रही गर्मी की, अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: सर्दियों में ठंडी की हवा ज़्यादा चलती है,
0: हाँ।
1: तो इसमें हमें रात में बोरी या कंबल या पर्दे वगैरह उसे बांध देना चाहिए, और गीला फर्श, हाँ, और गीला फर्श होना नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
1: हाँ। और ठंड में तो पशु कम खाना खाता है,
0: अच्छा अच्छा,
1: इसीलिए उसे गुनगुना पानी भी दे सकते हैं।
0: अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात कही हमारे किसान भाइयों, अगर जब भी सर्दी के मौसम में इन बातों का आपको ध्यान रखना है जैसा कि कृष्णपाल भैया बता रहे हैं। अच्छा कृष्णपाल भैया, एक बात और बताओ, पशुओं में कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है?
1: इसमें भैया देखो, जैसे मुंह पका है, खुर पका है, गलघोंटू है, बुखार जैसी बीमारी उन्हें बनती रहती हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हम डॉक्टर से सलाह लेके टीकाकरण करवा देते हैं, और अच्छा। साफ सफाई बहुत रखना पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही, अगर हम साफ सफाई अच्छी तरह का रखेंगे और बढ़िया तरीके से रखेंगे तो हमारी बीमारी तो वैसे ही आधी खत्म ही जाएंगी पशुओं की। हाँ सही बात है, किसान भाइयों जो है आप कृष्णपाल भैया जो बात बता रहे हैं जाको पालन जरूर करें। अच्छा कृष्णपाल भैया, क्या गांव के लोग टीकाकरण को जो है गंभीरता से लेते हैं?
1: अब पहले जैसी तो बात नहीं है, अब आपको बताया जाए जैसे कुछ भी लापरवाही करते हैं जैसे किसान भाई, तो उससे बीमारी फैलती जरूर है।
0: अच्छा।
1: नुकसान तो बहुत होता है, मगर पशु बीमार भी पड़ जाते हैं, दूध देना बंद हो जाता है उसका, इलाज का खर्च बहुत तरीके से आता है और ज्यादा रुपए लगता है इलाज में।
0: ये बात सही है, अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं, खैर, पशुओं के बीमारी के प्रति, क्योंकि ऐसे मौसम में जो है देखा जाए तो हम खुद जागरूक हैं, ज्यादा धूप में बाहर ना निकल रहे हैं, है ना, निकलना है तो भैया अंगोछा सर पर डाल कर निकलना, हाँ। है, इसी तरह हमें अपने पशुओं को ध्यान रखनी है ताकि उनको कोई बीमारी उमारी ना लगे। अच्छा बात करें भैया, डेयरी में साफ सफाई कितनी ज़रूरी है?
1: डेयरी में तो साफ सफाई देखो भैया रोज होना ज़रूरी है, क्योंकि गोबर है, गंदगी पानी जमा होता रहता है वहाँ पर, तो मक्खी मच्छर बीमारी फैलती है इससे, तो जिससे दूध निकालते समय तो हम बर्तन साफ करते जरूर हैं, उसे ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमने करा ये साफ, इससे कि कोई बीमारी ना फैले।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने कि पशुशाला में जो है साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है,
1: हाँ।
0: और जब हम दूध निकालते हैं सुबह शाम तो जो बर्तन है हमारो और, हाँ। जो पशु है हमारो साफ होना चाहिए,
1: हाँ।
0: क्योंकि पशु जो है अगर जो मच्छर और मक्खी काटेंगे पशुओं को,
1: हाँ।
0: तो वे पूछ मारेंगे,
1: हाँ।
0: और पूछ गंदी है तो दूध की बाल्टी में लग सकती है और दूध गिर सकता है, गंदू हो सकता है, तो साफ सफाई पशुओं, हाँ, की बहुत जरूरी है और फर्श की भी बहुत जरूरी, हाँ, है जहाँ हम अपने पशुओं, हाँ, को बांध रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही। अच्छा एक बार बताओ कृष्णपाल भैया, दूध निकालन को सही तरीका क्या होता है?
1: भैया अब एक बात बताएं तो मैं, जैसे दूध निकालते समय तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे थन है उसके गोबर में सन जाते हैं, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, कपड़े से पीछे दूध हमेशा तय निकाल के ही करना चाहिए हमें, जैसे बदले से दूध कम हो सकता है, दूध निकालते समय पशु डराना या वो वैसे मारता है उसे, जैसे
0: जैसे डराते हैं हम, हाँ, पशुओं को दूध निकालते, हाँ, समय डराते हैं हम, मारते हैं तो वो नकल,
1: उसे मानना ना चाहिए पशु के लिए, जिससे पशु डर के लात
0: मारना मार दे, हाँ सही बात है,
1: दूध गिरा देता है फिर वो,
0: हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो कृष्णपाल भैया कि पशु दूसरे दूध निकालते समय हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पशु को ना तो डंडा से मारे हैं ना वाय डरा रहे हैं, अगर डंडा से मारोगे डरावोगे तो लात जरूर मारे या पूछो जरूर मारे,
1: नुकसान हो
0: जाता है, हमें जो है नुकसान हो सकते हैं या दूध गिर सकता है हमारो जो है। अच्छा एक बार बताओ किशमर भैया, कई लोग कहते हैं कि पशु प्यार समझते हैं, तो का बात जो सही है?
1: हाँ जब

0: सही है, बिल्कुल भैया।
1: अच्छा
0: पशु अपनों जैसे समझते हैं,
1: अच्छा
0: बिल्कुल अपनोपन जैसे। जैसे अब उसके लिए चारा दे रहे हो, पानी दे रहे हो, प्यार से रख रहे हो उसके लिए, तो वह बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है और दूध भी अच्छो देते भैया।
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मार
1: सही,
0: पीट करने से तो पशु को तनाव होता है, तो वो
1: अच्छा
0: डरने लगता है।
1: हाँ सही बात कह रहे हो बिल्कुल कृष्णपाल
0: हाँ
1: भैया। अच्छा एक बार बताओ कृष्णपाल भैया, आजकल लोग मशीन से दूध निकालने लग रहे हैं तो जो का अच्छी बात है।
0: हाँ बड़ी बड़ी डेयरी में तो मशीन से भैया देखो दूध निकालते हैं, इससे तो अब समय की बचत होती है, सफाई भी बनाई रहती है उसमें। छोटे किसान तो भैया हाथ से ही निकालते हैं, इससे
1: हाँ
0: आराम से काम चल सके। हाँ
1: सही बात है, वहाँ में मशीन्स में खर्चा ज़्यादा आता है,
0: हाँ
1: लेकिन जिसके
0: खर्चा ज़्यादा
1: पास
0: आता है।
1: भैसन की जिससे पशुधन की संख्या कम है तो वे हाथ से ही निकालना उनको उचित
0: हाँ
1: है ताकि खर्च कम आवे
0: कम
1: और
0: आवे,
1: मुनाफा ज़्यादा
0: हाँ
1: आवे।
0: मुनाफा ज़्यादा
1: सही
0: आवे।
1: बात है। अच्छा एक बार बताओ भैया, डेयरी में मुनाफा कितना हो सकता है?
0: भैया इसमें तो बात बताई जाए, देखो दूध में तो ज़्यादा ना है, किसान भैया देखते हैं कि खुद चारा उगाते हैं, अच्छा मुनाफा हो सकता है इसमें तो।
1: अच्छा जितनी पशु संख्या है वही
0: हाँ
1: हिसाब से हमें जो है हमारो चारे को और जो है दूध उत्पादन को जो खर्च ही रहो है
0: हाँ
1: वही हिसाब से जो है आकलन है कर पाएंगे हम लोग।
0: हाँ जिससे कि हमारे घर को खर्च भी चल जाए और घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे उनकी पढ़ाई को भी खर्च चल जाए,
1: हाँ
0: आराम
1: बिल्कुल।
0: से चल जाते हैं भैया।
1: अच्छा, एक बार बताओ क्या भैया सिर्फ दूध बेचकर ही कमाई होता है का?
0: ना तो भैया ऐसी ये तो बात तो गलत है।
1: हाँ
0: देखो पशु गोबर भी करता है तो उसमें
1: हाँ
0: कमाई होती है, उपले बनते हैं उसकी,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: खाद भी बिकती है।
1: हाँ
0: आजकल तो देख रहे हो भैया गैस प्लांट लग गए हैं।
1: गोबर गैस प्लांट।
0: हाँ जैसे
1: हाँ
0: गौमूत्र को वो कर रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, कम कुछ बना रहे हैं, तो भैया जहाँ में तो कमाई बहुत
1: कमाई
0: है।
1: कमाई यानी कि दूध के
0: हाँ
1: अलावा ही और जगह
0: हाँ
1: से कमाई
0: बहुत
1: होता
0: कमाई है।
1: है कि? अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा भैया एक बार बताओ, गांव में दूध बेचने को सबसे अच्छा तरीका कहाँ है?
0: भैया अगर देखे जाए तो डेयरी में तो जो अपने वहाँ लेना देना है आसान से रहता है। कुछ लोग तो दूध घर घर जाकर पहुँचाते हैं, तो बामे गुणवत्ता उनके लिए अच्छी ना मिल पाती है, पानी डालते हैं तो ग्राहक खुश ना होते हैं उनसे
1: हाँ
0: है,
1: जो बात सही है।
0: तो जब
1: हाँ
0: सोचते हैं चलो गांव में डेयरी है,
1: घर जाके ले
0: हाँ
1: लिए,
0: तो
1: प्योर
0: घर जाके ले ले रहा, प्योर दूध मिला है।
1: दूध मिला है।
0: हाँ
1: हाँ जो बात सही कह
0: ये
1: रहे हो
0: बात
1: भैया,
0: है।
1: ना ना जो बात सही है आपकी। अच्छा एक बताओ किस्मत भैया, पशु के बच्चे की देखभाल हमें किस तरह करना चाहिए?
0: देखो भैया अब देखे जाए तो पशु जब बच्चे को जन्म देता है तो पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए बच्चे के
1: यानी
0: लिए।
1: कि माँ का दूध।
0: हाँ, जैसे बोलते हैं खीस।
1: अच्छा
0: हाँ जे बीमारी से लड़ने की क्षमता रखते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: बच्चे को साफ सफाई है, सूखी जगह पर बांधें, उसकी
1: अच्छा अच्छा
0: देखभाल अच्छी तरीका से करें भैया, तभी हमारा उद्धार हो सकता है
1: हाँ
0: इसमें।
1: बिल्कुल सही बात कही किस्मत भैया आपने। अच्छा एक बार बताओ भैया, का डेयरी जो पालन है वहाँ में महिलाओं की भूमिका का अब महत्वपूर्ण है का भैया?
0: हाँ भैया है इसमें महत्वपूर्ण तो है, जैसे देखभाल है, चारा उरा देनो है, दूध निकालना, साफ सफाई, गोबर उबर है वो हटानो है, सब कुछ है। जैसे कई जगह तो महिला हमने देखी है खुद डेयरी चला रही है भैया।
1: हाँ सही बात है, जब आप
0: हाँ
1: डेयरी चला रहे हो तो आप तो जब पहले देख का आए होगे आप, कहीं ना
0: हाँ
1: डेयरी
0: अरे
1: आपने
0: बहुत
1: देखी।
0: देखी है हमने। हाँ
1: अच्छा अच्छा अच्छा एक बार बताओ भैया, क्या सरकार की तरफ से कोई भी मदद मिलती है का?
0: हाँ भैया सरकारी तरफ से बहुत मदद मिल रही है, अब तो योजना इतनी चल रही है कि सब्सिडी तक मिल रही है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जैसे पशुपालन विभाग है वहाँ में प्रशिक्षण होते हैं,
1: अच्छा
0: तो हाँ
1: अच्छा
0: तो किसानों को जरूर जानकारी लेना चाहिए वहाँ से। हाँ
1: हाँ सही बात कह रहे हो भैया, जो हमारे किसान भाई बहन डेयरी पालन को व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो भैया बता रहे हैं कि बैंक से सब्सिडी मिल रही है और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रहा हो तो
0: हाँ
1: उनको वो लेना चाहिए। अच्छा एक से अच्छा ये भैया और बताओ, अगर कोई जो हमारा युवा है वो नौकरी छोड़ कर डेयरी करना चाह रहा हो तो बाको फैसला का सही हो सकता का?
0: हाँ क्यों नहीं सकते भैया, बिल्कुल सही बात कही है आपने। जैसे डेयरी में तो हमें समय देना पड़ा है भैया, ऐसे काम तो 2-3 दिन ध्यान देंगे तो फिर छूट जाए हमारो, मेहनत करने वाली कभी हार ना होती है, तो भविष्य में हमारे जैसे हमने काम करो तो उसको मुनाफा जरूर मिले, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेहनत करना जरूरी है ना आदमी
1: मेहनत
0: को।
1: करना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ
1: अच्छा एक बार बताओ भैया, डेयरी पालन में सबसे ज़रूरी बात का मानतंगे?
0: डेयरी पालन में भैया देखो हम बता रहे हैं आपको, खाना है, पानी है, सफाई है, उनकी देखभाल है, तो जैसे हम ये समझते हैं कि बिल्कुल साफ सफाई होगी तो पशु भी अच्छा रहे वो, इसलिए व्यवहार भी समझना पड़ता है उसको हमारे लिए।
1: हाँ सही बात कही आपने
0: तो ये कहता
1: बहुत
0: है कि
1: ही।
0: सफलता की कुंजी है
1: हाँ परे
0: देखभाल ही।
1: देखभाली। हाँ सही बात है, डेयरी जो है चलान वान जो जो

0: साहब हमें तो भैया मेहनत और देखभाल ही जो है सफलता की कुंजी है।
1: अच्छा भैया कृष्णपाल जी, अंत में जो है हमारे नए जो डेयरी पालक भाई हैं उन्हें आपका संदेश देना चाहेंगे।
2: हम भैया उनको ज़्यादा संदेश देना चाहेंगे, जैसे वो बिल्कुल जिम्मेदारी समझें अपनी।
1: हाँ।
2: जैसे शुरुआत में छोटी छोटी जो सीखें होती हैं।
1: हाँ।
2: और पशुओं की अच्छी देखभाल करें। हाँ। और मेहनत से ईमानदारी से अपनी डेयरी चलावें।
1: अच्छा।
2: जिसमें हमारा व्यवसाय भी बनो रहे, वो
1: व्यवसाय भी अपना। हाँ। बनो रहे वो हैं और। हाँ। अपने जो पशु हैं वो अच्छे रहेंगे।
2: हाँ, अच्छे
1: और मुनाफा अच्छो वह, क्योंकि कई तरह से जो है हम पैसा जो है आमदनी कर सकेंगे। और बहुत ही बढ़िया लगा कृष्णपाल भैया जी आज आपसे बात करके, आपने एक तो अच्छा संदेश दो हमारे किसान भाइयों और बहनों के ताई, और आप एक सफल जो है कृषि स्टार्टअप चला रही हैं और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहन जी का नाम है आपको?
4: हमारा नाम मीना है।
5: किसान साथियों आप सुने कुछ संदेश।
6: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: साथियों अब हम आपको सुनवाते हैं लोकगीत मेरे सवरे घर में रार, जिसको अपनी मधुर आवाज दी है प्रेमलता जी ने।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना प्यारा सा लोकगीत और इसको स्वर दिए थे प्रेमलता जी ने। और अब साथियों, हम आपको सुनवा रहे हैं क्षेत्र संगीत कार्यक्रम। हमारे पंकज भैया गए ग्राम मंडनपुर और वहाँ जो आशा वर्कर हैं उनसे की बातचीत। तो साथियों सुने जो बातचीत।
1: बहन जी, क्या नाम है आपको?
2: हमारा नाम मीना है।
1: तो आप जयगांव के निवासी हो?
2: हाँ, हम जयगांव के निवासी हैं।
1: आपकी मैं उम्र की बात करूं तो आपके अलावा कितनी उम्र हुई?
2: होएगी 42 साल।
1: 42 साल। आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो?
2: हमने इंटर कर रखा है।
1: आपने आगे पढ़ाई क्यों ना करी?
2: आगे पढ़ाई करी नहीं, बीए करने का सोचा था, लेकिन उससे पहले फिर शादी हो गई, इस वजह से हम बीए ना कर पाए।
1: तो आपने प्राइवेट फॉर्म ना भरो?
2: प्राइवेट फॉर्म का दिमाग में नहीं आई उस समय पे, फिर घर वालों ने मना किया कि अब शादी हो गई है तो क्या करोगी।
1: अरे बहन जी, ये बातें पुराने जमाने की ही, अब तो हमारी बहनों को तो बहुत तो हर फील्ड में आगे रहने चाहिए। और हमारी बहनें देखो कि तो रोशन नाम कर रही हैं अपनों और अपने परिवार को और समाज में अपना नाम पैदा कर रही हैं। आप क्या क्या करती हूँ?
2: मैं इस गांव में आशा का काम करती हूँ।
1: आशा हो इस गांव की? अच्छा बहन जी, आशा को क्या काम होता है?
2: आशा का काम होता है कि बच्चे को टीकाकरण कराना, गर्भवती महिला की देखभाल करना, कोई बीमारी अगर फैल रही है उसकी देखरेख करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और इतना भी अगर हो सके स्वास्थ्य सेवाओं को हम गांव तक लेके आते हैं और यहाँ से जितने भी कोशिश करते हैं कि सबका अच्छा से अच्छा इलाज मिले।
1: अच्छा साथियों, हम सब जानते हैं देखो कि हमारे जो गांव की आशा होती हैं वो हमारे गांव और स्वास्थ्य विभाग के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारने और लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बहन जी, आप कब से आशा में लगी हुई हो?
2: 10 साल हो गए हमें।
1: 10 साल आपको आशा लगी होगी। तो उस समय जब हमारे सरकार ने आशाओं को नियुक्ति ना करी, ज्यादातर हमारी जो बहनों के जो बालक है वे घर पे ही जाते, तो बा समय से और अब के समय में आपने क्या अंतर देखा?
2: बा के समय में अब के समय में बहुत अंतर है। पहले कोई टीका ना लगवाना चाहते कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, ये होगा और दिक्कतें हो जाएंगी, तो अब सब टीकाकरण कराते हैं जिससे कि और बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चे बच जाते हैं। पहले बच्चे घर पे ही हो जाते थे तो महिला के मरने का और ज्यादा था दर, अब तो पहले से बहुत कम है, जिससे कि हमारे माँ भी स्वस्थ है, हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं।
1: तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर हमारी जो बहनें हैं और वे जब गर्भवती होती हैं तो उन बात समय से लेकर और जब बच्चा हो जाता है तो आप क्या क्या देख रेख करती हैं उनकी?
2: सबसे पहले जैसे ही हमें पता चलता है कि उनमें बच्चा है तो हम उन्हें फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, 3 महीने तक खिलाई जाती है, जिससे कि बच्चा जो है वो दिमागी तौर पे और जन्मजात रीति से बचा रहे। उसके अलावा हम उसका पंजीकरण करते हैं साथ साथ, और जैसी हमारी एनएम बहन जी आती हैं जल्दी से जल्दी उन्हें टीका लगवाते हैं, टीटी का, जिससे कि आने वाले बच्चे में कोई दिक्कतें ना आए।
1: तो आप कह रहे हैं पंजीकरण कराते हैं, तो पंजीकरण बहन जी जो लगभग कितने समय तक हो जाना चाहिए?
2: 3 महीने तक हो जाना चाहिए पंजीकरण, और उनकी बात जांच कराई जाती है जिससे कि और आगे वाले बच्चे में दिक्कत ना हो।
1: अच्छा, फिर आप वो गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती हो तो उनमें आपका सावधानी रखती हो?
2: उनमें सावधानी रखते हैं कि उनके अंदर कोई खून की कमी तो नहीं हो रही है, वो और दिक्कतें तो नहीं बता रही है, उनके पैरों में सूजन तो नहीं आ रही है, या कोई खून छूटने की कोई दिक्कत तो नहीं बता रही है, सर में दर्द है बहुत ज्यादा, धुंधला दिख रहा है, बीपी बढ़ रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। हम बार बार जांचें कराते हैं उनकी, जिससे कि आगे बच्चे को दिक्कत ना हो और माँ भी स्वस्थ रहे, क्योंकि ये जब बीमारियां बढ़ती हैं तो उससे हमारे आने वाले बच्चे में भी दिक्कत आती है और फिर प्रसव के समय पे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए हम उस चीज की देखरेख करते हैं। 4 जांचें कराते हैं, उसमें खून की जांच है, बीपी की जांच है, वजन की है, उसमें सारी जांचें होती हैं।
1: तो बहन जी, आप जांच करवाते हैं कहाँ ले जाती हूँ?
2: हमें उन्हें CSC ले जाते हैं मीरगंज।
1: आप कैसे ले जाती हूँ?
2: एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो आराम से ले जाती है और जांचें करा के वो हमें घर भी छोड़ आती है। एम्बुलेंस निशुल्क है, अगर कोई भी उस पर पैसा ना लगता है, आराम से जाओ अपनी जांचें वगैरह कराओ, डॉक्टर को दिखाओ और फिर आ जाओ।
1: जब हमारी बहनें बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं तो उन्हें आप CSC ले जाती हैं?
2: हाँ, हम उन्हें CSC ले जाते हैं और वहाँ जो दीदी होती हैं वो उनका प्रसव करती हैं।

0: है, और जो दे रहा है कंगारू मदर केयर उसके ऊपर भी कपड़े नहीं होने चाहिए। वो दोनों जैसे को सटा के रखोगे जितना, उतनी जल्दी जल्दी बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चा बीमारियों से भी बचता है। ये अगर माँ अगर दे रही है तो उससे माँ का दूध भी बढ़ेगा, बच्चे को भी दिक्कतें कम आएंगी और चीजें भी कम हो जाती है।
1: बहन जी, हम आपसे और पूछेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारी बहुत सारी बहनें आपको सुन रही हैं, तो हम जो हमारी बहनें गर्भधारण करती हैं तो उस समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हमारी बहनों को और उनके होने वाले संतान को कोई परेशानी ना हो।
0: जैसे ही गर्भधारण का पता चले सबसे पहले अपनी आशा बहन जी को बताएं, जिससे कि वो जो गोली देती हैं फॉलिक एसिड की, जिससे बच्चे आगे जन्मजात बीमारियों से बचते हैं। जैसे कि बच्चे का होता है कि सर में पानी भरा हुआ है, पीठ में फोड़ा है और चीजें, वो बीमारियां उन गोलियों को खाने से नहीं होती है। तुरंत के तुरंत टीका लगवाएं, उसके बाद में भारी सामान को नहीं उठाना है, गर्म चीजों को प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, आराम करना है, पोषक तत्वों का यूज करना है कि कोई ज्यादा गलत चीजों खाएं, कि आजकल जो चल रहे हैं कि मोमो है, बाहर की चीजें हैं, वो चीजों का प्रयोग कम करें, दूध पिए, अनाज खाएं, हैं हरी सब्जियां खाएं, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। और अगर जरा सी भी परेशानी लग रही है, कोई भी
1: जी
0: दिक्कत परेशानी लग रही है, तुरंत आशा बहन जी से संपर्क करें जिससे कि वो अस्पताल ले जाएं और अस्पताल ले जाके उनका उचित उपचार उन्हें मिल सके।
1: चलिए बहन जी, आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकृत कार्यक्रम के अंतर्गत एक आशा बहन जी से की गई बातचीत। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी।
3: और साथियों, अब हम आपको बता दें एक सूचना। साथियों, हर महीने के पहले बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे सफल कृषक से की गई बातचीत,
2: और दूसरे मतलब वो सफल महिला कृषक से की गई बातचीत,
3: और तीसरे बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे मासिक कृषि गोष्ठी,
2: और चौथे बुधवार को सुनवाएंगे सफल कृषि स्टार्टअप,
3: और
2: और अगर पांचवें बुधवार हृदय भी पड़ता ना तो फिर सफल कृषक से बातचीत।
3: ठीक है, और जो गुरुवार को दिन पड़ता है हर
2: जी
3: महीना के पहले गुरुवार को, हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष,
2: और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनवाएंगे,
3: और साथियों तीसरे गुरुवार को हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष,
2: और फिर चौथे गुरुवार को सुनवाएंगे खेत कृषि पत्रिका खेत खलियान।
3: और साथियों अगर महीना को पांचवा गुरुवार पड़ता है तो हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: ऐसे हर दिन ना साथियों, जो हमारो शुक्रवार पड़ता है, पहले शुक्रवार वहाँ को लोक मंजरी जो फार्मेसी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम है,
3: और साथियों दूसरे शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, बस जुड़ी समस्याएं और उनसे जुड़े समाधान।
2: तीसरे शुक्रवार को लोक मंजरी फार्मेसी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनवाएंगे,
3: और साथियों चौथे शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, बा से जुड़ी समस्याएं और उनसे जुड़े समाधान।
2: और भैया, अगर पांचवा शुक्रवार पड़ता है तो फिर वही लोक मंजरी जो आपके फार्मेसी लोकगीत पर आधारित है। तो
3: किसान
2: ये तो हमारे कार्यक्रम की जानकारी रही, और हरदेव भैया अब आप आज कृषि संकेत में हमारे साथियों का जानकारी दे रहे हो।
3: पंकज भैया, आज हम देखो कृषि जो अपने किसान भाई हैं उन्हें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि धान की सीधी उबाई के मुख्य लाभ।
2: जी भैया,
3: है ना भैया?
2: हाँ भैया,
3: तो किसान साथियों अगर हम धान की सीधी उबाई करते हैं, हमारी बहुत सारी जगह जो है धान की सीधी उबाई को प्रचलन शुरू हो चुका है
2: जी,
3: तो जहाँ कई तरह की बचत होती है, कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे हम करें पानी की बचत की बात।
2: हाँ, पानी की बचत होती है,
3: है ना भैया? पहले जो हम बुवाई करते हैं तो भैया वहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में लगता है, जबकि हम सीधी बुवाई करते हैं तो 20 से 30% पानी की जो है बचत हो जाती है हमको, और देखिए सबसे बड़ा फायदा जो है मानो
2: जो है। और भैया एक चीज़ और है, मजदूरी कम लगती है, क्योंकि रुपए के लिए ज़्यादा मजदूर होना चाहिए ना भैया, और लेकिन हम अगर सीधी बुवाई करेंगे तो बस मजदूर कम लगता है और इससे खेती की लागत जो हमारी वो घट जाती है।
3: और भैया हाँ बिल्कुल सही बात कही पंकज भैया आपने, अच्छा के साथ साथ समय की बचत।
2: जी भैया,
3: क्योंकि समय बड़ो कीमती है।
2: जी भैया,
3: है ना भैया?
2: जी भैया,
3: तो नर्सरी तैयार करने में जो है और रोपाई करने को जो झंझट होता है वो ना रहता है
2: जी।
3: हमारे किसान भाई जल्दी बुवाई कर सकतेंगे और अगली फसल जो है सही समय पर ले सकतेंगे।
2: हाँ भैया, और भैया देखो लगातार अगर हम बार बार जुताई और पंडलिंग और पानी भरने की जरूरत जहाँ कम पड़ती है, जिससे ट्रैक्टर और डीजल को जो जो खर्च होता है ना वो बचता है, और जब डीजल बचता है तो भैया हमारी बचत होती है।
3: बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया, अब डीजल तो खर्च ही रहो।
2: हाँ भैया,
3: हो ट्रैक्टर।
2: हाँ वो तो है भैया,
3: और जाके साथ साथ पंकज भैया और जो हमारी मिट्टी है बहुत सेहत बनी रहती है, क्योंकि लगातार पानी भरने से मिट्टी जो है सख्ती जाती है
2: जी भैया।
3: और सीधी बुवाई में जो है मिट्टी की

0: संरचना बेहतर बनी रहती है, और जो केचुए व सूक्ष्म जीव जो हैं वो अधिक मिट्टी में
1: तो
0: सक्रिय रहते हैं।
1: भैया इस प्रकार से हम अपने सीधी बुवाई से लाभ हमारे किसान साथी ले सकते हैं, और हम कल के कार्यक्रम के बाद दे दें, जो हमारा कल चर्चा विषय रहा है वो रहा है ईद उल अजहा पर जानकारी दी जाएगी। कृषि पत्रिका खेत खलिहान में आपको कृषि समाचार बताया जाएगा, बाजार भाव बताए जाएंगे, विशेषज्ञ की राय बताई जाएगी और भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, जाकू विषय होगा पशुओं में जीवाणु जनित बीमारी व बचाव, लोकगीत सुनवाई जाए, मौसम की जानकारी दी जाएगी। और जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे हमारे बहन वो करेंगे मीना और दीपक भैया। तो देखो भैया, हरदे भैया, अब समय ज्यादा ना है तो चलते चलते हम क्यों ना कल के मौसम की जानकारी अपने किसान साथियों को दे दें।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने पंकज भैया। तो साथियों, कल का उच्चतम तापमान है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और मौसम में आर्द्रता साथियों 33% रहने को अनुमान है। तो भैया, जय तो रही कल के मौसम की जानकारी।
1: और हरदे भैया, अब समय ज़्यादा दे रहो कि हम अपने किसान साथियों से बातचीत करें, तो
0: हाँ,
1: अपने किसान साथियों ले लेते हैं अनुमति।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। संध्या के 7:01 हुए हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: 2026 तक जिसने ये आकाशवाणी है कहकर देश को जगाया है, बिना का गीतमाला से दिल बहलाया है और हर आपदा में सबसे पहले खबर पहुंचाई। आज भी कहीं खेत में, कहीं बस में, कहीं बॉर्डर पर रेडियो बजता है तो लगता है देश साथ में है। ना तस्वीर, ना स्क्रीन का जाल, बस एक आवाज और कमाल। 90 वर्षों से जो सबके साथ चली वो अपनी आकाशवाणी है। जय हिंद, जय आकाशवाणी।
1: जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, MBBS MS वरिष्ठ फेको सर्जन एवं रेटिना स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जान है तो जहान में।
3: नमस्कार श्रोताओं।
1: डॉक्टर साहब, आज का विषय है आंखों में एलर्जी, एक समस्या और समाधान। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जिस तरीके से शरीर में एलर्जी होती है उसी तरीके से आंखों में एलर्जी होती है। आंख शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो जिस पे एलर्जी का प्रभाव काफी होता है। दूसरा है खाल। जैसे हमें पता है कि जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर हमारी खाल में होती हैं, उसी तरीके से आंख, क्योंकि वो बाहरी यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर की तरफ को एक अंग है, इसलिए आंख में भी एलर्जी होना बहुत कॉमन है।
1: डॉक्टर साहब, आंखों की एलर्जी के कौन कौन से कारण होते हैं वो भी बताइए।
3: आंख में एलर्जी के कई कारण हैं, सिर्फ ये कारण एक नहीं, अनेक कारण हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन कारण है वो ये है, एनवायरनमेंट में या जो हमारे मंडल में जो फूल हैं उनके जो तिनके होते हैं उनकी वजह से हमारी पॉलन्स जिनको हम कहते हैं या पराग जिनको हम कहते हैं उनसे हमारी आंखों में एलर्जी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉलन्स की वजह से ही हो, लेकिन कई सारे अन्य कारण जैसे कि घर में धूल है जो कि क्या कहते हैं फंगस की वजह से होती है, थोड़े दिनों के लिए घर में डस्टिंग ना करें तो कई जगह पे, कई कोनों पे जहाँ पे सीलन होती है वहाँ पे फंगस इकट्ठा होने लगता है, और यही इसी की जब हम सफाई करते हैं तो उस समय ये फंगस पूरे आपके घर में हवा में चला जाता है और उसकी वजह से हमारी आंखों में ये एलर्जी होने लगती है। इसी के साथ साथ एक बहुत और इम्पोर्टेंट कारण जो है हमारी आंखों में एलर्जी का है वो है पॉल्यूशन। एलर्जी का एक बहुत जो कारण है वो ये है कि घर में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के धुएं से भी हमारे क्या कहते हैं आंख में और बच्चों की खास तौर से आंख में एलर्जी काफी ज्यादा पाई गई है। धुएं के या धूल के क्या क्या कारण हैं? तो आंख की मेनली जो एलर्जी होती है वो इसी वजह से होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये घर में हम लोग जो पक्षी पालते हैं, कुछ लोग कबूतर पालते हैं या अन्य जानवर पालते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, तो क्या इनका भी असर होता है आंखों की एलर्जी में?
3: घर में कुछ तरीके के जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, इनके जो फर होते हैं या इनके जो बाल होते हैं इसकी वजह से भी हमारे खाल में और आंखों में एलर्जी पाई गई है। तो जिन लोगों के घर में पालतू जानवर हैं उनके भी क्या कहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी डॉग को या बिल्ली को छू रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथों को धो लें ताकि ये एलर्जी जो है उसका डायरेक्ट हमारी आंखों से ना हो।
1: पशु पक्षी पालें लेकिन सावधानी बरतें, उनको भी साफ रखें और अपने आप भी साफ रहें।
3: इसी तरीके से जैसे कि धुआं एक बहुत बड़ा कारण है हमारी आंख का क्या कहते हैं आंख में एलर्जी का, उसी तरीके से खुशबू जो कि अगरबत्ती से होती है, अगरबत्ती में धुआं भी होता है और खुशबू भी होती है, कुछ कुछ लोगों को जैसे गुड नाइट है या फिर परफ्यूम्स हैं जो इत्र होते हैं, उनसे भी, उन स्मेल से भी कई बारी क्या कहते हैं आँख में एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जो लेडीज़ में या फीमेल्स में ज़्यादा हैं, जैसे कि आँखों का मेकअप, आँखों का मेकअप या फिर जो हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं जो कि कहीं पे जाके किसी मंडली में जाके नृत्य करते हैं या मेकअप जो काफ़ी लगाते हैं, तो आई का मेकअप भी एक बहुत बड़ा कारण है एलर्जीज़ का। इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारी आँख आ गई हो या हमारी आँख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो उस दौरान आँख में खास तौर से, और वैसे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जब हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सूट नहीं कर रहे। कई सारे लोग होते हैं जो कि ये कहते हुए आते हैं कि आँख हमारी लाल हो जाती है नहाने के बाद, तो कई साबुन ऐसे होते हैं जो कि जब हम उसका साबुन का झाग हमारी आँख में चला जाता है नहाते नहाते ही, तो हमारी आँख लाल होने लगती है और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो हमारी आँख में एलर्जी बन जाती है। तो इसलिए ये कुछ कारण हैं जो कि हमारी आँख में एलर्जी करते हैं। फिर जब हम शहर के लोग जो हैं आजकल कॉन्टैक्ट लेंस काफ़ी इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी तरीके ये है क्या कहते हैं जो कि चश्मा ना लगाना चाहते हैं जो लोग, वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के लिए। तो जब हम वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी आँखों में एलर्जी होती है। तो ये कारण है जो कि हमारी आँखों को एलर्जी या आँखों में लाली करते हैं, तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी आँखों में एलर्जी होती है।
1: सब एक बार बता दीजिए कि जब पढ़ते समय अपनी रोशनी को, लैंप को किस तरफ रखें किधर से रोशनी आए।
3: बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और माता पिता के लिए बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को इस बात के लिए समझा सकते हैं और बचपन में ही ये आदत डल पाती है कि बिस्तर पे ना पढ़ के कायदे से कुर्सी चेयर पे पढ़ें। और कुर्सी चेयर की जगह घर में जैसे मंदिर की एक जगह होती है या पूजा करने का एक स्थल होता है जहाँ पे जाके एक दिशा में आप पूजा करते हैं, एक दिशा में आप पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से एक दिशा में पढ़ाई करने की भी एक वजह होती है। तो आप अपने बच्चे का जो कुर्सी और मेज़ है इस तरीके से रखें कि वो जो रोशनी है वो उसके किनारे की तरफ से आए, सामने मुंह पे उसके रोशनी ना पड़े। मुंह पे रोशनी ना पड़ के जो लैम्प है या फिर जो ट्यूबलाइट है ना तो वो पीछे से आनी चाहिए ना फिर वो डायरेक्ट सामने से आनी चाहिए, वो आपके साइड में से आनी चाहिए ताकि जो रोशनी है वो किताब पे पड़े ना कि आपकी आंखों और चेहरे पे। मोबाइल या फिर किसी भी चीज़ की अति खराब है तो इसी तरीके से मोबाइल का भी हमको इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ हमारे आधुनिक दुनिया और आधुनिक तकनीकों में बहुत बदलाव आए हैं, वही एक बदलाव है मोबाइल। वक्त के साथ हमें ज़रूर बदलना चाहिए मोबाइल हमें, लेकिन बदलते इस दौर में, बदलती इन तकनीकों में हमें भी अपने आप को बदलना है। बदलना मतलब ये है कि हमें उन मोबाइल देख रहे हैं वो मोबाइल उतना देखें जितना ज़रूरी है। जब हम काम

0: कर रहे हैं या हमें कोई रिसर्च करनी है या जब हमें कुछ पढ़ना है तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन फालतू में जो वीडियोस और सब चीज़ें हम लोग देखने की आदत बन गई है, खास तौर से लोग जो हैं बिस्तर पे जब लाइट ऑफ हो जाती है तो बिस्तर में जाकर फिर वीडियोस देखते हैं और मूवी देखते हैं, ये सब चीज़ें हमारी आंखों को बहुत नुकसान देती हैं।
1: चलिए एक क्विक आई टेस्ट करते हैं, कुछ सवाल ताकि आपको अपनी आंखों की सेहत के बारे में पता चले। क्या आपकी आंखें जलती हैं? क्या मोबाइल देखते वक्त सर में दर्द होता है? रात को आंखें बहुत सूखी और खड़कन जैसी महसूस करती हैं? या बच्चे दिन भर आंख स्क्रीन्स पर लगे रहते हैं? अगर ऐसा कुछ आपके साथ में है तो आज का शो स्पेशली आपके लिए है।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये बातें आपकी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
1: फ़ोन की बैटरी अगर 20% रह गई है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आंखें 2% भी बची होती है तो भी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। आंखें हमारी हमेशा काम करती हैं जैसे ही हम सोकर उठते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आंखों का उतना ध्यान रख पाते हैं जितना आंखें हमें हमारी दुनिया दिखा रही हैं? एक सही सच्चा सवाल आप सबके लिए।
2: जी डॉक्टर साहब, वो सवाल कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए जो बहुत ही फायदेमंद होगा?
1: फोन ओवरहीट हो जाएगा तो वार्निंग देगा, लेकिन जब आंखें ओवरलोड हो जाएंगी तो क्या जवाब देती हैं? तब वो जवाब देती हैं हाँ दोस्तों, आंखों में जलन होती है, आंखों में लाली आती है, आंखों से पानी आता है, सर में दर्द होता है और आंखों की रोशनी भी धुंधली होती है। और इस समर वेकेशन में हमारी आंखें सब कुछ ये काम कर रही हैं, धूप में भी जल रही हैं और स्क्रीन्स भी है।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, गर्मियों में अपनी आंखों की कैसे देखभाल करें ताकि हमारे आंखें सुरक्षित रहें?
1: समर वेकेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों का डेली रूटीन कुछ ऐसा है कि रात में टीवी, दिन में कार्टून, दोपहर में गेम खेलना कंप्यूटर पे और बीच बीच में स्विमिंग पूल। इस पूरी वेकेशन में सबसे ज्यादा वर्कलोड कहाँ पर है? और हमारी आंखें भी अब पूछ रही हैं कि क्या ये छुट्टियाँ हमारे लिए भी हैं या ये छुट्टियाँ हमारे शरीर के लिए ही हैं सिर्फ? तो दोस्तों, इन गर्मियों की छुट्टियों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें आँखों की सुरक्षा कैसे रखनी है। छुट्टियों में जब भी बाहर निकलें तो ध्यान रहे कि टोपी तो हो साथ में, उसके एक डार्क गॉगल्स भी हो। ये डार्क गॉगल्स सिर्फ काला चश्मा ही नहीं, रंग कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही हो, लेकिन उसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ। ये यूवी फिल्टर ग्लासेस हमारी आंखों को सही मायने में प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी फिल्टर से हमारी आंखों में अनचाहे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं और हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। यूवी फिल्टर पहुंचने से हमारी आंखों में नाखूने होने की परेशानी, जल्दी मोतियाबिंद बनने की परेशानी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होने की परेशानी और सबसे ज़्यादा आँख में सूखापन होने की परेशानी पनपने लगती है। ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है कि हम यूवी फिल्टर ग्लासेस का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर निकलें।
2: डॉक्टर साहब, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे स्विमिंग पूल भी जाएंगे, नहाएंगे भी, गर्मियों का आनंद भी लेंगे, तो आंखों कैसे सुरक्षित रखें?
1: स्विमिंग पूल में भी बच्चे बिना गॉगल्स के स्विमिंग ना करें इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्लोरीन का पानी हमारी आंखों को नुकसान देता है, आंखों में जलन और लाली करने के साथ साथ आंखों में सूखापन करता है। हमेशा लाइट में ही स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें, ब्राइटनेस को एडजस्ट करके रखें ताकि आंख पे जोर ना पड़े। जो मोबाइल का डिस्टेंस है उसको आंखों से कम 25 से 26 इंच की दूरी पर रखें और इससे हमारी आंखों में थकान नहीं होगी।
2: पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो
1: ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि हमारी आंखों के ऊपर जो परत होती है आंसू की वो हेल्दी रहे। आंखों को कभी भी मसलना नहीं है, इससे एलर्जी इरिटेशन बढ़ सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, एस्टिगमेटिज्म बच्चों में बनता है और सन गॉगल्स का प्रयोग हमेशा करना है।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आंखों के चेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, आंखों का चेकअप कब कराएं? जी,
1: अपनी आंखों का साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराने से कोई भी बीमारी जो होने वाली है उसको पता पहले से ही लगकर इलाज पहले से ही संभव। गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आंख में समस्या होती है तो हम फौरन ही फौरन आके अस्पताल में दिखाएं, यार मसले नहीं आंख को, मसलने से या फिर उस तिनके को खुद से निकालने से आंखों में अब्रेशंस हो सकते हैं और आंख में जख्म बन सकता है। दूसरा, इस गर्मियों में आंख में बहुत पसीना आता है और पसीना कई बारी आंख में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में आंख में खड़कन होती है, कभी भी ऐसा हो तो फौरन आंखों को स्वच्छ पानी से धो लें और अपने चेहरे को पोंछ लें। गर्मियों में आंख भी आ जाती है और ऐसी स्थिति में कभी भी ओवर द काउंटर यानी कि किसी भी दुकान पे जाके कोई सी भी

0: नहीं लेनी है, क्योंकि इन दवाइयों से हमारी आँख जो आई है कई बारी ठीक होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी सी ही लापरवाहियाँ ही बहुत बड़े नुकसान को अंजाम देती हैं, तो अपनी आँखों की सुरक्षा रखें। अच्छा, अब एक सवाल रविंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया किया कि आँखों को किस तरीके के पानी से और कैसे धोना चाहिए। तो आँखों को कभी भी ना तो गर्म ना ही बहुत ठंडे पानी से, जैसे कि हम इतनी गर्मियाँ हो गई हैं, हम टंकी खोलते हैं फ़ौरन ही टंकी में बहुत गर्म आता है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल पानी आने लगता है और फिर आता है ठंडा पानी। तो ना तो हमें गर्म पानी आँखों में डालना है और ना ही बहुत ठंडे पानी को आँखों में डालना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्वच्छ पानी, जो कि बिल्कुल साफ़ पानी हो, फिल्टर्ड वाटर हो, वैसे उस पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी आँखों को साफ़ करना चाहिए। आँखों को दिन भर में मात्र एक बार ही साफ़ करना चाहिए। बार बार आँखों को साफ़ करने से भी हमारे आंसू की परत खराब होती है, तो दिन में एक बार स्वच्छ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से हमको अपनी आँखों को धोना चाहिए।
1: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 7:15 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज व कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार होंगी अपूर्व भारद्वाज, आप सुनेंगे इनके स्वर में गजलें। गीत गाता चल व्हाट्सएप संदेशों पर फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे दिल ढूंढता है, ये कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज शेष सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातःकाल 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे आज का चिंतन। स्वास्थ्य संदेश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:35 पर। जानकारी का विषय होगा दांत व मरसूड़ों का दर्द। जानकारी आप तक पहुंचाएंगी डॉक्टर हेमलता सक्सेना। लोक रंग, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा प्रातःकाल 7 बजे। फिल्मी गीतों का इंटरटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे 7:31 पर होगा। नौ पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रामपुर की पेशकश पर उर्दू प्रोग्राम गुफ्तगु सब्र ओ तमुल और ईद उल अजहा। उर्दू प्रोग्राम आप तक पहुंचाएंगी आयशा राहत। 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीत होंगे आपके अनुरोध पर। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। 7:19 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 29 मई से लू से राहत की संभावना जताई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बेयर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास एसआईआर कराने का अधिकार है।
5: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है एसआईआर कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें संचालित करने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
6: 15 जून से जेएर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह यूपी रोडवेज निगम से एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। कई जगहों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की 2023 की धारा 163 लागू की गई है। पुलिस की तरफ से लोगों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि खुले में जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्रों में गश्त करके शासन के आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। श्रावस्ती में संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिले को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 71 सेक्टर में बांट दिया गया है। अयोध्या में बकरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अयोध्या रेंज के DIG सोमेन वर्मा ने बताया कि पर्व को लेकर संबंधित लोगों और समितियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
7: हमारी जो भी संबंधित जनपद हैं, वहाँ पे हर जगह पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे DM और SP स्वयं रहे हैं। इसके बाद भी हर स्थान पे जहाँ पे कुर्बानी होती है, नमाज अदा होगी, वहाँ पे भी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट, उसको संवाद के माध्यम से, नोटिस के माध्यम सबको बता दिया गया है।
0: वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि शासन और जिला प्रशासन के आदेशों को का पालन करें। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महले ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है।
8: हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें, किसी भी जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जहां पर की पहले से इजाजत है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जगहों पर 42 से 45 डिग्री के बीच रहा पारा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता, कहा जेवर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले मजबूत करें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। और प्रदेश भर में कल मनेगी ईद उल अजहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे अपूर्व भारद्वाज के स्वर में गजलें।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अपूर्व भारद्वाज के स्वर में गजलें।

अपूर्व भारद्वाज के स्वर से गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे अपूर्व भारद्वाज। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9410087876। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सिंग इज किंग, इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल के स्वर में। शब्द लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का। कार्यक्रम का ये गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वर्षी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुलरकर। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। गांव खाबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह यादव, चौधरी अवन्या कंचव और इनके परिवार के सभी साथी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राज दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति दिलखुश, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुश दिल परिवार। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, प्रिंकी स्वर्णकार, आर्यन को कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए सिंग इज किंग, इस फिल्म का गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए जुड़े हैं आप सभी श्रोता साथी। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा। सरो चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, शाहिद भाई और रऊफ भाई। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमारे श्रोता हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं हमारे श्रोता रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, ललिता नारायण, भाव खड़से और इनके परिवार के सभी साथी। ईदगाह रोड मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी के साथ हैं निमित अहूजा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश के साथ हैं शीतल राजेश। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए टशन इस फिल्म का गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। गीत के बोल दिए हैं कसूर मुनीर ने और संगीत है विशाल शेखर का।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ @90.
1: गीत गाता चल आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं। हम अपने नए श्रोताओं को बता दें, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9410087876। हमें है आपके व्हाट्सएप संदेश का इंतज़ार। और कार्यक्रम से अब जुड़ने वाले हमारे अगले श्रोता साथी हैं, उनका नाम है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से हमारे श्रोता हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी।

ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। वेड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता श्री। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत और इनके दोस्त हैं साथ में सुरेश चौरसिया और आपके परिवार के सभी साथी।

मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली के साथ हैं नगमा नाज मंसूरी। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, झूम बराबर झूम। इस फिल्म से आवाज़ होगी राहत फ़तेह अली खान की और आवाज़ दी है महालक्ष्मी अय्यर ने, शब्द गुलजार ने लिखे हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी रेडियो साथी आकांक्षा के। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी श्रोता साथी। करमवीर हाउस बुजो कैचिया बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करमवीर करण, दीपिंदर वीरेंदर, कुलदीप सेमू, दमन और अभिजोत। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से हमारी श्रोता हैं कुमारी देविका चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी और इनके परिवार के सभी साथी। नूर महल मैसौर सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहीन और नूरी नाज। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुणा चौहान और साथ में है प्रतीक चौहान। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे और अंबेडकर चौक वागोड़ी से हमारे श्रोता हैं उत्तम जमदाड़े और स्वराज। गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और साथ में हैं सीता और गीता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। चौहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, ये श्रोता हैं हमारे लदावली जिला मुरादाबाद से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबीहा निवादा।

गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सूफियान और सदफ फातिमा। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इजरीजी और इरफान खान। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए रांझना इस फिल्म का गीत, जसविंदर सिंह और श्रीराज उपाल की आवाज़ में। शब्द लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत है AR रहमान का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

गीत गाता चल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी, इस फिल्म का गीत। आवाज होगी सुखविंदर सिंह की और शब्द लिखे हैं जयदीप सहानी ने, संगीत सलीम सुलेमान का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाएंगे आपको वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा इस फिल्म से। और ये दोनों गीतों हैं, ये दोनों गीत हैं आप सभी श्रोताओं के लिए। महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, लाल माता नगर, सुदामा नगर रटलाई, जिला झाड़ावार राजस्थान से हर्षिता, रमेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई और इनके परिवार के सभी सदस्य, बागरी मोहल मोहल्ला रटलाई जिला झाड़ावार राजस्थान से मन भावन, शोभा कपिल और इनके परिवार के सभी सदस्य, नगर निगम वार्ड नंबर 28 नास मंजल, मैसौर सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम अशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, पूजा रानी शर्मा और कुमारी पूनम शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निगत परवीन, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र पणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, अनारकली बाजार जगराव से हमारे श्रोता हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मनोत्रा, गवैया मनोत्रा, भाई सुच्चा पाठक और विनोदपुरी के साथ हैं जयपाल यादव, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री टामड़े, वैष्णवी टामड़े, चंचल, अर्जुन और इनके परिवार के सभी सदस्य, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद माधव वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा, गांव फारसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, राजद्वारा रोड मीठा कुमार रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और साथ में हैं आरुष, मास्टर राधेश्याम शाक्या काजगंज से, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुणा यादव, फारूक अली खान, फैरास फैजी खान, फरहीन फरहान और इनके परिवार के सभी सदस्य, ये श्रोता हैं हमारे कस्बा गुनेर यूपी से। इसके अलावा ऊपरकोट बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरीद्दीन, सुहान अरजान और अबान के साथ है पूरा अब्बासी परिवार, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, अफजल मलिक और संदीप, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत जावेद बशीर की आवाज में, शब्द लिखे हैं रजत अरोड़ा ने।

0: गीत गाता चल। अभी श्रोता साथी सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित ये कार्यक्रम। 8:45 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर

0: का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण

सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension.

0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए यह बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वें तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
3: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा है कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात

रिकॉर्ड की हैं, उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें चार दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरिक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अजम रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं।

0: होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने

0: समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में, वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में, उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले, उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है

0: कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इंपॉर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की, उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल कर रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदंबरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली. मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो. मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए. इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है. मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया. फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था. पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा. कुछ सुझाव तो बोर्ड बोरे साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है. मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे बोर्ड बोरे साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है. इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है. अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे. पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए. और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी. और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते. ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा. तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पर हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए. और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल जंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा. बस सख्ती तो करनी पड़ेगी या तो इनको वापस लो. तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी. पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में.
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है.
0: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी. मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं.
1: जी
0: 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोली कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था. आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था. आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था. जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है. और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया. शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया. अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं. मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है. ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत

0: लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इंबैलेंस तो है ही, वो इंबैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
1: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक डिलीट एंड डिकोड, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ

0: 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
1: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहां तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ढूंढता है।

और उन्हीं अनकही बातों को आवाज देने आया है आपका अपना कार्यक्रम दिल ढूंढता है। स्वीकार कीजिए आकांक्षा का नमस्कार। ये जज्बातों का सफर है जहां आपके दिल की बातें, आपकी यादें, आपकी मोहब्बत, आपकी नाराजगी सबको जगह मिलती है। कभी किसी की याद रातों को जगा देती है तो कभी किसी की एक छोटी सी बात पूरा दिन मुस्कुरा देती है। किसी के लिए इंतजार आज भी बाकी है तो कोई आज भी किसी अधूरी कहानी को दिल में लिए बैठा है। कुछ ऐसा ही कहना है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान का। लिखते हैं, दुनिया को भूलकर तुमको याद किया, बहुत याद किया, कभी इस घड़ी कभी उस घड़ी बहुत याद किया, मेरी नींदों के जमाने मुझसे रूठ गए, रातों को जाग कर तुमको याद किया, बहुत याद किया, मैंने फूल को कतर कर खुशबू बनना पसंद किया, मानिंदे खुशबू के पास रहूं, तुमको याद किया, बहुत याद किया, इस कदर एतबार था तेरे इकरारे मोहब्बत पर, जितना भूलना चाहा उतना ही तुमको याद किया, बहुत याद किया। बहारों के मौसम में यूं तो बारिश खुलकर बरसी, तेरे प्यार की बारिश को याद किया, बहुत याद किया, दिल ने जिसको याद किया उसे दिल ढूंढता है और दिल ढूंढता रहेगा।

कभी कभी दिल में बहुत कुछ चलता रहता है, कुछ बातें जो हम किसी से नहीं कह पाते, कुछ एहसास जिन्हें बस महसूस किया जाता है।

यादों का भी अपना एक मौसम होता है। कभी बिना बारिश के आंखें भीग जाती हैं, तो कभी किसी एक नाम से पूरी रात महक उठती है। साहब कहते हैं, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें अक्सर चुपके से लौट आती हैं। कुछ पल थे जो उस वक्त साधारण से लगते थे, मगर आज वो सबसे खास महसूस होते हैं। वो पुराने दिन, वो अपनों का साथ, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, पर दिल आज भी वहीं ठहरा हुआ है। सच ही कहा है किसी ने, वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो उम्र भर दिल में जिंदा रहती हैं। और यही कहना है हमारे अगले श्रोता का। उनका नाम है मोहन सिंह रावत, इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से। कहते हैं कि यादें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। ये यादें ही तो हैं जिनके सहारे हम अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। हमारा मन हमेशा यादों के समंदर में गोते लगाता रहता है। जब से हमने होश संभाला, तब से यादों का अनवरत सिलसिला हमारे मन मस्तिष्क में कैद होता रहा। ये यादें ना हो तो ये जिंदगी बोझिल लगने लगे। बचपन की शरारतें और युवावस्था की मस्ती प्राण होने पर हमारी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती हैं। अपने पूरे जीवन में हम ना जाने कितने रिश्ते नातों से बंधते हैं। दोस्त, सहकर्मी के रूप में ना जाने कितने लोग हमारी इस यात्रा के सहयात्री बन जाते हैं। उनसे जुड़ी तमाम यादें हमारे मन मस्तिष्क में सदैव कैद रहती हैं। यादों की ये अटखेलियां जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। बातें भूल जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा याद रहती हैं। आज दिल ढूंढता है मैं 90 वर्ष की सुनहरी यात्रा पूरी कर रहे आकाशवाणी से जुड़े मेरे जुड़ाव की यादें। आकाशवाणी से मेरे जुड़ाव की कहानी लगभग आधी सदी पुरानी है। तब हम लोगों का संयुक्त परिवार था। दादा दादी, दो चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, माता पिता और हम तीन भाई। दादाजी का बिजली से चलने वाला रेडियो था। उन्हें उठने बैठने में परेशानी होती थी, तो वो अपनी छड़ी से ही बिजली का स्विच ऑन करते और रेडियो बज उठता। दादाजी का रेडियो से जुड़ाव समाचारों तक सीमित था। समाचार शुरू होते ही रेडियो ऑन होता और समाचार समाप्त होते तो रेडियो बंद हो जाता। तब आज की तरह हर घंटे समाचार नहीं आते थे। सुबह 8 बजे और रात 9:15 बजे 15 मिनट का समाचार बुलेटिन आता था, जिससे देश दुनिया की तमाम जानकारी मिल जाती थी। दादी की भजन और मम्मी की पुराने गीतों में रुचि थी, तो सुबह वो सुनने को मिल जाते थे। उन दिनों रेडियो सिलोन से अमीन सियानी जी की सदाबहार आवाज में प्रसारित होने वाली साप्ताहिक सिबाका गीतमाला का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। रेडियो से इस शुरुआती जुड़ाव के साथ बचपन बीता। थोड़ा बड़े हुए तो रेडियो तब तक अधिक आकर्षित करने लगा था। जब आसपास के लोग के नाम रेडियो पर सुनाई देते, उस दौर में सब्जी मंडी हल्द्वानी के एक रेडियो श्रोता हसनुद्दीन मुन्ना, जिनका अपने परिवारजन के नामों के साथ लगभग प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होने वाले आपकी पसंद में नाम शामिल होता था, उन्हीं की देखा देखी पोस्ट कार्ड में फरमाइश भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। तब आज की तरह मनोरंजन के साधन नहीं थे। उस समय रेडियो में नाम प्रसारित होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं लगता था। पिताजी के माध्यम से हसनुद्दीन मुन्ना भाई से संपर्क भी हुआ, उनसे

मुलाकात होती तो बातचीत का विषय रेडियो ही होता। इधर कई वर्षों से संपर्क नहीं हुआ उनसे। आज जब दिल ढूंढता है कि बहाने उन्हें याद कर रहा हूं, तो उनके सपरिवार कुशल मंगल की कामना ही कर सकता हूं। कक्षा आठवीं में पहुंचने तक लिखने का शौक भी बढ़ गया था। शुरुआत एक स्थानीय समाचार पत्र में पत्र भेजकर हुई थी। जब वो पत्र छपा तो उसने आगे भी लिखने के लिए प्रेरित किया। तब रेडियो सुनते थे तो ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी कि रेडियो में बोलते कैसे होंगे। पिताजी के एक बैंक सहकर्मी मुरादाबाद से थे, जिनका आकाशवाणी रामपुर से संपर्क था। उन्होंने मेरी लेखन प्रतिभा का जिक्र केंद्र में किया तो कुछ समय बाद उनके माध्यम से रेडियो पर युववाणी कार्यक्रम के लिए वार्ता का पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला। वार्ता का विषय था हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। अनुबंध मिलने के बाद वार्ता के लिए मैटर खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। गली के बाहर ही एक खेल पत्रिका मेजर ध्यानचंद पर केंद्रित विशेषांक मिल गया। ये बात लगभग 1986 से 87 की है। उम्र करीब 15 से 16 वर्ष रही होगी। आठवीं के बाद नवी कक्षा में प्रवेश लिया था। घर में पिताजी के पास हिंदी और अंग्रेजी के टाइपराइटर थे, तो अभ्यास करते करते अब तक टाइप करना भी आ गया था। वार्ता का आलेख तैयार किया तो 9 पेजों से अधिक का मैटर हो गया। मैटर को पढ़ने का अभ्यास किया तो सहमते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो में पहुंचे। तब कंपेयर रहे रामकुमार सक्सेना जी ने रिकॉर्डिंग की। सामान्यतः वार्ता की समय अवधि 10 मिनट होती है, तो शुरुआत के 3.5 फुल स्केप पेज ही रिकॉर्ड हो पाए। जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसको देखकर ऐसा लगा इतनी मेहनत अनावश्यक ही की। तब आकाशवाणी से जो पहला प्रसारण शुल्क मिला था वो था 64 रुपए का चेक। चेक को बैंक में जमा करने के बाद उसकी क्लियरिंग का इंतजार। चेक क्लियर होने के बाद पता चला कि 64 रुपए में से कुछ रुपए क्लियरिंग चार्ज के बैंक ने काट दिए हैं। ये मेरे जीवन की पहली कमाई थी। इस तरह आकाशवाणी के लिए लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। इस वार्ता के प्रसारण के कुछ समय बाद अपनी 4-5 कविताओं का आलेख तैयार कर आकाशवाणी रामपुर के साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम में प्रसारण हेतु भेज दिया। ये वो दौर था जब आकाशवाणी के कार्यक्रम लगभग प्रत्येक घर में सुने जाते थे। मेरे आलेख भेजने की कुछ समय बाद ही आकाशवाणी ने मुझे रचनाओं के लिए प्रसारण के लिए आमंत्रित किया। 15 से 16 वर्ष की उम्र में आकाशवाणी के साहित्यिक पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेना मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन दिनों आकाशवाणी रामपुर में डॉक्टर माची रेडी कार्यक्रम अधिकारी थे। उनकी कार्यशैली पर अपना अनुभव मैंने सुनते सुनाते 90 साल कार्यक्रम में साझा किया था, इसलिए उसे दोहराऊंगा नहीं। काव्य धारा और काव्य प्रभा शीर्षक से प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में कविताओं के साथ साथ साहित्यिक कार्यक्रम में कहानियां भी प्रसारित हुईं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होने वाली कवि गोष्ठियों में हुल्लड़ मुरादाबादी, बल्ली सिंह चीमा जैसे दिग्गज कवियों के साथ कविता पाठ करने तथा कुछ कवि गोष्ठियों के संचालन का भी अवसर मिला। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी बारी का इंतजार कर रहे मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब ने मेरी कविताएं सुनी। उन्होंने कविताओं की खूब तारीफ की। वो दाद अब तक मुझे याद है। 1987 से 1988 के बीच में सामान्यतः कार्यक्रमों के पहले प्रसारण के लिए 193 रुपए शुल्क मिलता था, जो अब 2026 में भत्ते को मिलाकर लगभग 3900 रुपए हो गया है। चेक की जगह अब ऑनलाइन भुगतान होने लगा है। हाँ, अब क्लियरिंग में रुपए नहीं कटते। कॉलेज की पढ़ाई के साथ प्रसारण के लिए मिलने वाले शुल्क में अपनी अहमियत थी। जब आप अपने घर से बाहर रहकर पढ़ रहे हो तो ये एक तरह का पॉकेट मनी का काम करता था। वर्ष 1988 में इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के दौरान मुझे आकाशवाणी से कहानी पाठ के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ।
रिकॉर्डिंग जिस दिन थी उस दिन मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था। काफी समय इस उपहोप में बीता कि रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी रामपुर जाऊं या नहीं। हमारे फिजिक्स के टीचर तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट थे। हिम्मत करके मैंने उनसे अपने मन में चल रहे द्वंद्व को अवगत करा दिया। मेरी बात सुनकर उन्होंने डपट दिया कि बोर्ड एग्जाम का इतना इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और तुम्हें कहानी पाठ की पड़ी है। उनके मुंह से ये सुनना मुझे नागवार गुजरा और मैंने अपने ऊपर ही क्रोधित हुआ कि बेकार में ही मैंने इनसे कहा। शाम को कॉलेज की छुट्टी होने पर तिवारी सर ने स्टाफ रूम में बुलाया और कहा कहानी की रिकॉर्डिंग के लिए निर्धारित तिथि को चले जाना। अगले दिन हर हाल में मुझे सुबह 10 बजे कॉलेज पहुंचकर प्रैक्टिकल भी देना था। मैंने उस समय जो खुशी महसूस की उसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। बाद में जब भी कभी तिवारी सर मिलते तो ज़रूर पूछते कि तुम्हारा कहानी कविता लेखन कैसा चल रहा है। आकाशवाणी से जब भी रचना पाठ के लिए आमंत्रण मिलता है तो मेरी कोशिश रहती है कि हर हाल में उसमें शामिल हो पाऊँ। मैं नैनीताल में था। 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रास्ता बंद था, जिस वजह से मैं एक बार ये तय समय पर रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन फ़ोन पर अनुरोध कर रिकॉर्डिंग की तिथि को आगे बढ़वा लिया गया, जिसमें मैं शामिल हुआ था। इस तरह अनेकों बार कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी रामपुर जाना हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद 2 की 3 चाय भी आती थी। कई लोगों से मेल मुलाकात होती, जिनमें से कुछ से आज भी संपर्क बना हुआ है। लौटते समय आकाशवाणी के सामने की दुकान में गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक और जाड़ों में चाय के साथ ब्रेड पकौड़े और समोसे का भी स्वाद लिया जाता। कुछ वर्ष पूर्व जब आकाशवाणी के क्षेत्रों का विभाजन हो गया, तब भौतिक रूप से आकाशवाणी रामपुर से जरूर दूरी हो गई, लेकिन मन में जुड़ाव हमेशा और गहरा हो गया। आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र के बतौर रचनाकार जुड़ाव बना हुआ है, लेकिन बतौर श्रोता संतुष्टि आकाशवाणी रामपुर और विविध भारती से ही मिलती है। मैंने विज्ञान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन साहित्य में रुचि होने के कारण करियर के रूप में साहित्य को ही चुना है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक साहित्यिक संस्थान में कार्यरत हूँ। इस संस्थान से जुड़ाव तब से है जब से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों को सुनना और उसमें भागीदारी करना प्रारंभ किया। आज जब भी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं में प्रकाशित अथवा पुरस्कृत होती हैं, तो इसका श्रेय आकाशवाणी से ही जुड़ाव को जाता है। आकाशवाणी से बतौर श्रोता लगभग 2 दशक की दूरी भी रही, क्योंकि मीडियम वेव पर प्रसारण स्पष्ट सुनाई नहीं देते थे। तब रिकॉर्डिंग के लिए तब भी आकाशवाणी जाना होता था, लेकिन मलाल रह जाता था कि अपने कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं। लगभग 6 वर्ष पूर्व न्यूज़ ऑन AIR ऐप ने इस कमी को भी दूर किया और अब दिन की शुरुआत पूर्व की भांति भजनों और दिन रात में अपने मनपसंद कार्यक्रमों से होती है। कार्यक्रम दिवस में दोपहर में सुन पाना तो संभव नहीं होता, लेकिन रविवार या अन्य अवकाशों के दिनों में आज भी बेहतरीन रेडियो साथी ही है। ये आकाशवाणी से मेरे जुड़ाव की कभी ना भूलने वाली याद, जो मेरे मन मस्तिष्क में सदैव तरोताजा रहती है। आकाशवाणी रामपुर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी याद को खजाना है। 8 जून 2026 आकाशवाणी अपनी इस अनवरत यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, उद्घोषक भाई बहनों, तकनीशियन और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए सदैव हमारे जीवन में मिठास घोली है। न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सूचना परक और शिक्षा प्रद कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम जानकारियों के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी फैलाया है। एक बार फिर सभी श्रोता साथियों की ओर से समूचे आकाशवाणी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार।
आप हमें इसी तरह दे

दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें, यही हमारी कामना है। और रावत जी, हमारी भी यही कामना है कि इसी तरह हमें अपने श्रोता साथियों का प्यार मिलता रहे, आप जैसे अच्छे श्रोता साथी मिलते रहें।

यादें कभी धूप की गर्माहट देती हैं तो कभी ठंडी हवा बनकर दिल को छू जाती हैं, और शायद इसीलिए दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि जो पल दिल से जिए जाते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। कुछ ऐसा ही कहना है तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विनय, विजय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर का। कहते हैं हर बीते लम्हे याद बन जाते हैं, यादों का बिछौना लिए उसकी राह तकते रहते हैं, उसके ख्यालों में जिंदगी जिया करते हैं। कभी तो आएगी उसे भी हमारी याद, इस आस के सहारे हम उन यादों की माला पिरोया करते हैं। कैसे याद करूं मैं उसे जो भुला ही नहीं पाता, हर वक्त वो मेरे जहन में, बिन उसके मुझे जीना ही नहीं आता। वो बीते पल जब हम रोए थे वो अक्सर यादों में ही

वो यादों में आकर हमें आंसुओं में भिगो जाते थे। दिल ढूंढता है वो पल, काश फिर से वापस आ जाते, वो पल काश फिर से वापस आ जाते।

यादें ये वो अमानत है जिन्हें ना कोई छीन सकता है ना वक्त मिटा सकता है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर अपनी यादों से कभी नहीं जाते। उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ दिल के किसी कोने में वैसे ही जिंदा रहता है। कभी कभी ना इंसान किसी को खोता बाद में है, महसूस पहले से करने लगता है, और फिर एक दिन उसी की याद उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है। रात जब थोड़ी खामोश होती है तो यादें ज़्यादा बोलने लगती हैं और दिल बस यही सोचता रहता है, काश कुछ पल और मिल जाते। यादों की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? ये कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया बदल जाए। कुछ चेहरे, कुछ आवाज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ लिखावट हमेशा दिलों में बसी रह जाती है। और इसी में ही एक दिल ढूंढता है। आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी कहते हैं, आप सब मेरे दिल के जज्बातों को सुनते हैं। ये तो एक कड़वी सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा, बस रह जाती हैं तो यादें, जो हमें जीवन भर याद आती हैं। याद आता है वो अफसाना, उनका आंखों में आ जाता है पानी। ये कौन समझ पाया है कौन नहीं, यूं तो हो जाती थी हंसी मुलाकात उनसे, अब तो मुद्दत हुई देखे बिना, लेकिन दिल में बन गई है एक तस्वीर उनकी। आंखें खुली तो हो जाता है दीदार उनका, बंद करूं तो पलके नजर आता है चेहरा उनका। अब तो दिल की यादों का मंजर कम नहीं होता, ठीक उसी तरह ऊपर वाले की जितनी इबादत की जाए कम ही लगती है। जैसे मोहब्बत से चलती है जिंदगी, वो प्यार के लम्हे जो हमेशा हमें याद आते हैं, अब तो दिल मेरा बड़ा बेचैन सा हो उठता है। वो हंसी मुलाकात किसे पेश करूं, दुख का अफसाना बना के रह गया है अफसाना। मेरा ये भी तो सच है कि जब हमारे दिल में खुशी रहती है, वहीं दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं दुख छुपा रहता है। ऐसे ही किसी प्यार भरे दिल की मुलाकातों को दिल ढूंढता है और दिल ढूंढता रहेगा।

कभी कभी इंसान सब कुछ कह देना चाहता है मगर कह नहीं पाता, और फिर वही अधूरी बातें धीरे धीरे याद बनकर उम्र भर साथ चलती हैं। आज लगभग आपके दिलों की बातें हम तक आ गईं। इजाज़त का वक्त आ गया है, आज दिल ढूंढता है कि इस महफिल में हमने महसूस किए कुछ अधूरे किस्से, कुछ भीगी हुई यादें, कुछ गुजरे हुए वक्त की प्रेरणादायक कहानियाँ और दिलों के जज्बात जो अक्सर शब्दों में नहीं सिर्फ एहसासों में जिए जाते हैं। उम्मीद है आज की ये शाम आपके दिल के किसी कोने में ज़रूर छू गई होगी। अगर इस सफ़र में आपको किसी अपने की याद आई हो तो उसे दिल से एक दुआ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त और सच्चे लोग फिर कभी वापस नहीं आते। चलते चलते बस इतना ही, कुछ यादें हंसा जाती हैं, कुछ चुपचाप रुला जाती हैं, मगर जो दिल में बस जाए वो उम्र भर साथ निभाती हैं। इन्हीं एहसासों के साथ अब दिल ढूंढता है कार्यक्रम से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे कुछ नए एहसासों के साथ, कुछ नई यादों के साथ, कुछ आपकी बातों के साथ। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी रामपुर है। अब सुनिए फिल्म संगीत।

खामोशी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत वापस इस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर से।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संकेत। अब सुनिए प्रोफेसर, इस फिल्म का गीत। आवाज होगी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत होगा आपके रेडियो सेट पर। जीवन फिल्म से आवाज़ है आशा भोसले, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की। शब्द लिखे हैं प्रेम धवन ने और संगीत है सोनिक ओमी का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को

0: बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।